अरे टोली बना के निकले ग्वाले करने को हुड़दंग, गोविंदा के दिन सब हो गए हैं गोविंदा के संग। अरे समझे,

यू नो व्हाट, हम सुबह उठते ही ना हमारी ब्रेन की ना एक स्ट्रेंज हैबिट हो गई है. वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम. मैं हूं सिंपली आफरीन, राइटर ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग. एंड सुबह उठते ही हम में से ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इतनी जल्दी इतने एक्शन मूड में आ जाते हैं, आंखें प्रॉपरली खुली भी नहीं होती है, लेकिन दिमाग पूरे दिन की ना टू डू लिस्ट ऑलरेडी बना चुका होता है. ऑफिस का काम करना है, घर का काम करना है, कॉल्स करने हैं, मैसेजेस का रिप्लाई करना है, ये पेंडिंग है, वो कंप्लीट करना है. और आई थिंक सो सुबह के एक घंटे में ही ऐसा लगता है कि यार ओवरवेल्म्ड, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा काम करना है. बट यू नो व्हाट, वी कैन ट्राई समथिंग डिफरेंटली टुडे. डोंट कैरी द होल डे इन योर हेड एट वंस, है ना. अभी सुबह है तो सुबह का सुबह में हैंडल कर लेंगे, दोपहर का दोपहर में देख लेंगे प्रॉब्लम क्या है, एंड इवनिंग का स्ट्रेस अभी से एडवांस बुकिंग में क्या करने की जरूरत है, राइट. वन थिंग एट अ टाइम, वन कॉन्वर्सेशन एट अ टाइम, एंड वन गुड सॉन्ग एट अ टाइम, है ना. सो लेट्स गो टू दैट गुड सॉन्ग. और बस यार ऐसे ही करके हमारा जो नॉर्मल सा दिन है एकदम सुकून से पीसफुली हम निकाल देंगे. एंड दैट्स ऑल्सो कॉल्ड अ प्रीटी गुड डे. वेरी गुड मॉर्निंग, आप ट्रेन जुड़ गई हैं आपके साथ टू मेक योर मॉर्निंग्स इवन मोर स्मूथ एंड मस्त. राइटर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La fiesta la burga. Milchi, burga.
2: Hello.
3: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहा हूँ
3: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ। आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग बिल जा रहा है, आप ये पे नहीं कर रहे हैं। आपको
2: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
3: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
2: 23।
3: एक सेकंड सर, अपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
2: बिल आया था 2200 रूपए का।
3: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए है ना?
2: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
3: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
2: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
3: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
2: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
3: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
2: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
3: हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर, आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
2: चिल्लाने का क्या मतलब है?
3: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
4: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
2: हेलो
3: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
2: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
3: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
2: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
3: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज।
2: पागल
3: सर, सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है, मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे और चिल्ला।
2: कुकड़ों को
3: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
7: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस कर

0: सकती हूँ. देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
1: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoo. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah live

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: जसलीन जोयल हर्षदीप कौर की आवाज में, व्हाट अ सॉन्ग यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी कहीं तो कोई तो शादी के संगीत में हूँ और बस कहीं बस अब दूल्हा दुल्हन बस आने की देरी में ही है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आप ट्रीन का साथ है ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और कहते ही कहते 16th ऑफ सितंबर की तारीख आ गई है, वेनसडे का दिन है। माय गॉड, आई मीन आर वी सीरियस, कल हम वीकेंड मनाने वाले हैं? दिस वाज टू क्विक या विद दिस। हफ्ता तो बहुत ही फटाफट से जा रहा है, लेकिन इस बार हफ्ता ना महसूस हो रहा है। वजह क्या? वजह है ये गर्मी भाई साहब।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: वेल देखिए, वेदर आज तो ये कह रहा है मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो है 42 डिग्री सेल्सियस पर, मिनिमम 31 डिग्री सेल्सियस पर। एक्चुअल फील्स जो है 40 डिग्री सेल्सियस है। ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा ही है, 65% पर है। इट इज़ एक्चुअली वेरी वेरी ह्यूमिड। और इस वजह से क्या होने वाला है कि आप दोपहर के वक्त भी अगर निकलोगे तो सन तो अपना पूरा तरह से हार्श तो रहने ही वाला है, लेकिन यस पसीने भी बहुत आएंगे। ऐसे वक्त में बेस्ट तो ये है कि भाई निकलो ही मत, एकदम बेस्ट तरीका है। कोई वजह से आपको कहीं जाना भी पड़े तो बहुत ही ध्यान रखिएगा, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करिएगा और हाँ जी पानी भी पीते रहिएगा। और पानी का क्या है भाई, गर्मी हो ठंडी हो कुछ भी हो, अपना वो 3 लीटर वाला जो हिसाब है, जो आइडियल हिसाब होता है, वो तो अपने को पूरा करना ही है, राइट। विद दिस बहुत सारी बातें हो गई है सेहत के बारे में, अब जरा गाने की तरफ बढ़ते हैं। एकदम मिर्ची का तड़का लगाते हुए एक्चुअल डिवाइन MC अल्ताफ की आवाज में
3: मिर्ची।
0: यस मिर्ची करते करते आप ऑफिस पहुंच जाइए। जबरदस्त गाने एंड उससे भी जबरदस्त बातें लाइन अप राइट हियर माइक से दिल तक आफ्रीन के साथ और मिर्ची सॉरी।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

0: मेटल कुछ भी बोलो यार, सारे गाने एक तरफ और दलेर भाजी का गाना एक तरफ। जब आपको एनर्जी चाहिए होती है ना भरपूर, दिस इज द बेस्ट ट्रैक। एंड फॉर दैट मैटर दलेर भाजी कोई भी गाना गाए भाई, एक अलग ही पावर पैक्ड आवाज है इनकी। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिर्फ आफरीन को। और आज के शो को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पर विश करना चाहूंगी एक प्यारी सी गुड़िया को, जिसका नाम है फरसम, इफ आई एम राइट। हाँ, फरसम उसका नाम है। 3 साल की ये गुड़िया है। उनके पापा उनको विश करना चाहते हैं हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। एंड एक्चुअली कमाल की बात यह है कि पापा एक्चुअली यहाँ पर है, गुड़िया इनकी पाकिस्तान में है। तो होता क्या है ना कि ऐसे मौके पे ना सच में फैमिली की बहुत ज़्यादा याद आती है। एंड आई एम श्योर ये चीज़ जो है वो लोग बहुत रिलेट कर पाएंगे जिनकी फैमिली उनसे दूर है। सो बस मैं तो उम्मीद यही करती हूँ कि सभी लोग जहाँ पर भी हैं खुश रहें और बस ऐसी ही खुशियाँ बांटते रहें। सो विद दिस मैं हूँ आफरीन, ये शान का गाना अगला लेकर आ रही हूँ और उसके बाद बातें लेकर आएंगे और भी बातों का सिलसिला अब तो शुरू ही हुआ है।
1: वो पहली बार
0: एंजॉय दिस ब्यूटीफुल ट्रैक ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

What a romantic track, शान की आवाज में ये गाना, हाथों में हाथ जब हम चले, और ये सिनेरियो ना आई कैन ओनली इमेजिन एट दोहा पोर्ट ऑनेस्टली. Honestly, मुझे लगता है कि कतर का एक रोमांटिक स्पॉट अगर कोई है ना तो वो दोहा पोर्ट से खूबसूरत नहीं हो सकता है. लेकिन क्या है ना, अब ये जो गर्मी का मौसम चल रहा है ना उसकी वजह से ना वाइब किल हो रहा है, ऐसा लग रहा है. बट लेट मी गिव यू सम गुड न्यूज, क्योंकि अब ओल्ड दोहा पोर्ट जो है हमारा, मीना पोर्ट की बात कर रही हूँ, वहां पर आउटडोर एयर कंडीशन शुरू हो चुका है. यस, यू हैव इट राइट, ब्रिंगिंग कूल एयर टू इट्स आउटडोर स्पेसेस एंड मेकिंग इट मोर कंफर्टेबल टू वॉक अराउंड. और ये किस तरफ है मैं बताऊँ आपको अच्छे से, ये जहां पर वो एक वुडन ब्रिज है, ब्रिज नहीं कह सकते, वो वुडन वॉकवे है, देयर आर ऑल रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज लाइंड अप देयर, बिल्कुल उसके सामने ये जो रास्ता है विच जस्ट ओवरसीज द ब्यूटिफुल सी ओवर देयर. और फिर कभी कभार जब टर्मिनल पर एक क्रूज आती है तो वो भी वहां पर नजर आता है. एंड नाउ दिस प्लेस इज एयर कंडीशन, तो आई थिंक सो वी डोंट नीड टू वेट अ लिटिल लॉन्गर. शाम के वक्त या 4 बजे के आसपास से तो हम वहां पर जा ही सकते हैं. मौसम भी थोड़ी सी मेहरबान रहेगा और साथ ही साथ ये एयर कंडीशन जो है वो और ज्यादा मेहरबान रहेगा हमारे पर. विद दिस मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट ट्रैक, बादशाह और पायल देव की आवाज में, प्लेइंग फॉर यू ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट.

पटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमॉन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन बता बेटा सवाल क्या है।
0: क्या बताऊं अब मेरे बंदे ने आज फिर से मुंह लटका रखा है।
1: अरे क्या कर रहे हो मैडम, जल्दी से उसका मुंह हुक से उतारो। मुंह को लटकाते नहीं फ्रिज में रखते हैं, बाहर रहेगा तो डिकम्पोज हो जाएगा और पुलिस भी आसानी से ढूंढ लेगी।
2: I'm joking, mama.

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi One. It's hot.
2: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन तो जुड़ गई है आपके साथ, लेकिन बहुत ही प्यारा गाना लेकर आई है फ्रॉम द मूवी सैयारा, द टंडन कपल, यानी सचिन टंडन और परंपरा टंडन की आवाज में राइट हियर ऑन मिर्ची। और मिर्ची घड़ी का इशारा भी बता दो किस तरफ हो रहा है, सुबह के 7:01 की तरफ, और आप सुन रहे हो आपकी सिंपली आफरीन को ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

Well, after this beautiful gana from the movie Sayyara, I am back. Very good morning and welcome back. Simply Afreen ka saath hai aur Qatar mein ek seasonal change officially aa gaya hai. Although aap jab ghar se bahar nikloge to kahoge ki weather to yahan par koi change hua nahi hai. Well, but Qatar ka summer outdoor working hours jo hai restriction jo September 15th yani kal se jo hai ye officially end ho gaya hai. Every year June 1st se lekar September 15th tak outdoor open areas aur properly ventilated na hone wale workplaces jo hote hai wo 10 am se lekar 3:30 बजे यानी 3:30 PM के बीच में प्रोहिबिटेड हो जाते हैं स्पेसिफिकली वर्कर्स को एक्सट्रीम हीट और हीट स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करने के लिए बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है दैट रिस्ट्रिक्शंस खत्म हुई है हीट सेफ्टी रूल्स नहीं थ्रू आउट द ईयर अगर वर्क प्लेसेस का हीट स्ट्रेस इंडेक्स देखे तो 32.1 डिग्री सेल्सियस है ऑन एन एवरेज इसके अबाव भी चला जाता है जब जाता है देन द वर्क हैज टू स्टॉप सो बस एम्प्लॉयर्स स्टिल नीड टू इंश्योर कि ड्रिंकिंग वाटर है शेडेड रेस्ट एरियाज है एंड नेसेसरी हीट प्रोटेक्शन है फॉर देयर वर्कर्स मैं हूं आफरीन आपके साथ जहां गर्मी की बात हुई है आई थिंक सो ये गाना ही फिलहाल रिलीफ देगा हमें जो मैं अगला बजाने वाली हूं लगान मूवी से उदित नारायण अलका याग्निक सुखी पाजी यानी सुखविंदर सिंह एंड सो मेनी मोर यार एग्जैक्टली जस्ट वेटिंग फॉर दिस हमारे कतर का घनन मोमेंट यार

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: हाँ जी कौन?
1: हाँ जी कौन?
2: हेलो, किससे बात करनी है?
1: किससे बात करनी है
2: भैया? किससे बात करनी है?
1: किससे बात करनी है
2: भैया? नंबर चेक करके
1: दोबारा मिला
2: पागल।
1: पता नहीं
2: कौन बोल रहा
1: है। पता नहीं कौन बोल रहा है।
3: इको आ रहा है। इको।
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो। जेल साले भैया को मारूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ। नंबर देख के मिला।
2: हेलो
1: हेलो
2: भैया,
1: क्यों परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार? पता नहीं कौन है यहाँ पे फोन करे जा रहा है। अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा। नंबर आ गया मेरे पास।
2: पागल
1: कहीं का।
3: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका? आप बुरा मत मानिएगा प्लीज।
2: रवि
3: रवि, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें एको नहीं आएगी। बहुत परेशान कर दिया आपने
2: भाई।
3: आप खत्म कर दो यार।
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
4: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस। सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
5: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए। मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoonu. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah. Live

0: Mix. Mirchi.
1: वेल, गानों का ये सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए अगला गाना जो मैं बजाना चाहूंगी, इट इज शंकर महादेवन और सुजाता की आवाज में। बट वो लोग जो कहते हैं ना कि यार अभिषेक बच्चन वॉज जस्ट अ वेरी एवरेज एक्टर, ना एक्टिंग ना डांस ना कुछ, तो फिर उन्हें ये गाना देखना चाहिए क्योंकि इसमें अभिषेक बच्चन ने जो डांस किया है ना, आई थिंक सो इट इज सो अंडररेटेड एंड सो गुड। कुछ ना कहो का ये गाना कमिंग अप नेक्स्ट, जहां उनका साथ ऐश्वर्या राय भी दे रही थी। याद करो, बहुत प्यारा गाना है।
2: आज मैंने जो दे
1: एंजॉय दिस लवली ट्रैक राइट हियर ऑन मिर्ची।

0: वेल, आपका अगर कतर से सऊदी जाना बहुत ज्यादा ऑफन होता है, ट्रैवल करते हैं काम के सिलसिले में या व्हाटएवर रीजन, देन दिस अपडेट इज फॉर यू। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, एंड द खबर कुछ ऐसी है।
1: क्या खबर कतर?
0: कतर और सऊदी के बीच ना पेमेंट्स अब थोड़े और सीमलेस होने वाले हैं। कतर सेंट्रल बैंक एंड सऊदी सेंट्रल बैंक हैव ऑफिशियली अनाउंस्ड दैट कतर का नेशनल पेमेंट कार्ड हिमयान अब ग्रेजुअली सऊदी अरेबिया में भी एक्सेप्ट होगा, और सऊदी का मादा कार्ड जो है वो यहाँ पर कतर में चलेगा। द रोल आउट हैज स्टार्टेड एंड एक्सेप्टेंस विल एक्सपांड ग्रेजुअली एज द इंटीग्रेशन फेसेस आर कम्प्लीटेड। अगर आप हिमयान से फेमिलियर नहीं है तो मैं बताऊं, हिमयान इज कतर्स नेशनल पेमेंट कार्ड, वाइल मादा इज सऊदी अरेबियाज नेशनल पेमेंट नेटवर्क। एंड इसका प्रैक्टिकल बेनिफिट ये सिंपल है, क्रॉस बॉर्डर कार्ड पेमेंट्स को इजियर, मोर एफिशिएंट एंड पोटेंशियली लेस कॉस्टली बनाएगा। इन फैक्ट दिस कनेक्ट्स विद द लार्जर जीसीसी नेट पेमेंट नेटवर्क थ्रू विच जीसीसी रेसिडेंट्स कैन यूज पार्टिसिपेटिंग डेबिट कार्ड्स फॉर एटीएम विड्रॉवल्स, हो गया पॉइंट ऑफ सेल पेमेंट्स अक्रॉस द रीजन। बस एक चीज याद रखिएगा कि ये रोल आउट ग्रेजुअल है, सो अभी ये अज्यूम मत करिए कि सऊदी के हर पेमेंट टर्मिनल पर हिमयान इमीडिएटली वर्क करेगा, बट डायरेक्शन डेफिनेटली यूजफुल है, और स्पेशली ये जो है फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स के लिए बहुत ही काम आने वाला है। सो वेल, मैं हूँ आफरीन आपके साथ, माइक से दिल तक ऐसे ही कतर की अपडेट्स लेकर आती रहूंगी ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। इट्स हॉट।

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn?
1: Yes!
0: To play?
1: Absolutely!
0: To grow?
1: With Maserati!
2: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
1: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
2: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
3: The show was absolutely amazing.
4: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: फिलहाल सोनू निगम की आवाज में जब भी ये गाना सुनती हूँ ना मैं, आई थिंक सो दिस सॉन्ग इज गोना स्टे रेलेवेंट फॉर जनरेशंस टू कम. मतलब 90s का ये गाना अभी भी इतना जबरदस्त तड़कता भड़कता लगता है. हालांकि इसके कितने सारे वर्जन्स आई थिंक सो अभी आए हैं, बट नो, ओजी इज ओजी ऑलवेज. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और आज पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आज जो फीलिंग आ रही है ना वो थोड़ी सी वीकेंड वाली ऑलरेडी आ रही है. गाने कुछ इस तरह से बज रहे हैं, एकदम हैपनिंग गाने बज रहे हैं. और फिर इट्स ऑलरेडी वेनसडे है ना, वेनसडे से ही आप खुश रहना शुरू कर दीजिए वीकेंड की खुशी में. तो क्या है ना, आपके हफ्ते के दो दिन तो ऐसे ही अच्छे गुजर जाएंगे. सो वेल, हो गई अपनी ये सारी बातें, तो हम अपने गेम की तरफ आ जाए. लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट है जहां सीन सुनाने वाली हूँ. और आज मैं भी थोड़ी सी मेहरबान होकर ना एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वाला मैंने आपके लिए सीन चुना है. सो सीन ध्यान से सुनो और बताइए कि आखिर ये कौन सी मूवी से है.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन टेस्ट.
2: शादी की बात करने आए हो, दलाल हो, वापस चले जाइए, हमें नहीं चाहिए.
0: ओके, कौन सी मूवी है ये? 5000896. और वो लोग ना जो हर रोज सोचते हैं कि यार आज आफरीन को मैसेज कर देंगे, आज कर देंगे, और किसी वजह से नहीं करते. शायद उन्हें आंसर नहीं पता होता है, शायद उन्हें नंबर नहीं पता होता है. तो नंबर बता दूं 5000896. और अगर आंसर नहीं पता है वो थोड़ी ना बताऊंगी, इतना इजी सवाल पूछा है, आज तो कर दीजिए जवाब, है ना. और जो हमें हर रोज करते हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया. और आपके देखो ऐसे ही कहने में ही यहाँ पर आपके इतने सारे मैसेजेस ऑलरेडी आ गए हैं. सो चलिए मैं आपको रिप्लाई करती हूँ. मीनवाइल आप अगला गाना सुनो, सुखबीर की आवाज में वो गाना जो इनके जिंदगी का वन एंड ओनली सुपर डुपर हिट गाना. बहुत सारे रहे हैं लेकिन ये हमेशा टॉप करेगा. कहा था ना वीकेंड वाइब्स लग रहे हैं. एंजॉय दिस ट्रैक ऑन मिर्ची.

सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: Hollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना, आपने पहले मम्मी कहा ना पापा, आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है. But really, tell us, how old were you when you made the song?
3: What, I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall से पानी गिर रहा था. सारे बादल नीचे आ चुके. And उस बीच में था ना, I saw the little train coming out. देखो बारिश हो रही है. देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining.
2: अब Twinkle Twinkle Little Star और बाबा Black Sheep के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स आउट.
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: तनिष्क लेकर आए हैं गार्डन ऑफ जेम्स, जहां कलर इज द स्टोरी बिहाइंड एवरी स्टोन, मेड टू बी वोन ऑफन. पहनिए चाहे क्लासिक डिनर ओकेजन के लिए, फैमिली फंक्शंस के लिए, या अ रेगुलर ऑफिस डे. अवेलेबल अक्रॉस तनिष्क स्टोर्स इन कतार और ऑनलाइन एट tanishq.ae. विजिट अ तनिष्क स्टोर नियर यू एंड सी द कलर्स इन पर्सन. TNC's apply.
5: The show was absolutely amazing.
6: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
7: The mentalist Suhani Shah.

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरू हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। बादशाह।

0: Well, that was Badshah aur Aasta Gill ki awaaz mein ye gana right here on Mirchi. Very good morning and welcome back. Simply Afreen ka saath hai aapke saath right here. And bahut hi जबरदस्त तड़कते भड़कते गाने के बाद में यहाँ पर लेट्स टॉक अबाउट आज के हमारे गेम के बारे में, यानी लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट के बारे में बात कर रही हूँ. और बड़ा इजी पीजी सा सीन दिया था मैंने आपको.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन टेस्ट.
2: शादी की बात करने आए हो? दलाल हो? वापस चले जाइए, हमें नहीं चाहिए.
0: ओके.
2: शादी की बात.
0: तो कौन सी मूवी से ये सीन है? आई थिंक सो टुडे इट वॉज क्वाइट एन ईजी वन. मैंने सोचा चलो ठीक है, पूरा हफ्ता बहुत काम किया है, थोड़ा सा ईजी देती हूँ. कल बड़े वीकेंड मूड पर रहेंगे ना, तब थोड़ा सा डिफिकल्ट लेकर आऊँगी. सो बहुत सारे मैसेजेस आए हैं, बट आई एम सो सरप्राइज कि इसमें भी थोड़ा गलत आंसर आया है. मतलब कूली नंबर वन कैसे हो सकता है ये, टेल मी माई फ्रेंड. बट बाकी लोगों ने जिन्होंने मैसेज किया है, जैसे जितेन का मैसेज आया है, चार्ली का मैसेज आया है, खुमैल और सुलेमान का मैसेज आया है, मोहम्मद यूसुफ खान का मैसेज आया है, एंड आई थिंक so now Manali has also sent us a voice message. I think so it is right. हालांकि मैं अभी ये सुन नहीं पाऊंगी, लेकिन yes, सभी ने ये मैसेज किया that this is Guru boss. हमारे the OG couple, real and real life couple, यानी अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की ये मूवी गुरु. और मजे की बात ये थी कि जब ये मूवी रिलीज हुई थी, बिल्कुल रिलीज के दो दिन बाद ही इनकी एंगेजमेंट, यानी अभिषेक और ऐश्वर्या की एंगेजमेंट अनाउंस हुई थी. और फिर उसके कुछ चंद महीने बाद ही, जैसे जैन के बाद में अप्रैल में इनकी शादी भी हो गई थी. वेल, हु कुड हैव इमेजिन नहीं एट दैट टाइम कि ऐश्वर्या सच में अभिषेक बच्चन से शादी करेगी, है ना. मतलब हमने कितने सारे वो टाइम था, कितना मसाला, कितना ड्रामा देखा था. आई स्ट्रांगली रिमेम्बर विवेक ओबरॉय के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली सीन्स, सलमान खान का गुस्सा एंड ऑल दीज थिंग्स. एंड सडनली राजकुमारी को कोई और ही राजकुमार लेकर गया, ऐसे कुछ फील हो रहा था एट दैट टाइम. समथिंग स्ट्रेट आउट ऑफ अ मूवी सीन, बट इट वॉज ऑल रियलिटी. वेल, ये तो बात हो गई अभिषेक और ऐश्वर्या की, बट लेट्स कम ऑन टू द सॉन्ग. गुरु मूवी का ये गाना, I think so. This is one of my underrated track. Mariam Toller, Chinmay aur Kirti Sagathia ki awaaz mein. And I think so. We all remember the song for one reason, and that is Malika Sheraawat. Mirchi par aap sun rahe ho Afreen ko. Enjoy this track on Mirchi. It's hot.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: मैं मेरी एक्स को भुला नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ?
1: अरे ब्रो, ये तो अच्छी बात है ना, अपनी एक्स का नाम अपना पासवर्ड बना ले, कभी भूलेगा ही नहीं ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6 Mirchi One. It's hot.
1: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन तो जुड़ गई है आपके साथ, लेकिन मिर्ची घड़ी का इशारा जरूर बताते हुए आगे बढ़ूंगी जहां हो रहे हैं बिल्कुल सुबह के 8 इनफैक्ट. अगला गाना आवारा पंटू से कमिंग अप राइट नेक्स्ट साज भट्ट और सुबोध शर्मा की आवाज में ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

0: वेल, अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाज में ये गाना राइट ऑन मिर्ची। और देखो, मेरा आवन जावन यहाँ पर चलते रहेगा गानों के बीच में, लेकिन जब आई हूँ तो काम की बात करके जाऊंगी। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और देखिए, 1 ग्राम गोल्ड पहले अपडेट से आज के बता दूं मैं आपको।
1: गोल्ड अपडेट,
0: और गोल्ड अपडेट कुछ ऐसे है दैट पैम्प 1 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 582 का त्रिरियाल, एंड 5 ग्राम गोल्ड लेडी फचुना बार इज फॉर 2725 का त्रिरियाल, 10 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 5381, 1 ounce गोल्ड बार इज फॉर 16634 का त्रिरियाल, एंड 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 61765 का त्रिरियाल। ये थे आज के गोल्ड के रेट्स। और अगर आप देखोगे ट्रेंड कि थोड़ा सा हर दिन ये अब कम हो रहा है, एंड एनी मोमेंट ये फ्लक्चुएट हो सकता है, बट सही मोमेंट पर सही डिसीजन लेना वो तो आपका ही काम है। मेरा काम बस ये है कि आपको हमेशा सही रेट सुनाना। विद दिस, अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए संजू राठौड़ की आवाज में राइट ऑन मिर्ची, माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। इट्स हॉट।
2: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
3: and earn Qatar Airways Avios today.
2: Visit our branches or download the app now.
0: With this, अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए संजू राठौड़ की आवाज में राइट ऑन मिर्ची, माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा। It's hot.
2: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
3: and earn Qatar Airways Avios today.
2: Visit our branches or download the app now.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Is that Mr. Vipul?
1: Yeah,
2: it's me. Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
1: हाँ हाँ बोलिए।
2: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट? तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
1: बट इसमें करना क्या होगा?
2: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
1: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
1: फाइन।
2: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
1: मिलता है।
2: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
1: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
2: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी है, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
1: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
1: Have you gone mad?
2: आपने पॉटी लगाई बच्चे की कभी? और इसमें
1: क्या बकवास कर रहे हैं?
2: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। आप
1: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, ओके?
2: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
1: हेलो
2: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
1: हाँ, हु आर यू?
2: सर मनीष।
1: हु आर यू?
2: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
1: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
2: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे, मैंने मुर्गा बनाया आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मेल ग्रुप।

0: पर अवेलेबल हैं।
1: The show was absolutely amazing.
2: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
3: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल. बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनो. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

वेलकम शेलकम है आपका राइट हियर ऑन 89.6 मिर्ची 1 और वेलकम करते हुए आपको उस काम की बात भी सुनाकर ही आगे बढ़ती हूँ। वेल आई पे का एक्सचेंज रेट तो ये कह रहा है दैट एक खतरी रियाल के बदले आपको इंडियन रुपीस मिल रहे हैं 26.27। यस यू हर्ड इट राइट, आई थिंक सो, दिस इज गॉट टू बी द ऑल टाइम हाईएस्ट इफ आई एम राइट। पाकिस्तानी रुपीस जो है वो है 76.06 पर, बांग्लादेशी टाका जो है इट इज एट 33.78, वेयर एज श्रीलंकन रुपीज इज एट 90.27 एंड नेपाली रुपीज जो है खतरी रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं 41.95 नेपाली रुपीज। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां, नग लगाना आपका इंतजार कर रहा है ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: गोल्ड रेट कब बढ़ेगा कब गिरेगा, फेस्टिवल शॉपिंग के टाइम ये टेंशन क्यों?
6: विद तनिष्क बेस्ट गोल्ड रेट ऑफर, अपनी फेवरेट ज्वेलरी चूज करें और सिर्फ 20% एडवांस पे करके बुक कर दें। जब फाइनल परचेज कंप्लीट करेंगे तब बुकिंग डेट या बिलिंग डेट में से जो गोल्ड रेट लोअर होगा वही मिलेगा। मतलब फेस्टिव शॉपिंग प्लान कीजिए विदाउट पेइंग द फुल अमाउंट टुडे। ऑफर वैलिड अंटिल 8th नवंबर 2026 एट तनिष्क, लूलू हाइपरमार्केट, डी रिंग रोड एंड दोहा फेस्टिवल सिटी। ओपनिंग सून एट अल वतन सेंटर एंड बरवा विलेज। तनिष्क, ज्वेलरी बाइंग मेड इजियर। TNC अप्लाई।
7: The show was absolutely amazing.
8: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
9: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

मोहम्मद इरफान की आवाज में एक विलन से ये गाना, और बहुत ही मीठी सी आवाज़ है इरफान की. एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना, इरफान को वो ड्यू क्रेडिट कह सकते हैं, या फिर वो रिकग्निशन बॉलीवुड इंडस्ट्री में ना इतना मिला नहीं है, इतने गाने इन्हें मिले नहीं. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग, और लेकर आई हूँ आपके लिए सवाल. इनफैक्ट कह सकते हैं सवाल नहीं, एक गाना लेकर आई हूँ. यस, एक ऐसा गाना सुनाने जा रही हूँ जस्ट रैंडमली बीच में से. और कई बार ऐसा होता है ना कि हम ऐसा कोई गाना सडनली सुनते हैं या कोई धुन सुनते हैं एंड इट इज राइट ईयर, ऐसे जबान पर रहता है लेकिन ना आता नहीं है मुंह पर, मतलब इट्स जस्ट नॉट देयर. सो ऐसे ही कुछ होने वाला है. ये गाना सुनो और मुझे ना मूवी का नाम बताओ कौन सा है, ठीक है? सो हियर इट गोज़.

Okay, you gotta tell me that which movie is this? बहुत ही underrated गाना, उसमें से भी मैं आपको सिर्फ बीच का पार्ट सुना रही हूँ तो और ज्यादा डिफिकल्टी, yes, आज का जो तो डिफिकल्टी लेवल है हमारे सवाल का थोड़ा सा ज्यादा है. You gotta tell me that which is this movie. ठीक है, फिर से सुनना है तो मैं फिर से सुना देती हूँ. चलो थोड़ा सा

0: ओके एंड विद दिस आई हैव गॉट एन आंसर एज वेल. यहाँ पर राज का जवाब यहाँ पर आ गया है विच इज द राइट आंसर एंड बहुत सारे गलत जवाब भी आ रहे हैं. मजा आएगा ना बस. चलो फिर अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं. 5000196 इज माई व्हाट्सएप नंबर. टेलिंग यू गाइज अगेन आपके जवाबों का इंतजार है और आपको इंतजार नहीं करवाऊंगी, सीधा
1: बुलावे तुझे यार आज मेरी गली
0: गाने की तरफ लेकर जाऊंगी अखिल और ध्वनि भानुशाली की आवाज में. ये गाना राइट यू ऑन विच शीट्स.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: The late Irfan Khan से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? Is it Delhi? Is it Mumbai?
3: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
2: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: रेडी?
5: रेडी
4: टू लर्न?
5: यस।
4: टू प्ले?
5: एब्सोल्युटली।
4: टू ग्रो?
5: विद मेज़राती।
6: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
5: Milk, cheese, yogurt, labne, eggs.
6: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly.

देखो एक्ट्रेसेस की आवाज में गाना हम इतने आए दिन सुनते नहीं है, लेकिन जब ये गाना मैंने सुना ना, आई वॉज रियली सरप्राइज एंड शॉक्ड कि परिणीति सच में तुम इतना अच्छा गाना भी गा लेती हो, एंड इतने खूबसूरत बोल और इतनी प्यारी सी आवाज, इट जस्ट सूटेड दिस एंटायर थिंग, है ना। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफ्रीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। एंड यस, हम यहाँ पर खेल रहे थे मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स, जहां से एक धुन निकली, धुन भी नहीं, गाने के एग्जैक्टली बीच में से रैंडम लाइंस थी और आपने गेस करना था, बॉस ये गाना ही नहीं, इनफैक्ट मैंने तो पूछा था कि मूवी कौन सी है, चलो गाना भी याद आ जाए भाई, लेकिन ये गाना इतना अंडररेटेड है ना कि याद ही नहीं आता है कि कौन सी मूवी से है, बट बॉस यू गाइज आर सुपर डुपर ग्रेट। सो वेल, यहाँ पर कौन सा गाना है, चले पहले ये सुन लेते हैं।

0: ओके, इससे ज्यादा नहीं बजा सकती, नहीं तो गाना ही शुरू हो जाएगा। कौन सा गाना है? लेट्स हियर इट।
1: हेलो आफिन, कैसे हैं आप?
0: बिल्कुल बढ़िया। एग्जैक्टली,
1: गाना है साथिया मूवी का।
0: ओके,
1: जिसमें विवेक ओबरॉय और समता शेट्टी का स्पेशल अपीयरेंस था इस वाले गाने के लिए।
0: क्या बात है, सही बात
1: है। तो यस, मूवी का नाम है साथिया, वीडियो व्हिच इज हॉट, और होप आप सारे लोग ठीक हैं।
0: बिल्कुल बढ़िया। थैंक यू सो मच मयंक फॉर योर आंसर। और ऐसे ही प्रवीण का मैसेज इधर आया है, देन आई हैव समवन जो अपना नाम नहीं लिखते हैं, मुआजिम का मैसेज है, इम्पा इट इज नॉट मिशन कश्मीर बट थैंक यू फॉर मैसेजिंग, देन आई हैव समवन यर, मिर्जा का मैसेज है सेइंग साथिया, एंड मोहम्मद यूसुफ खान इट्स नॉट दौड़, एंड और एक है जिन्होंने सही जवाब दिया है सबसे पहले, दैट वॉज राज। इन सभी का सही जवाब है दैट दिस इज चोरी पे चोरी, आशा ताई का गाना साथिया मूवी से। एंड लेट मी टेल यू भाई, आशा ताई आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हर। अगर फीमेल सिंगर्स में मुझे कोई पूछे ना अगर मेरे लिए बेस्ट सिंगर कौन है, यस मैं जानती हूँ लता जी भी है ये, बट फॉर मी इन माय कैटेगरी जो है बेस्ट सिंगर्स की, आशा ताई कम्स नंबर वन, एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस, खुद सुन लो। कोई भी गाना हो यार, शी कैन नेल इट। Enjoy this track from the movie Sathya on Mirchi It's Hot. Chori, chori, here's my story.

0: मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी? फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरी बीपी कभी मुझे सीरियसली लेती ही नहीं, क्या करूं?
1: तो प्रभु क्या है ना कि आप तुरंत ही हॉस्पिटल की ओर प्रस्थान करें, सीरियस लोगों को ना वहीं ले जाया जाता है।

0: मीरा खुशाल की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची. मैं हूँ आफरीन आपके साथ और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है एग्जैक्टली सुबह के 9:05 की तरफ.
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.
0: नेक्स्ट ट्रैक तोशी रैना की आवाज आयशा मूवी से ये गाना. मिठी मिठी गल हमारी तो चलती रहेगी लेकिन मिठे मिठे गाने भी तो चलने चाहिए. इस गाने के उस पार बहुत सारी बातें करेंगे.

वेल मीठी मीठी गर्ल बोलने का वक्त आ गया है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, और मैं बस मुझे इससे ना मुझे माधुरी का वो अंदाज याद आया, हम आपके हैं कौन का, ओहो कितनी प्यारी सी वो अदा थी। आई मीन यार ये एक्ट्रेस लोग कुछ भी कर ले ना कितने ग्रेसफुल लगते हैं ना। अब हैविंग सेड दैट बॉलीवुड की बातें रखते हैं एक तरफ और ज़रा वर्तमान में आते हैं। 16 तारीख है आज की, सितंबर 16, और हम बस 9 दिन दूर हैं हमारे सुहानी शाह लाइव इन कतर के इवेंट से, जहां पहली बार सुहानी शाह हमारे कतर आ रही है। एंड इट्स गोना बी वन ऑफ अ काइंड इवेंट। मतलब मैं हमेशा से ये कहते आई हूँ कि देखो मेंटलिस्ट का जो शो होता है ना, इट्स रियली अनएक्सपेक्टेड, इट्स नॉट प्रेडिक्टेबल। और वो ऐसा होता है कि आप एक सिंगिंग वाले शो में जाते हो, डांसिंग के शो में जाते हो, एंड यू आर इन अ स्टेट ऑफ माइंड एंड यू नो कि आप ये चीज़ें अब आएगी, ये गाने एक्सपेक्ट करेंगे, एंड इट्स गोन बी समथिंग डिफरेंट एक्सपीरियंस। लेकिन ये जो मेंटलिस्ट का शो होता है, यू डोंट नो वॉट यू आर इन फॉर, राइट? तो बस ऐसा कुछ अगर एक्सपीरियंस करना है तो आई थिंक सो दिस इज द मोमेंट नाउ। अब कितने दिन बचे भाई, आखिर के लास्ट 9 दिन बचे हैं और आखिर के चंद टिकट्स बाकी हैं। सो यू शुड डेफिनेटली गो रश टू एस सिटी, सुनो सिटी है जहां पर 33 रियाल का कैशबैक भी मिल रहा है। देन देर इज क्यू टिकट्स, देन देर इज प्लैटिनम लिस्ट, और बस ऐसे ही आप अपनी टिकट्स जाकर रिजर्व कर सकते हो। हम तो वहां पर होंगे ही, ऑफकोर्स सुहानी को मिलकर हम देखेंगे, एंड इनफैक्ट भी अगर एक्सपीरियंस करना है तो आई थिंक सो दिस इज द मोमेंट नाउ। अब कितने दिन बचे भाई, आखिर के लास्ट 9 दिन बचे हैं और आखिर के चंद टिकट्स बाकी हैं। सो यू शुड डेफिनेटली गो रश टू एस सिटी, सुनो सिटी है जहां पर 33 रियाल का कैशबैक भी मिल रहा है। देन देर इज क्यू टिकट्स, देन देर इज प्लैटिनम लिस्ट, और बस ऐसे ही आप अपनी टिकट्स जाकर रिजर्व कर सकते हो। हम

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rambana. Burga, burga. La fiesta la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो,
3: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
2: स्पीकिंग.
3: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा. अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ.
2: हाँ, sure.
3: अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
2: जी.
3: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
2: बोल, कौन रहे हैं?
3: मैं जयदेव बोल रहा हूँ और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं. अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज.
2: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है. जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
3: बिल्कुल
2: अलाउ नहीं करते. जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे.
3: सही बात है,
2: गर्ल्स को नहीं देंगे.
3: सही बात कह रही है. और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई.
2: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है.
3: एक सेकंड होल्ड करिएगा. तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार. शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ.
2: हाँ, किससे बात कर रहे हैं?
3: मैं, वो मेरी वाइफ है यही.
2: हेलो.
3: हाँ बोलिए.
2: हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए.
3: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ.
2: साहब, मेरे से तो
3: नहीं,
2: बातें सही से कर रहे हैं. नकली तरह से आप मेरे से
3: नहीं,
2: बातें कर
3: नहीं
2: रहे हैं.
3: नकली तरीके से क्या?
2: नहीं, असली मुझे दिख रही है. असली औकात नहीं कर रहे हैं.
3: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार.
2: वो तो कोई बपौती है.
3: बात नहीं, तो तमीज सीखिए. नहीं तमीज,
2: नहीं सुनिए, बिल्कुल नहीं सुनिए.
3: मेरी बात सुनिए. देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए. आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया.
2: Oh my.
3: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए.

0: Étkészállt, only on Mircsi. It's hot.
1: Yep, a girl.
2: The show was absolutely amazing.
3: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
4: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek sham, ek stage aur do kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah.

कभी कभार ना लाइफ में एक ऐसी फीलिंग आती है कि थोड़ा ना कुछ नया करने का मन करता है, बट यू डोंट रियली नो व्हाट टू डू. तो कभी हेयर कट कर लिया, तो कभी अपना वार्डरोब बदल लिया, और कभी नजर सीधा अपने आसपास यानी घर पर चले जाती है ना. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफ्रीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड सडनली व्हेन यू आर लुकिंग एट योर हाउस एंड यू आर लुकिंग एट द सेम सोफा, सेम कॉर्नर, सेम डेकोर एंड थिंकिंग ओके मे बी इट्स टाइम इट नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड. तो वैसे भी घर का मेकओवर मतलब पूरा घर बदलना जरूरी तो नहीं है, है ना. समटाइम्स वन स्टेटमेंट चेयर, अ ब्यूटीफुल लैम्प, अ न्यू रग और जस्ट अ फ्यू डेकोर पीसेस कैन कम्प्लीटली चेंज द वाइब. एंड राइट नाउ होम सरस की अगर बात करें तो 20-50% ऑफ है अंटिल 30th of September ऑन स्टाइलिश फर्नीचर, होम फर्निशिंग, डेकोर एट रियली गुड प्राइजेस एंड ग्रेट स्टाइल. सो अगर आप भी काफी टाइम से सोच रहे थे कि घर में कुछ नया करना है, मे बी दिस इज अ गुड टाइम टू फाइन do it. And talking about beautiful spaces, Home Saras is also our one of our partners of Suhani Shah live in Qatar. So choose Home Saras because sometimes a little change at home feels like a fresh start. Mike Siddhartha Kafshin hai aapke saath on Mirchi It's Hot.

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: आफरीन।
1: वैसे तो वक्त हमारी शायरी का हुआ है, लेकिन आज ना आफरीन आपको शायरी नहीं सुनाएगी। घबराइए मत, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ एक छोटी सी नज़्म। अब शायरी और नज़्म में पहला फर्क क्या है? सिंपल सा है, शायरी चंद अल्फाजों में ना एक एहसास कह जाती है, नज़्म थोड़ी सी और लंबी होती है, वो एहसास थोड़ा सा ज्यादा सफर करती है। और आज का ये सफर है हिंदी से उर्दू तक। वैसे तो ना हर जुबान की अपनी खूबसूरती होती है, लेकिन उर्दू के कुछ अल्फाज पता नहीं क्यों दिल तक थोड़े और गहरे उतरते हैं। जैसे प्यार को ही ले लीजिए, प्यार खूबसूरत है, लेकिन उसी को अगर आप मोहब्बत कह दो तो पता नहीं क्यों थोड़ा और महसूस होता है। और इसी पूरे एहसास पर आज क्या नज़्म।
2: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी।
1: मुझे उर्दू ज्यादा नहीं आती, बस जरा सी आती है, मगर तुम्हें चाहने के बाद कुछ लफ्ज खूबसूरत लगने लगे हैं। प्यार को मोहब्बत, सपनों को ख्वाब, जुदाई को फिराक और चाहत को जुस्तजू कहने लगे हूँ। हिंदी में कहूँ तो तुम्हारी बहुत याद आती है, उर्दू में कहूँ तो तुम्हारी यादों में एक कशिश सी है। हिंदी में तुम्हें देखकर दिल खुश हो जाता है, उर्दू में तुम्हारा दीदार ही दिल का सुकून है। मुझे उर्दू ज्यादा नहीं आती, बस जरा सी आती है, मगर तुमसे मोहब्बत हर जुबा से ज्यादा आती है। कैसा लगा आज की ये नज़्म बताइए मुझे 5000 1896 पर व्हाट्सएप करके। और शायद ना जुबा कोई भी हो, जब बात दिल की हो ना तो तर्जुमे की जरूरत ही नहीं पड़ती। तर्जुमा ट्रांसलेशंस। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ। मिर्ची इट्स हॉट।

0: है।
1: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत। थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
4: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
5: The Mentalist Suhani Shah,

Well, yeah, Rehman, you can certainly bring the magic out of anyone's voice. So, मतलब मोहित चौहान की आवाज तो हम एक बहुत ही soulful आवाज, romantic या heartbreak से जुड़ी हुई आवाज समझते थे, especially rockstar में ऐसे गाने. But then मसक्कली जब भी मैं सुनती हूँ ना, I see this fun side of मोहित चौहान. I think so, which only you can get it out. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफ्टरनून का साथ है राइट अराउंड मिर्ची मॉर्निंग्स. और देखिए वेडनेसडे का दिन है आज एंड इट्स ऑलरेडी थर्सडे टुमारो, यानी मतलब अपना वीकेंड आ गया है. जहां वीकेंड आए हैं ना, अब से हमारे थोड़े आउटडोर एक्टिविटीज जो है वो भी कहीं ना कहीं शुरू होते हुए दिख रहे हैं. जैसे 974 बीच पर फ्लोटीज फेस्टिवल ये हो रहा है ऑन 18th of September. ये मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपैलिटी है, इन्होंने इन्वाइट किया है फैमिलीज रेसिडेंट्स टू अटेंड दिस फ्लोटीज फेस्टिवल. इट्स अ कम्युनिटी इवेंट और ये 974 बीच पर होने वाला है इस फ्राइडे को. और यहाँ ये बताया गया है कि इट्स अ स्पेशल डे, बीच डे कह सकते हैं, फीचरिंग अ वैरायटी ऑफ फन एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इन अ वेरी सेफ फैमिली फ्रेंडली एटमॉस्फेयर. अब यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज है, फ्री स्विमिंग जोन्स है डेडिकेटेड फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स, एज वेल एज देयर इज आल्सो अ लेडीज ओनली एरिया. यहाँ पर लाइफ गार्ड्स भी अवेलेबल होंगे थ्रू आउट द डे. शावर एरिया है, विजिटर्स रेस्ट एरिया है. और इसकी अगर एंट्री फीस बताऊं तो मैं आपको फ्री फॉर चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर ओल्ड और 14 के अंडर जो है उनके लिए इट्स 15 कतरी रियाल और अडल्ट के लिए इट्स 35 कतरी रियाल. सो वेल देखिए अब इट्स अ वेरी नाइस, इट्स अ नाइस हिंट कह सकते हैं, इट्स अ नाइस वे कि भाई अब हमारे जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है ये इशारा करता है कि वो कहीं ना कहीं वेदर अच्छे की तरफ आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो एक महीने बाद तो ज़रूर जाएंगे ही. सो इट्स ऑल गुड डेज कमिंग अहेड. फिलहाल तो यार मैं चली, मेरा तो दिन अब शुरू होने वाला है बॉस. मतलब अब तो यार एक अलग ही है, मुझे नाश्ता करना है एंड सो मेनी थिंग्स टू डू. आप जो है अपना ख्याल रखिएगा एंड खुश रहो, दैट इज इम्पॉर्टेंट. आप हैप्पी, सब हैप्पी. चलिए ताजा बाय बाय सायोनारा, यू हनी सिंह की आवाज में अगला गाना माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन विच शूट्स हॉट.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: सर ऑफिस में किसी को मेरी वैल्यू पता नहीं है, क्या करूं?
1: ब्रो यार इट्स सो सिंपल, कल ऑफिस में सबको अपनी सैलरी बता दे, एवरीवन विल नो योर वैल्यू।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची वन कतर
2: टाइम चेक
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: Ana Indie Top 10 कनिका के साथ On Mirchi.
1: Mirchi सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका and it's time for the hottest countdown of the week. यानी गाना इंडी टॉप 10, जहां पर हम हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों की गिनती आपके लिए करते हैं. इस हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है. काउंटडाउन के साथ साथ हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप क्लासिक आपके लिए लाएंगे. सम स्पेशल शाउट आउट्स, आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें, ऑल दिस एंड मोर एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर आके स्टे कनेक्टेड विद मी. कोई गाना रेकमेंड करना है, कोई बातें शेयर करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप. शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते के काउंटडाउन की विद गाना नंबर 10. शुरुआत ही एक नई एंट्री के साथ हो रही है. गाने का नाम है वो आएगा. ऑपरेशन सफेद सागर का है ये गाना. अनुराग साइकिया की कॉम्पोजिशन, राज शेखर के लिरिक्स, राघव चैतन्य की आवाज में वो आएगा डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद संजू राठौड़ का बैंगल्स 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
0: नंबर 10.

0: सारे कूल इंटरनेट स्लैंग्स आपको संजू राठौड़ के गाने में मिल जाएंगे. भले ही आपको मराठी समझ आए ना आए, बैंगल्स पे यू विल ग्रूव. दैट्स द मैजिक ऑफ संजू एंड हिज प्रोड्यूसर जी स्पार्क. 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. दिस वाज बैंगल्स ऑन गाना नंबर 9.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक. असली कहानियों से गाने बनते हैं, गानों से असली कहानियां इंस्पायर होती हैं. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, वो ऐसे ही एक कश्मकश में लाके खड़ा कर देता है. एक चिड़िया के बारे में सोचो जो एक पिंजरे में बंद है. वो जब से इस पिंजरे में है, वो चाहती है कि वो इस पिंजरे को तोड़ के बाहर निकल जाए आसमान में, उस आसमान में जहां वो बिलोंग करती है. और उसी आसमान से उसे डर भी लगता है. नाउ आप कंफ्यूज मत हो कि ऐसा कैसे कि वो आसमान में जाना चाहती है लेकिन फिर भी उसे डर लगता है. रियलिटी तब हिट करती है व्हेन वी रियलाइज दैट ये बात तो सिर्फ परिंदे की है ही नहीं, ये तो मेरी आपकी भी बात है. हम सबके अंदर कहीं ना कोई एक अंदर एक छोटी दबी हुई विश है, राइट? एक चुल होगी या कोई आर्टिस्ट है हमारे अंदर छुपा हुआ. कोई लिखना चाहता है, कोई गाना चाहता है, किसी के अंदर एक फिल्म की कहानी है, एक पेंटिंग है, या मे बी आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है. और हमने क्या किया, उन सब विशेस को लेके एक अलमारी के अंदर बंद कर दिया. बोला कि अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी पहले इस पे फोकस कर लेते हैं, जिंदगी बना लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं, कॉलेज पूरा कर लेते हैं. और वो जो हमारे अंदर की इच्छा थी, वो क्रिएटिव विश, वो रोज करते करते थोड़ी थोड़ी मर गई. नाउ जस्ट इमेजिन एक यूनिवर्स आपकी वो सारी विशेस मान ले. कल सुबह आपको है हमारे अंदर छुपा हुआ. कोई लिखना चाहता है, कोई गाना चाहता है, किसी के अंदर एक फिल्म की कहानी है, एक पेंटिंग है, या मे बी आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है. और हमने क्या किया, उन सब विशेस को लेके एक अलमारी के अंदर बंद कर दिया. बोला कि अभी नहीं, अभी टाइम नहीं है, अभी पहले इस पे फोकस कर लेते हैं, जिंदगी बना लेते हैं, नौकरी ले लेते हैं, कॉलेज पूरा कर लेते हैं. और वो जो हमारे अंदर की इच्छा थी, वो क्रिएटिव विश, वो रोज करते करते थोड़ी थोड़ी मर गई. नाउ जस्ट

अच्छा लगने लग गया कि वो कदम बाहर निकालना कैसे है, अब हमें उससे ही डर लगता है। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, वो बिल्कुल इसी कश्मकश के बीच में है। लखनऊ के आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट का नाम है फरक, उन्होंने ही एक गाना लिखा है, उन्हीं की कॉम्पोजिशन है। आई एम श्योर आपने सोशल मीडिया पे ये गाना जरूर सुना होगा, लेकिन अब इस मतलब के साथ सुनना। गाने का नाम है तारे। 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 1 पोजिशन नीचे ड्रॉप होके तारे बाय फरक इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 8।

के लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: ना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हाँ जी कौन
3: हेलो किससे बात करनी है
4: भैया किससे
3: बात करनी है
4: भैया नंबर चेक करके
3: दोबारा मिला
4: पागल
3: अरे पता नहीं कौन बोल रहा था
5: इको आ रहा है इको
3: हेलो जेल साले भैया को मारूंगा तुझे मैं बता रहा हूँ नंबर देख के मिला
4: हेलो भैया
3: क्यों परेशान कर रहा है किसी को पागल हो गया क्या यार पता नहीं कौन है फोन करे जा रहा है अबे पागल हो गया क्या यार महंगा पड़ जाएगा नंबर आ गया मेरे पास
4: पागल
3: कहीं का
5: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया क्या नाम है सर आपका आप बुरा मत मानिएगा प्लीज
4: रवि
5: रवि मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे उसमें एको नहीं आएगी बहुत परेशान कर दिया आपने
4: भाई
5: आप खत्म कर दो यार
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग
7: हेलो कतार आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो एक ऐसा शो जहां पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आई

0: 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
1: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah live

0: बंजारे दी आर्टिस्ट का गाना 3 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप मार के बरसात इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, हैंडल इज @RJKanika। फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। कोई गाना रिकमेंड करना है, बातें करनी हो, बिंदास आके हिट मी अप। कुछ गाने हमें हैप्पी फील कराते हैं, कुछ सैड फील कराते हैं, कुछ ट्रैवल करने की चुल जगा देते हैं, एंड कुछ गाने प्योरली हमको एक नॉस्टैल्जिक ट्रिप पे लेके चले जाते हैं। एंड अगले वाला गाना इज ऑल अबाउट दैट नॉस्टैल्जिया। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कसर क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी आर गोइंग टू फीचर दिस वीक इज
2: मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तेरे प्यार में मेरी जान ये क्या हो गया है।
0: गाने का नाम है मेरी नींद उड़ गई है बाय अ बैंड ऑफ बॉयज। साल 2002 में ये गाना आया था उनकी एल्बम ये भी वो भी से। आज सुबह जब मैं शो की तैयारी कर रही थी तो ये गाना सुन रही थी। आई वॉन्ट टू प्ले दिस सॉन्ग फॉर यू बिकॉज बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। एंड मेरा एक दोस्त साइड में बैठा हुआ था, वो अपना काम कर रहा था एंड बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था। एकदम बीच में उठता है एंड बोलता है कि यार ये गाना सुनते ही ना मेरा एकदम स्ट्रेस चला गया, एनर्जी आ गई मेरे अंदर। एंड आई आस्क्ड हिम दैट व्हाई, व्हाट मेड यू फील लाइक दिस, एंड ही सेड बस नॉस्टैल्जिक लगा। एंड आई एग्जैक्टली अंडरस्टूड वो क्या कहना चाह रहा था। ये गाना उसको एक सिंपलर टाइम्स में लेके चला गया, 2002 का वो वक्त जब प्यार होना, क्रश होना, किसी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना बहुत ही सिंपल था। कोई सीन नहीं था, कोई ब्लू टिक का प्रेशर नहीं था। ये नहीं था कि यार ये मुझे रिप्लाई तो कर नहीं रहा है या रिप्लाई तो कर नहीं रहा लेकिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल रही है। बस किसी का ख्याल है, एक तरफा दिमाग में इमेजिनेशंस चल रही हैं, उतना ही है और वही काफी था। एंड इस गाने में पूरी वही वाली फीलिंग्स हैं, मेरी नींद उड़ गई, मेरा होश खो गया। दैट्स एग्जैक्टली हाउ अ क्रश मेक्स यू फील। एंड अगर आप किसी के क्रश हो देन दिस इज लाइक द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट एवर। तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। साल 2002 का गाना है बट इट साउंड्स लाइक फ्रेश फ्रॉम द ओवन। वो लेस्ली लुईस की खासियत है, अ बैंड ऑफ बॉयज का गाना। दिस इज मेरी नींद उड़ गई है ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बनी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: Indie Top 10.
1: Kanika ke saath
0: on Mirchi. It's hot.
2: Mirchi stories.
3: बस 24 घंटे ही रहेंगी
4: यार। तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
5: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
4: क्या?
5: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: The show was absolutely amazing.
7: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by iPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.

0: हर्ष नुसी की आवाज, हर्ष नुसी दीप क्लेयर के लिरिक्स, उन्हीं के कंपोजिशन, गाने का नाम है साड़ी सुन। पिछले हफ्ते से दो पोजीशन नीचे ड्रॉप हो गए दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस शो इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। एट आरजे कनिका ऑन इंस्टाग्राम पर स्टे कनेक्टेड विद मी। दिस इज द शो जहाँ हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन हम आपके लिए लेकर आते हैं। यू नो, एक टाइम था जब इंडिपेंडेंट म्यूजिक को पसंद करना मतलब आप इंडी पॉप बैंड्स के फैन थे। बहुत सिंपल थी ये बात। एक बैंड कल्चर था जो इस ऑल्टरनेटिव म्यूजिक का पिलर था। फ्रॉम यूफोरिया टू सिल्क रूट टू इंडियन ओशन, लेट 80s एंड अर्ली 90s में इंडिपेंडेंट म्यूजिक ने हमें बहुत सारे बैंड्स दिए। एंड दीज बैंड्स हैव बीन इंस्पिरेशन टू सो मेनी म्यूजिशियंस। कॉलेज में, स्कूल में अगर आपके अंदर एक आर्टिस्ट था, एक म्यूजिशियन था, तो आपको अपने दोस्तों के साथ बस एक बैंड शुरू करना था। एंड आज कंटेम्पररी स्पेस में वी गॉट येलो डायरीज, लोकल ट्रेन एक बैंड था विच वॉज सो पॉपुलर, कॉलेज फेस्ट फेवरेट थे वो लोग। इन्हीं सारे बैंड्स के बीच में एक और बैंड है जो मे बी आप उनका म्यूजिक मिस कर चुके हो, पर जब आप उनके गाने सुनोगे दे विल बी ऑन योर मैप। बैंड का नाम है लास्ट मिनट इंडिया और ये फोक रॉक म्यूजिक बनाते हैं। ये एक्चुअली कॉलेज में साथ थे, दोस्त हैं जिन्होंने साथ में बैंड बनाया। एक म्यूजिक कॉम्पिटिशन में रजिस्टर करने जा रहे थे एंड इनके पास अपने बैंड का कोई नाम ही नहीं था, बट दे हैड टू रजिस्टर एंड इट वाज लास्ट मिनट। उन्होंने सोचा कि क्या नाम रखें इतने लास्ट मिनट में, एंड यस दैट्स हाउ दे स्टार्ट कॉलिंग देमसेल्फ लास्ट मिनट इंडिया। एंड ये किसी ओवरनाइट रील से या एक वायरल गाने से पॉपुलर नहीं हुए। कॉलेज टू कॉलेज, लाइव परफॉर्मेंस टू लाइव परफॉर्मेंस, धीरे धीरे कॉम्पिटिशन जीत कर, हर शो से अपनी ऑडियंस को बनाकर मुंबई के ये 5 लड़के आज भी फोक रॉक में म्यूजिक बना रहे हैं। They've got a new song जिसका नाम है उड़ चले। I'm going to play this song for you, but the best thing about this song is that अगर आप इसकी वीडियोस देखने लगोगे आपको रियलाइज होगा कि इतने सारे कॉलेज शोज में लास्ट मिनट इंडिया ने इस गाने को टीज किया था एंड अब ये गाना ऑफिशियली रिलीज हो गया है एंड इंटरनेट पे बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, यार ये गाना हमने लाइव सुना था। इट्स दैट परफेक्ट पॉप रॉक सॉन्ग जिसमें मेलेडी भी है, म्यूजिक भी है, इमोशन भी है एंड देयर इज अग्रेशन एज वेल। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। दिस इज उड़ चले बाय लास्ट मिनट इंडिया, प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: Ana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
4: I like that song.

0: नहीं फॉरगेट द फिल्म्स नेम.
1: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
4: Attention shoppers, the news you've been waiting for is finally here.
5: Yes, it's time for Lulu Mega Deals.
4: Everyday essentials se lekar latest electronics, stylish fashion, fresh food and home favorites.
5: Sab kuch under one roof with incredible value. Spend less, save way more.
4: Exactly. Toh kal ka wait bilkul mat karo. Shop today, save today.
5: Rush to your nearest Lulu hypermarket right now before these deals are gone.
4: Lulu Mega Deals.
5: More shopping, more savings.
4: More mega moments. Visit Lulu today. Lulu, where the world comes to shop.
6: The show was absolutely amazing.
7: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
8: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह

0: Indie Top 10
1: Kanika ke saath on Mirchi.
2: Mirchi par, this is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par, mera handle is at RJ Kanika. This is the show which is all about the hottest pop music of the week. Hafte ke top 10 pop gaano ki ginti hum aapke liye lekar aate hain. Gaana number 10 se gaana number 3 ka safar hum pura kar chuke hain. Before we move on to the top 2 songs, kuch aise bhi gaane hote hain which deserve a special shout out. Aise hi gaane ke bare mein baat karne wali hoon. It's called गाने का नाम है बूम शाकलाका एंड आई एम श्योर ये गाना ये फ्रेज आपने जरूर सुना है. गाने के फॉर्म में नहीं सुना है तो किसी को बोलते हुए सुना होगा बिकॉज इट्स एवरीवेयर. ढांडा न्योली वाला एंड कृष्णा का ये गाना है. वैसे तो ये गाना अप्रैल में रिलीज हुआ था पर धीरे धीरे धीरे कृष्णा के फैंस एंड ढांडा न्योली वाला के फैंस के ऊपर निकल चुका है ये गाना. हिप हॉप के आगे बढ़ चुका है एंड एक तरह के इसे पॉप कल्चर का पार्ट बन गया है. छोटे बच्चे इस गाने को गा रहे हैं, कॉलेज वाले इस पे रील्स बना रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई इंसान अभी गाड़ी चला रहा है जिसको हिप हॉप के बारे में कोई आइडिया नहीं है और वो भी बूम शाकलाका गा रहा है. एंड दैट्स व्हेन यू नो दैट दिस सॉन्ग इज बिगर देन द आर्टिस्ट्स. कृष्णा को हिप हॉप सीन का एक सबसे टेक्निकल लिरिसिस्ट बोला जाता है एंड इस गाने में भी वो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं. द वर्ड प्ले ऑफ द सॉन्ग इज द रीजन दैट यू कीप कमिंग बैक टू इट बट द हीरो ऑफ दिस सॉन्ग फॉर मी इज ढांडा न्योली वाला. उन्होंने हरियाणवी म्यूजिक रैप को कूल बनाया. उनका असली नाम परवीन ढांडा है एंड इज वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक आर्टिस्ट ऑफ दिस सीन. हरियाणवी में अपने गाने लिखते हैं, अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं पर पढ़ते सारी शायरी जॉन इलिया जैसी है. ही इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट एंड हम उनके बारे में और बात करेंगे पर अभी अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. इस गाने को मैं जब भी प्ले करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को बस एक पॉइंट प्रूफ कर रही हूँ दैट बूम शाकालाका इट्स लाइक आई हैव गॉट द लास्ट वर्ड ऑन दिस. ढांडा न्योली वाला कृष्णा का गाना, दिस इज बूम शाकालाका. A special shout out on Gaana Indie Top 10 Bandi ka naam hai RJ Kanika. Enjoy.

This song is a perfect concoction of Krishna, Dhanda Nyoliwala, Haryanvi rap and all that combined into this attitude package. Such an addictive hook that boom shakalaka. Agar aapne aaj pehli bar hamare show ke zariye suna hai, to I'm sure ki aap agle do din tak ye line bolte hi rahenge. At RJ Kanek on Instagram par aao, mujhe batao aise kaun se gaane hain jo aap kabhi social media par ya kisi trend mein sunte ho and then wo bas dimag mein atak jate hain. Back on the countdown, agle dono gaane वही गाने हैं जो जनता को इतने पसंद आए दैट टॉप टू तक आ गए हैं. अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी, 14 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन ऊपर जंप करा है उड़ी उड़ी, दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद द न्यूमेरो उनो सॉन्ग ऑफ द वीक, मिट्टा रौर का गाना, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं की आवाज फीचरिंग स्वरा वर्मा, गाने का नाम है शीशा. 24 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. दोनों गाने बैक टू बैक, उड़ी उड़ी ऑन नंबर 2, शीशा ऑन नंबर 1, ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनेका, एंजॉय. नंबर 2.

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Hello, Mirchi Helpline.
2: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मेरा हस्बैंड मेरी बात ही नहीं सुनता, क्या करूं?
2: अरे तो टेंशन काहे को ले रही है, उसको ना साइन लैंग्वेज में समझाना, नहीं तो लिख के दे दे।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: बिग बजट स्पेक्टिकल फिल्म्स और इमोशनल ह्यूमन सिनेमा में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। स्पेक्टिकल फिल्म्स के पास स्केल होता है, वीएफएक्स होता है, लेकिन इमोशनल सिनेमा के पास ऑडियंस की मेमोरी की करेंसी होती है। आवारा पंटू के साथ वही इमोशनल करेंसी जुड़ी हुई है। और इस फिल्म के म्यूजिक के पीछे दो भाइयों की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है, अमाल एंड अरमान मलिक। जब ये आवारापन कंपोज हो रहा था तब सबको लगा होगा कि अमाल ये गाना अपने भाई अरमान से गवाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल दोनों भाई हिंदी फिल्म म्यूजिक से काफी टाइम से दूर थे। लेकिन अमाल ने अरमान को नहीं चुना, उन्होंने अरिजीत सिंह को चुना, और इसके पीछे भी एक काफी सॉलिड रीजन है।
1: अगर मेरे को पता है कि ये गाना अरमान भी गा सकता है या उन दोनों के अलावा मैं भी गा सकता हूँ, बट सबको एक चॉइस होनी चाहिए। मैं अरमान को भी 5-6 गाने भेजता हूँ, उसने उसको फोर्स नहीं करता कि हर गाना गाते। There have been songs like चल वहां जाते and सोचना सके जो अरमान ने गाए, एंड उसको हटा के हमने अरिजीत को लिया है। Then there is a bass abriya from MS Dhoni जो अरिजीत ने गाया है, वो हट के अरमान ने बाद में गाया। So these are creative calls, और मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है मेरे सिंगर्स के साथ कि मैं सबको इन्फॉर्म्ड भी रखता हूँ कि ये गाना शायद ये सिंगर से भी हम ट्राई करेंगे।
0: ये एक सच्चे म्यूजिशियन की पहचान है। अपने भाई से प्यार करना एक बात है, लेकिन गाने की आत्मा के साथ ऑनेस्टी दिखाना दूसरी बात। अमाल ने भाई से ज्यादा गाने की सुनी, और इस गाने की किस्मत देखिए, अरिजीत ने इस गाने के लिए अपनी टेम्पररी सिंगिंग रिटायरमेंट को तोड़ दिया, और अमाल ने इस ट्रैक के बाद म्यूजिक से पॉज ले लिया। दोनों थक कर रुक गए, लेकिन गाना आगे निकल गया। उन लोगों के लिए जिन्होंने इमरान हाशमी के गानों को सिर्फ सुना नहीं है, अपनी जवानी में जिया है, एट नंबर 5 इज ये आवारापन।
2: नंबर 5 मेरे

0: हेलो
1: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं? किरण पाल जी से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा है आपको?
0: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
1: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
0: 23।
1: एक सेकंड सर, आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
0: बिल आया था 2200 रूपए का?
1: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए है ना?
0: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
1: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
0: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
1: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
0: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
1: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया है, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
0: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
1: हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर, आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
0: चिल्लाने का क्या मतलब है?
1: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
2: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
0: हेलो
1: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
0: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
1: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
0: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
1: नहीं तो आप बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज।
2: सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे।
1: लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
5: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: नंबर 17 पर है कहो तो फ्रॉम प्रेम कीटानो, अरमान मलिक की आवाज में। और अरमान को सुनते ही एक ईरा वापस आ जाता है जहन में, जब उनकी आवाज बॉलीवुड रोमांस की एक डिफॉल्ट सेटिंग हुआ करती थी। लेकिन आवाजों का सफर बहुत ही अजीब होता है। नंबर 16 पर है कॉकटेल 2 का माशूका, और कॉकटेल का नाम सुनते ही सीधा 2012 याद आ जाता है, जब इस फ्रेंचाइज ने एक बिल्कुल नए साउंड को इंट्रोड्यूस किया था। ये नेहा कक्कड़ की शुरुआत थी, और फिर 2015 से 2021 के बीच बॉलीवुड में एक ऐसा फेज आया जब नेहा की आवाज से बचना इम्पॉसिबल था। काला चश्मा, दिल पर, कर्मी, वेडिंग हो, पार्टी हो या क्लब एंथम, नेहा वाज एवरीवेयर। लेकिन इस कहानी का सबसे अनकंफर्टेबल सच पता है क्या है? बॉलीवुड ने नेहा कक्कड़ को कभी ऑफिशियली रिटायर नहीं किया। नेहा ने 2021 के बाद, गर्मी के बाद, कई गाने गाए, लेकिन गर्मी वो आखिरी गाना था जिस लेवल पर कल्चरल सैचुरेशन पहुंच गई थी, जहां गाना आने से पहले ही लगता था ये तो नेहा का जमाना है।
1: छूट गया।

0: एंड देन इंडस्ट्री का टेस्ट बदल गया, नए सिंगर्स आए, नया साउंड आया। और सच ये है कि ये इंडस्ट्री किसी आर्टिस्ट को तब तक ही सर पर बिठाती है जब तक वो करंट ट्रेंड की जरूरत है। तो आज जब नेहा के पुराने हिट चलते हैं तो नॉस्टैल्जिया किसी एक सिंगर का नहीं है, एक पूरे बॉलीवुड ईरा का होता है। इसलिए आज मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट उस दौर के नाम जहां हर जगह गूंजता था नेहा कक्कड़ का नाम। Here is आँख मारे फ्रॉम सिम्बा।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

0: come on.
1: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: 89.6.
3: It's hot.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: The show was absolutely amazing.
2: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
3: Only on Mirchi. It's hot. Number 15.

पिया बॉलीवुड का सबसे फेवरेट रोमांटिक वर्ड, लेकिन कभी सोचा है कि रोजमर्रा की जिंदगी डेली लाइफ में हम इस वर्ड को बिल्कुल नहीं यूज करते। रियल लाइफ में अगर आप किसी को पिया बोल दोगे ना तो वो शायद शर्मा जाए या फिर आप पर शक करने लगे, लेकिन हिंदी सिनेमा ने पिया को कभी रिटायर नहीं होने दिया। 90s में फाल्गुनी पाठक ने इसे पॉप कल्चर का रिदम बना दिया था। Then 2000s में राहत फतेह अली खान ने इसे सूफी पोएट्री का रूप दे दिया।

बॉयफ्रेंड वर्ड प्रैक्टिकल है, पार्टनर वर्ड कॉर्पोरेट लगता है और लवर वर्ड थोड़ा रिस्की है, लेकिन पिया में रोमांस के साथ एक अलग ही पोएट्री है। और आज इतने सालों बाद प्यार को शायद नाम से ज्यादा एक सवाल की जरूरत है, जब दिल चाहता है कि सामने वाला बिना कहे सब समझ जाए। सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया की एक फिल्म आ रही है वन, लेकिन इसमें एक ऐसा गाना है विच ब्रिंग्स बैक द कोलैबोरेशन ऑफ सिद्धार्थ एंड जुबिन नौटियाल दैट गिव अस राता लंबिया इन शेरशाह एंड तुम ही आना इन मरजावा। इस बार दे ब्रिंगिंग अस अ गाना जहां फोकलोर और जज्बात मिलते हैं। नंबर 14 पर डेब्यू कर रहा है समझो ना फ्रॉम वन। नंबर 14।

0: Surin ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood Bol Dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bol Dal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
4: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। ऑलवेज लुक एट मॉनसून के, ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी। तो बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
3: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by iPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.

Mircii. Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot. Number 13. Tune.

0: लेकर।
1: नंबर 12 पर है साड़ी फ्रॉम धमाल 4, जहां लॉजिक को पॉकेट में रखकर बस मैडनेस एंजॉय करनी होती है। एंड बाय द वे दिस फिल्म इज नाउ ऑन OTT। लेकिन बॉलीवुड स्क्रीन पर पिछले कुछ वक्त में एक चीज बहुत स्ट्रॉन्गली फील हुई है। लार्ज स्केल रिलीजेस हुए, नए स्टार्स आए, लेकिन एक सुपरस्टार की फिजिकल एब्सेंस स्क्रीन पर बहुत भारी पड़ी, शाहरुख खान। 2023 में पठान, जवान और डंकी के बाद शाहरुख खान स्क्रीन से गायब हो गए, और तब रियलाइज होता है कि कुछ लोगों का ना होना भी कितना बड़ा इवेंट होता है। अब क्रिसमस पर किंग के साथ उनका वेट खत्म होने वाला है, लेकिन इतने बड़े स्टारडम के बाद शाहरुख खान खुद अपनी कामयाबी को कैसे देखते हैं?
2: मेरे को ना भगवान ने इतना दे दिया कि मेरी औकात से ज्यादा है। ये कोशिश करता रहता हूँ कि एट द एंड ऑफ माय लाइफ और करियर उतना काम कर जाऊँ कि मुझे लगे कि यार मैं वो डिजर्व करता था। मुझे बड़ी सरोज खान जी ने बोला था, एक बार मैं आया शूटिंग पे, तो तब हम तीन तीन शिफ्ट करते थे, तो मैं ऐसा आया, मैं यार थक गया, इतना काम है, मैं परेशान हो गया हूँ। उन्होंने से मुझे यहाँ पे थप्पड़ मारा ऐसा, क्योंकि बेटा एक बात याद रखना, एज एन आर्टिस्ट कभी ये मत कंप्लेन करना कि ज़्यादा काम, क्योंकि जब नहीं होता ना तो वो कंप्लेन बहुत बड़ी होती है। तो कभी मत कंप्लेन करना, बाकी हर चीज़ की कंप्लेन करो। सो मैं कोशिश करता रहता हूँ कि जितना हो जाए, जितना बन पड़े, और उससे भी ज्यादा कर सकूँ और खुशी से कर सकूँ।
1: शाहरुख खान ने यहाँ एक बहुत गहरी बात कही थी कि मुझे मेरी औकात से ज्यादा मिला है, अब कोशिश यही है कि मैं इसके लायक बनूं। उनका कद, उनका स्टैचर, वो सिर्फ उनके बॉक्स ऑफिस नंबर से नहीं बना, वो बना है इस बात से कि उन्होंने अपने काम को कभी अपना हक नहीं समझा। एंड जब बात कद की हो रही है, तो नंबर 11 पर तो है अक्षय कुमार की फिल्म वेलकम टू द जंगल का ये एनर्जेटिक चार्ट बस्टर ऊंचा लंबा कद। बट शाहरुख खान एनर्जी इज अनपैरेलल्ड, और उसका सिर्फ एक ही सबूत है मेरे पास, ट्रेन के ऊपर कोई ऐसे कैसे नाच सकता है, अलोंग विद मलाइका अरोरा खान। ये गाना है आइकॉनिक, दिस वन इज छैया छैया फ्रॉम दिल से। टॉप 20 रिवाइंड।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: क्या बताऊँ अब, मेरे बंदे ने आज फिर से मुंह लटका रखा है।
1: अरे क्या कर रहे हो मैडम, जल्दी से उसका मुंह हुक से उतारो। मुंह को लटकाते नहीं, फ्रिज में रखते हैं। बाहर रहेगा तो डिकम्पोज हो जाएगा और पुलिस भी आसानी से ढूंढ लेगी।
2: I'm joking.

मिर्जापुर को पहले सिनेमा हॉल की जरूरत नहीं थी, उसने अपना एम्पायर लोगों के लिविंग रूम्स में बनाया था। लेकिन जब वही दुनिया थिएटर में पहुंची तो ऑडियंस ने बिना किसी हिचकिचाहट के टिकट काउंटर पर लाइन लगा दी। इंडियन एंटरटेनमेंट में पहले सिनेमा से एक्टर्स टीवी पे जाते थे और फिर ओटीटी पर, लेकिन मिर्जापुर ने फ्लो ही उल्टा कर दिया। डिजिटल स्क्रीन्स पर जन्म लेने वाली दुनिया ने मल्टीप्लेक्सेस को ही कैप्चर कर लिया, क्योंकि कालीन भैया और गुड्डू पंडित अब कैरेक्टर्स नहीं रहे, ऑडियंस का पर्सनल रिलेशनशिप बन चुके हैं। ये सिर्फ हमें बताता है कि आने वाले वक्त में सिनेमा का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होगा कि फिल्म का बजट कितना है, सवाल ये होगा इस दुनिया के फैंस कितने कमिटेड हैं। जैसे आवारापन के फैंस कितने कमिटेड थे कि इमरान हाशमी को फिर से अपने सर आंखों पर बिठा लिया, एंड एक ऐसी ही बिल्कुल नई स्टाइलिश दुनिया से इसके बाद वाला गाना है विच इज ऑन नंबर 8 अमित त्रिवेदी की म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर वाली डबल एनर्जी। दिस इज फ्रॉम कुणाल खेमू की आने वाली फिल्म वाइब, रातों में आना। नंबर 8।

0: Mirchi.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burka, burka. La virpa, la burka.
0: Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Is that Mr. Vipul?
2: Yes.
3: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
2: हाँ हाँ बोलिए।
3: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
2: ओके।
3: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
2: बट इसमें करना क्या होगा?
3: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं?
2: मैं।
3: और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
3: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
2: फाइन।
3: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
2: मिलता है।
3: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
2: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
3: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
2: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
2: Have you gone mad?
3: आपने पॉटी लगाई है बच्चे कभी?
2: Talking about?
3: और इसमें
2: क्या बकवास कर रहे हैं?
3: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं, तो आपको एक हॉलीडे देंगे।
2: क्या पके जा रहे हैं?
3: हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा।
2: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग।
3: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
2: हेलो
3: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना। सर मनीष, सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
2: .com. How dare you call me?
3: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी कैटेगरी डाल रहा हूँ, मेरी बात मानिए तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा।
2: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग।
3: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
2: हेलो
3: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
2: हाँ
3: सर मनीष, सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
2: .com. How dare you call me?
3: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप

0: Hot, only on Mirchi. It's hot. मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं.
1: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
2: and earn Qatar Airways Avios today.
1: Visit our branches or download the app now.
3: The show was absolutely amazing.
4: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
5: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल. बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

वेलकम शेलकम है आपका राइट हियर ऑन 89.6 मिर्ची 1, और वेलकम करते हुए आपको उस काम की बात भी सुनाकर ही आगे बढ़ती हूँ। वेल, आई पे का एक्सचेंज रेट तो ये कह रहा है दैट 1 रियाल के बदले आपको इंडियन रुपीस मिल रहे हैं 26.27। यस, यू हर्ड इट राइट। आई थिंक सो, दिस गॉट टू बी द ऑल टाइम हाईएस्ट इफ आई एम राइट। पाकिस्तानी रुपीस जो है वो है 76.06 पर, बांग्लादेशी टाका जो है इट इज एट 33.78, वेयर एज श्रीलंकन रुपीज इज एट 90.27 एंड नेपाली रुपीज जो है 1 रियाल के बदले आपको मिल रहे हैं 41.95 नेपाली रुपीज। मैं हूँ आफरीन आपके साथ माइक से दिल तक, घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां, ऐनक लगाना आपका इंतजार कर रहा है ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

नंबर दो पर चुनरी चुनरी का चढ़ना एक मैडनेस है यार। रिलीज के इतने महीनों बाद भी ये गाना रुकने को तैयार ही नहीं है। लेकिन नंबर वन पर जो गाना बैठा हुआ है काफी कंफर्टेबली, उसके साथ मेरा एक बहुत पर्सनल कनेक्शन है। मैं कोई क्लासिकल म्यूजिशियन नहीं हूँ, मुझे म्यूजिक की टेक्निकलिटी समझ नहीं आती है, कंपोजिशन के अंदर क्या क्या जाता है आई डोंट नो। लेकिन हाल ही में मैंने तेरा मेरा रिश्ता का एक अलग ही वर्जन सुन लिया, एक सूफी कव्वाली वर्जन, नियाजी निजामी भाइयों की आवाज में।

फिल्म का ओरिजिनल वर्जन एक अकेले टूटे हुए आदमी की खामोश दुआ है, जैसे रात के सन्नाटे में कोई खुदा से अकेले में कुछ पूछ रहा हो। लेकिन कव्वाली वर्जन में वही दर्द एक महफिल का हिस्सा बन जाता है। हारमोनियम की गहरी सुरीली पत्ती के ऊपर जब तालियां और कोरस जुड़ता है तो लगता है जैसे एक इंसान की तन्हा पुकार को पूरी महफिल ने अपनी आवाज दे दी हो। सिंगल वॉइस अंदर खींचती है, कव्वाली उस दर्द को बांट लेती है, और शायद यही पहचान होती है ऑफ दीज ग्रेट सॉन्ग्स। सिंगर्स बदल जाएं, अरेंजमेंट बदल जाए, जमाना बदल जाए, लेकिन जज्बात वो कभी नहीं बदलते। 19 साल बाद भी ये गाना किसी एक फिल्म का नहीं, हर टूटे और जुड़े दिल का है। Still reigning at number one, this is तेरा मेरा रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो है 19 साल पुराना।

0: कुछ गाने चार्ट से निकल जाते हैं लेकिन हमारी मेमोरी से कभी नहीं निकलते, इसलिए हम बार बार उनके पास खींचे चले आते हैं, हर बार अपने अंदर का एक नया पन्ना पढ़ने के लिए। अगर इस बार के मिर्ची टॉप 20 में आपको अपनी कोई पुरानी याद, कोई अधूरी बात या कोई नया एहसास मिला हो तो समझ लेना कि हमारा सफर पूरा हो गया है। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम आई मीट यू हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20, दिस इज सिरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची स्टोरीज, स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
4: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
3: क्या?
4: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: The show was absolutely amazing.
7: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। नंबर 4।

0: इतने हफ्तों से गहरा हुआ का नंबर 3 पर बने रहना इस बात का प्रमाण है कि धुरंधर ने रणवीर सिंह के करियर को दो हिस्सों में बांट दिया है, बिफोर धुरंधर एंड आफ्टर धुरंधर। और रणवीर की इस जर्नी को देखकर मुझे 2011 का रणबीर कपूर याद आता है। रॉकस्टार से पहले रणवीर एक बहुत ही प्रॉमिसिंग यंग स्टार थे, लेकिन इम्तियाज अली की उस फिल्म ने रणवीर के अंदर की सारी बेड़ियां तोड़ दी। नाउ मजेदार बात यह है कि इम्तियाज अली ने जब रॉकस्टार लिखी थी, ओरिजिनली उनके दिमाग में रणवीर थे ही नहीं।
1: रणबीर कपूर को फिल्म में लेने का कोई सवाल नहीं उठता था जब मैंने रॉकस्टार लिखी थी। पहले मैं जॉन इब्राहिम के साथ वो फिल्म बनाने वाला था। एक्चुअली जब मैंने मूवी लिखी, रणबीर कपूर एक्टिंग नहीं कर रहे थे। सोचा ना था कि बनने में 4 साल लग गए थे, और उसमें मुझे अपने आप को पागलपन से बचाने के लिए कुछ रेलेवेंट काम करना बहुत जरूरी था। तो इस चक्कर में मैं स्क्रिप्ट्स लिखा करता था, उसमें से एक स्क्रिप्ट थी रॉकस्टार। मेट रणबीर अ कपल ऑफ टाइम्स, फिर हम लोग दोनों ने फैसला किया कि हम कुछ साथ में बनाएं। उसके बाद फिर मैं उनके घर गया एक कहानी सुनाने के लिए, तो उसने कहा कि अच्छा आपकी मैंने एक कहानी सुनी है, तो उस कहानी में एक रॉकस्टार होता है। फिर उसने मुझे नरेट किया, दिस इज अ यूनिक नरेशन वेयर आई वेंट टू मीट एन एक्टर एंड द एक्टर नरेटेड द स्टोरी टू मी।
0: जॉन इब्राहिम से शुरू हुई स्क्रिप्ट जब 24 साल के रणबीर तक पहुंची तो एक डायरेक्टर को अपना जॉर्डन मिल गया। जॉर्डन को हीरो नहीं था वैसे, वो गुस्से, वल्नरेबिलिटी और सेल्फ डिस्ट्रक्शन का एक तूफान था। रणबीर ने जॉर्डन को एक्टिंग से नहीं अपनी रगों से जिया था। उस दिन के बाद इंडस्ट्री ने रणबीर से पूछना बंद कर दिया कि आप क्या कर सकते हो, और देखना शुरू कर दिया कि आप कितना दूर जा सकते हो। टुडेस पिक ऑफ द वीक इज द ट्रैक दैट चेंज्ड रणबीर्स डेस्टिनी फॉरएवर फ्रॉम रॉकस्टार। दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स बाय मोहित चौहान एंड एआर रहमान एंड इरशाद कामिल। इस गाने का नाम है जस्ट लाइक द फिल्म। जो भी मैं कहना चाहूं पर बात करे अल्फाज मेरे।
2: Pick of the week.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना, आपने पहले मम्मी कहा ना पापा, आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है। But really, tell us, how old were you when you made the song?
3: What, I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall से पानी गिर रहा था. सारे बादल नीचे आ चुके. And उस बीच में ना, I saw the little train coming out. देखो बारिश हो रही है. देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining.
2: अब Twinkle Twinkle Little Star और बाबा Black Sheep के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में. है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची. It's out.
0: Bollywood Bol Dal. Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
6: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
7: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
8: कभी कभी इन चार्ट्स को एक सिंपल काउंटडाउन की तरह सुनना थोड़ा अनफेयर लगता है, बिकॉज एवरी सॉन्ग ऑन दिस लिस्ट इज एक्चुअली अ टाइम मशीन. एक गाना आपको इस हफ्ते के बॉलीवुड में ले जाता है और अगला ही गाना बिना वार्निंग के 10 साल पीछे. कभी कोई पुरानी आवाज अचानक वापस आ जाती है, कभी एक नया सिंगर किसी पुराने एहसास को अपनी नई सांस दे देता है, और कभी एक ऐसा गाना जिसे हमने सोचा था कि हम भूल चुके हैं, पता चलता है वो तो बस दिल के किसी कोने में सो रहा था. शायद इसलिए बॉलीवुड को सिर्फ न्यू और ओल्ड में बांटना मुश्किल है. यहाँ पास्ट भी हर वीक नए सिरे से रिलीज होता है और फ्यूचर भी कभी किसी पुराने गाने की शक्ल में लौट आता है. और आज की मिर्ची टॉप 20 में वक्त थोड़ा ज्यादा ही उलझा हुआ है. कुछ आवाजें वापस आई हैं, कुछ पुराने रिश्ते वापस आए हैं और कुछ गाने अपनी जगह से कई बड़े हो चुके हैं. तो चलिए देखते हैं इस हफ्ते बॉलीवुड हमें किस जमाने में लेके जा रहा है. It's me, Suren. This is the Mirchi Top 20, and we are starting with the Ghana, which is on number 20. Dhurandhar ka Aari Aari.
9: Number 20.

0: सुपरस्टार होने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या है? ऑडियंस जब आपकी एक इमेज बना लेती है तो उस इमेज के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना एक बहुत बड़ा रिस्क बन जाता है। अक्षय कुमार ने अपने 35 साल के करियर में ये रिस्क बार बार लिया है। पहले एक्शन हीरो, देन रोमांटिक लीड, फिर कॉमेडी स्टार, उसके बाद पेट्रियोटिक फेस। उन्होंने खुद एक बार बताया था कि करियर के एक दौर में जब वो हर फिल्म में सिर्फ डिशुम डिशुम कर रहे थे, तो एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें एक अजीब सा डर लगा था।
1: एक दिन महसूस हुआ यार कि मैं सिर्फ एक बोरियत से आने लगी, और क्या मैं इसी के लिए बनाऊ कि सिर्फ एक्शन ही करना है मैंने, और कुछ नहीं करना, मैं और भी कुछ कर सकता हूँ। महसूस हुआ अपने अंदर ये घिन आने लगी यार कि मैं कुछ और भी तो कर सकता हूँ। बाकी सब एक्टरों को एक्टर बुलाते हैं, मुझे एक्शन का एक्शन बुलाते हैं, बस एक्शन का किंग कर लो, ये कर लो, इसको बुला लो, इसको स्टंट करवा लो, ये स्टंट मैन है। मैं यार करूंगा, आई थॉट इन माई माइंड आई हैव टू नाउ चेंज माई सेल्फ, आई हैव टू टेक अ रिस्क।
0: अक्षय ने अपने चेहरे में एक इमेज की जेल को देखा। आज हैवान में अक्षय कुमार एक डार्क सीरियल किलर के रूप में उस इमेज से एक बार फिर भाग रहे हैं। और इसी डार्क वर्ल्ड के बीच प्रीतम नायर ने एक बहुत ही मेलोडिक कॉन्ट्रास्ट दिया है शान और सुखविंदर सिंह की आवाज में। मूवी में सैफ अली खान पर पिक्चराइज ये गाना एक पुराने दौर के सुकून को लौटा कर लाता है। नंबर 18 पर डेब्यूइंग दिस वीक, दिस इज रंगियारा फ्रॉम हैवान। नंबर 18।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
1: मैं मेरी एक्स को भुला नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ?
2: अरे ब्रो, ये तो अच्छी बात है ना, अपनी एक्स का नाम अपना पासवर्ड बना ले, कभी भूलेगा ही नहीं ना।
3: ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।
4: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची 101.3।

0: पूरे इंडिया की फेस्टिविटीज एक तरफ और इनके यहाँ के फेस्टिवल्स दूसरी तरफ।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं तो सोच रही हूँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के हर दूसरे मेंबर को तो बहुत ही ज्यादा टेंशन स्ट्रेस हो जाता होगा यार, क्योंकि आपके घर में भी कोई ना कोई एक ऐसा रिलेटिव होगा जो आपसे या पूरे परिवार से कहीं ज्यादा ऊपर होगा रसूख में, क्लास में, और उनके घर के किसी सेलिब्रेशन में अगर आपको इनवाइट मिलता है तो भाई साहब सबसे पहले टेंशन शुरू हो जाती है कि अरे अरे गिफ्ट क्या देना है, अरे अरे क्या पहन के जाना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और कुछ ऐसा ही सा फील होता है जब कोई भी फेस्टिवल हो और दी अंबानीज के घर में उसका सेलिब्रेशन हो। जिस हिसाब से सेलिब्रिटीज का समागम होता है वो तो एक चीज होती है, बट जिस लेवल पे हर फेस्टिवल को मनाया जाता है दैट एक्चुअली शोज कि भाई पहचान मैटर करती है, मनी फॉलोज ब्रदर, मनी फॉलोज। और जब मनी फॉलो करती है तो हर दूसरा इंसान भी आपको बस फॉलो करता ही जाता है यार। वैसे अगर जिंदगी में कभी भी गरीबी का एहसास कम होने लगे ना तो अंबानी के फेस्टिविटीज को एक बार देख लेना, चुटकी बजाते ही दर्द का जो लेवल स्पाइक करेगा उसका कोई हिसाब ही नहीं। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Pepermilci.
1: Escabana, uscabana, sacabana. Yabana. Burga, burga. La virba la burga. Milci, burga.
2: हेलो,
3: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
2: स्पीकिंग,
3: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ आपका। अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
2: जी।
3: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
2: बोल, कौन रहे हैं?
3: मैं जयदेव बोल रहा हूँ और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
2: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
3: बिल्कुल
2: अलाउ नहीं करते हैं। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
3: सही बात है,
2: गर्ल्स को नहीं देंगे।
3: सही बात कह रही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
2: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है।
3: एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार। शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ। मैं, हाँ,
2: आप किससे बात कर रहे हैं?
3: मैं, वो मेरी वाइफ है यही।
2: हेलो,
3: हाँ बोलिए।
2: हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए।
3: मैं क्या सुधरू यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
2: साहब, मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं। नकली तरह से आप मेरे से
3: नहीं,
2: बातें कर
3: नहीं
2: रहे हैं।
3: नकली तरीके से क्या?
2: नहीं, असली मुझे दिख रही है। असली औकात नहीं कर रहे हैं।
3: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार।
2: तो कोई बपौती है क्या?
3: नहीं, बात नहीं, तमीज सीखिए।
2: नहीं, तमीज नहीं, सुनिए, बिल्कुल नहीं सुननी है।
3: मेरी बात सुनिए। देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए, आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snuno. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: ही घर पे
1: एंड आरसी शाम एक स्टेज और दो कमाल. बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनो. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

0: दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। सैयारा फेम डायरेक्टर मोहित सूरी और रामगोपाल वर्मा कोलैब करने वाले हैं, एंड दिस इज हैपनिंग फॉर अ गैंगस्टर फिल्म जिसको YRF प्रोड्यूस करेगा। सो मोहित सूरी जो है वो इस फिल्म की कहानी लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे रामगोपाल वर्मा, एंड लाइक आई सेड बैकिंग होगी YRF की। बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। आलिया भट्ट और सिस्टर शाहीन भट्ट की अपकमिंग प्रोडक्शन डोंट बी शाई का ट्रेलर नहीं देखा तो देख लीजिए, बिकॉज दिस मूवी इज प्रॉमिसिंग लव, हार्ट ब्रेक एंड बैड डिसीजंस। एंड ऑनेस्टली ये सारी चीजें हमने अपनी जिंदगी में भर भर के की है यार, सो रिलेटेबिलिटी फैक्टर काफी अमेजिंग है। बाकी द मूवी इज सेट टू स्ट्रीम ऑन प्राइम फ्रॉम द 25th of September, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। डायरेक्टर रिभु दास गुप्ता की अपकमिंग थ्रिलर में लीड रोल निभाने वाले हैं जॉन एब्राहम, जिसकी शूटिंग इस महीने से लंदन में शुरू हो जाएगी। बाकी की डेट्स इस फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, इनफैक्ट अभी तक इसका टाइटल भी डिसाइडेड नहीं है, बट जैसे ही कुछ और पता चलेगा आपको जरूर बताऊंगी। अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।
1: चोरी चोरी चुपके से आके मेरी आंखों में समा जा, धीरे धीरे।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्चु पे ट्यून्ड हो आप, और इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी क्लैरिफाई, मैं तो बॉलीवुड गेम खेलने की बात कर रही हूँ यार। सो बेसिकली हर रोज की भांति आज भी मैं आपके अंदर के फिल्मची को जगाने की कोशिश कर रही हूँ। सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर डीएम करना होता है, एंड देन मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। आज सबसे पहले हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे कौन है?
3: हाय श्रुति, मैं आरुल बात कर रहा हूँ।
0: हाय आरुल, कैसे हो आप?
3: बढ़िया हूँ, आप बताओ?
0: बिल्कुल बढ़िया,
3: मैं गेम खेलने के लिए तैयार हूँ।
0: क्या बात, पूछने के पहले ही। चलिए फिर आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को जगाते हैं। मेरा पहला सवाल है, रीसेंट हिंदी फिल्म वो कौन सी है जिसमें धर्मेंद्र पाजी और शबाना आजमी के बीच चुंबन है?
3: रॉकी रानी की प्रेम कहानी।
0: बहुत ध्यान से देखे हैं आप। एनीवे, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में रॉकी की दादी कौन है?
3: जया बच्चन।
0: जया बच्चन की फिल्म जिसमें उनका एक भी डायलॉग नहीं है, वो बस लालटेन जलाती दिखती हैं सफेद साड़ी में।
3: सफेद साड़ी में लालटेन जलाती दिखती हैं।
0: हाँ जी,
3: शोले।
0: क्या बात है, शोले में धन्नो किसकी घोड़ी है?
3: हेमा मालिनी।
0: हेमा मालिनी अपने बच्चों के घर बारी बारी से किस फिल्म में जाती है?
3: बागबान।
0: क्या बात है, बागबान में टाइपराइटर कौन चलाता है?
3: बच्चन साहब।
0: अमिताभ बच्चन, अश्वत्थामा किस फिल्म में बने हैं?
3: कल्की।
0: कल्की में कल्की की मम्मी कौन है?
3: दीपिका
0: पाडुकोन की फिल्म जिसमें वो अपने रियल लाइफ हस्बैंड के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती हैं।
3: एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर।
0: अटक गए तो अटक गए हैं आरुल, अटक गए हैं। कोई बात नहीं यार, बट यहाँ तक इतना मस्त जो गेम खेला है उसके लिए आपको ये टैग तो जरूर बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो बस इसके आगे का गेम अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और आओ साथ मिलके ढूंढते हैं आपके अंदर के फिल्मची को। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून हूँ आप, आने से पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो मिर्ची फिल्मची गेम की बात कर रही हूँ यार, जहाँ आपको मैं अपने इंस्टा पे जाके मेरे डीएम्स में अपना नंबर भेजने की बात कहती हूँ ताकि मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत कर सकूँ। तो आज हमने आरुल के साथ शुरू किया, बट अब रूहान आगे का गेम कंटिन्यू करेंगे। तो तैयार है रूहान? ऑल राइट, सो माई क्वेश्चन इज की दीपिका पादुकोण किस फिल्म में अपने रियल लाइफ हस्बैंड के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नजर आई हैं?
3: बाजीराव मस्तानी।
0: यस, पहला इंसान जिसने एकदम एक बार में ही गेस कर लिया। बाजीराव मस्तानी में किससे उसका गुरूर छीन लिया जाता है?
3: प्रियंका चोपड़ा।
0: सब पता है लड़के को। प्रियंका चोपड़ा किस फिल्म में सुपर हीरो की वाइफ बनी है?
3: क्रिश 3।
0: क्या बात, क्रिश में किसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल होता है?
3: ऋतिक रोशन।
0: ऋतिक रोशन कौन सी फिल्म में मुगल राजा बने हैं?
3: जोधा अकबर।
0: सब पता है भाई, जोधा अकबर में अकबर की राजपूत वाइफ कौन है?
3: ऐश्वर्या राय।
0: ऐश्वर्या राय किस फिल्म में शायरा बनी है?
3: ए दिल है मुश्किल।
0: ए दिल है मुश्किल में अपनी दोस्त से एक तरफा प्यार किसको होता है?
3: रणबीर कपूर।
0: रणबीर कपूर ने किस फिल्म में अपना टावल गिराया है?
3: सावरिया।
0: सावरिया में उनकी हीरोइन कौन है?
3: आई गेस इट्स सोनम कपूर।
0: यस इट इज। सोनम कपूर की किस फिल्म में कबूतर का नाम मसक कर लिया?
3: दिल्ली 6 मैंने देख रखी है।
0: क्या बात, दिल्ली 6 के मेल लीड कौन है?
3: अभिषेक बच्चन।
0: अभिषेक बच्चन की फिल्म जिसमें उनका सरनेम आता है?
3: बोल बच्चन।
0: बोल बच्चन में झूठ किसको पसंद नहीं?
3: अजय देवगन।
0: अजय देवगन किस फिल्म में 2 अक्टूबर को पंजिम जाते हैं?
3: दृश्यम ऑफ कोर्स।
0: दृश्यम में लेडी पुलिस ऑफिसर कौन है?
3: तब्बू।
0: तब्बू की फिल्म जिसमें वो अपने पति को मार देती है?
3: अंधाधुन।
0: अंधाधुन में अंधे होने की एक्टिंग कौन करता है?
3: आयुष्मान खुराना।
0: आयुष्मान खुराना किस फिल्म में फोन पे लड़की बन के बात करते हैं?
3: ड्रीम गर्ल।
0: ड्रीम गर्ल आपकी कौन है? नेवर माइंड, बट सिंगल होने का मतलब ये थोड़ी है कि आपको ये टैग नहीं दूंगी मैं।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: Well, I'm sure ये गेम सुन के आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा भी एकदम से जाग जाता होगा, तो उसको जगा के ही रखना क्योंकि हर रोज इस गेम का सिलसिला मेरे शो पे जारी रहता है। मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे जाके अपना नंबर मुझे डीएम करो, एंड रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: The late Irfan Khan से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? Is it Delhi? Is it Mumbai?
2: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
1: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोलडाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोलडाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
4: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: Apache helpline?
1: Hi there, what's up? Tell me.
0: सर ऑफिस में किसी को मेरी वैल्यू पता नहीं है. Oh, no. क्या करूं?
1: ब्रो यार इट्स सो सिंपल, कल ऑफिस में सबको अपनी सैलरी बता दे. एवरीवन विल नो योर वैल्यू.

0: भाई एक्सट्रीम्स के अलावा भी एक जोन होता है
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: जिसको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बहुत कम फिल्मों ने एक्सप्लोर किया है। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ। और हम बॉलीवुड में फीमेल कैरेक्टर्स को अक्सर दो एक्सट्रीम्स में देखते आए हैं, राइट? या तो वो बहुत बेचारी सी है या फिर इतनी स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन है कि भाई उसमें कोई वीकनेस ही नहीं है। लेकिन कुछ फिल्म्स ऐसी हैं जहां विमेन को सिर्फ इंस्पिरेशनल बनाने की कोशिश नहीं की गई, उन्हें इंसान बनाया गया। वो करियर को लेकर कंफ्यूज हो सकती हैं, घर से इरिटेटेड हो सकती हैं, गलत डिसीजंस ले सकती हैं, रिलेशनशिप्स में मेस कर सकती हैं, अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर कर सकती हैं, या बस एक ऑर्डिनरी लाइफ जीना चाहती हैं। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स को डिस्कस कर रही हूँ। लिस्ट में सबसे पहले वील टॉक अबाउट साल 2015 में आई फिल्म पीकू से पीकू के किरदार के बारे में। नंबर दो पे वील टॉक अबाउट साल 2012 की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से श्रीदेवी के कैरेक्टर शशि गोडबोले के बारे में। नंबर तीन पे हम बात करेंगे 2018 में आई फिल्म सर से तिलोत्तमा शोमे के कैरेक्टर रत्ना के बारे में। नंबर चार पे साल 2024 में आई फिल्म लापता लेडीज से दोनों ही फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में। और नंबर पांच पे साल 2025 में आई फिल्म मिसेस से सानिया मल्होत्रा के कैरेक्टर रिचा के बारे में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद पीकू, जिस फिल्म के डायरेक्टर हैं सुजीत सरकार और इसे लिखा है जूही चतुर्वेदी ने। एंड यू नो ये फिल्म शायद उन रेयर फिल्मों में से है जहां एक वुमन की लाइफ को किसी लव स्टोरी के थ्रू डिफाइन नहीं किया गया है। पीकू एक आर्किटेक्ट है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, रिलेशनशिप्स हैं उसकी लाइफ में, एसईएक्स और मैरिज को लेकर उसके अपने ओपिनियंस हैं, और साथ में एक ऐसे फादर हैं जो लिटरली उसके पेशेंस का डेली टेस्ट लेते हैं। डायरेक्टर सुजीत सरकार और राइटर जूही चतुर्वेदी ने पीकू को आइडियल डॉटर बनाने की जगह एक कॉम्प्लिकेटेड, समटाइम्स इरिटेबल, समटाइम्स सेल्फिश बट डीपली लविंग वुमन बनाया है। एंड दीपिका पादुकोण एज पीकू ग्लैमरस हीरोइन कम एक रियल दिल्ली वुमन ज्यादा लगती है। वेल ऐसे ही बाकी के चार और कैरेक्टर्स को डिस्कस करूंगी बट इन अ वाइल, अभी के लिए एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची। मैं हूं आपके साथ श्रुति, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vieva la burga.
1: Mirci, burga. Hello.
2: Hello.
1: Hello.
2: हाँ जी कौन?
1: हेलो, किससे
2: बात करनी है?
1: भैया किससे बात करनी है?
2: किससे बात करनी है?
1: भैया नंबर चेक करके
2: दोबारा मिला?
1: पागल
2: अरे पता नहीं कौन बोल रहा था।
3: इको आ रहा है, इको।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो जेल साले भैया को मारूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ। नंबर चेक के मिला?
1: हेलो
2: हेलो
1: भैया
2: क्यों परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार? पता नहीं कौन है यहाँ पे फोन करे जा रहा है, अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा, नंबर आ गया मेरे पास।
1: पागल
2: कहीं का।
3: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया। क्या नाम है सर आपका? आप बुरा मत मानिएगा प्लीज।
1: रवि
3: रवि मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ। आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे, उसमें इको नहीं आएगी।
1: कुकड़ू को
3: भाई, कुकड़ू को बहुत परेशान कर दिया आपने
1: भाई।
3: आप खत्म कर दो यार।
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek sham, ek stage aur do kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah.

0: एक नारी या तो बेचारी या फिर सब पे भारी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से तो जनरली हमें ऐसे ही पिक्चराइजेशंस मिलते हैं इफ वी टॉक अबाउट द फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स ऑफ आर मूवीज। अक्सर दो एक्सट्रीम्स में देखा है हमने उन्हें, या तो बेचारी होती हैं या फिर एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन जिनके पास कोई वीकनेस नहीं होती। लेकिन आज मैं पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू कुछ ऐसी फिल्मों को एक्सप्लोर कर रही हूं जिनमें एक्चुअल में औरतों को समझा गया, उनके फ्लॉज को भी उतना ही एक्नॉलेज किया गया जितने उनके अच्छे एट्रीब्यूट्स को। इन द लिस्ट सबसे पहले हमने बात की पीकू के बारे में। अब नंबर दो पे बात करते हैं फिल्म इंग्लिश इंग्लिश से श्रीदेवी मैम के कैरेक्टर शशि गोडबोले के बारे में। सो ये फिल्म गौरी शिंदे ने लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है और ये 2012 में रिलीज हुई थी, जिसमें शशि गोडबोले एक होममेकर, एक माँ, एक वाइफ और सबसे इम्पोर्टेंट एक महिला हैं, जिसे धीरे धीरे रियलाइज होता है कि यार घर संभालना उसकी पूरी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। इस फिल्म की ब्रिलियंस ये है कि शशि कोई रिवॉल्यूशनरी कैरेक्टर नहीं है, वो ऑर्डिनरी है। वो घर के लिए लड्डू बनाती है, फैमिली को खुश रखने की कोशिश करती है, लेकिन इंग्लिश ना बोल पाने की वजह से उसी फैमिली के सामने इनसिक्योर भी फील करती हैं। सो डायरेक्टर गौरी शिंदे ने शशि की जर्नी को लैंग्वेज सीखने से ज्यादा सेल्फ वर्थ डिस्कवर करने की जर्नी बना दी और श्रीदेवी मैम ने बिना ओवर एक्टिंग के एक ऐसी वुमन को प्ले किया जिसके अंदर का कॉन्फिडेंस हम स्लोली स्क्रीन पर वापस आता देखते हैं। इन शॉर्ट इंग्लिश विंग्लिश रिमाइंड्स अस कि कभी कभी दुनिया को इंप्रेस करने से पहले खुद को

इम्प्रेस करना जरूरी होता है। मूविंग ऑन नंबर 3 पे लेट्स टॉक अबाउट 2018 में आई फिल्म सर से तिलोत्तमा शोमे के कैरेक्टर रत्ना के बारे में, जो एक डोमेस्टिक हेल्प है। फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है रोहेना गेरा ने, जहां एक डोमेस्टिक वर्कर रत्ना अश्विन यानी कि एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले इंसान के यहाँ काम करती है। दोनों के बीच फीलिंग्स डेवलप होती हैं, लेकिन फिल्म का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या ये दोनों प्यार कर सकते हैं। फिल्म पूछती है कि भाई क्या सोसाइटी उन्हें इक्वल समझेगी। एंड डायरेक्टर रोहेना ने रत्ना को सिर्फ एक मेड या लव इंटरेस्ट नहीं बनाया, उसके अपने एम्बिशंस भी दिखाए हैं। वो टेलर बनना चाहती है, अपनी लाइफ बनाना चाहती है और अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। एंड भाई साहब, द काइंड ऑफ एक्टर तिलोत्तमा शोमे इज, उनकी परफॉर्मेंस इतनी रिस्ट्रेन्ड है कि रत्ना को देखते वक्त लगता है कि हम किसी कैरेक्टर को नहीं, किसी रियल वुमन की लाइफ क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये फिल्में अगर अभी भी आपकी वॉचलिस्ट में नहीं है, देन प्लीज पुट इट इन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और बाकी की दो फिल्मों को अभी से कुछ ही देर में वापस डिस्कस करूंगी। सो यू बेटर स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: या तो बेचारी या फिर सब पे भारी।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: इन जनरल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी मूवीज आई हैं उसमें महिलाओं को कुछ इसी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, या तो वो एकदम बेचारी सी होंगी या फिर स्ट्रांग इंडिपेंडेंट वुमन जिसके अंदर कोई कमी ही नहीं है, कोई वीकनेस ही नहीं है। बड़ाश पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी फीमेल प्रोटैगनिस्ट्स को डिस्कस कर रही हूं जिनको देख के एक्चुअली फील हुआ यार ये तो अपनी सी कहानी लग रही है। लिस्ट में सबसे पहले हमने डिस्कस किया पीकू को, नंबर दो पे फिल्म इंग्लिश से शशि गोडबोले को, नंबर तीन पे फिल्म सर से रत्ना को। अब बारी है नंबर चार पे टू डिस्कस अबाउट लापता लेडीज की लेडीज। ये फिल्म आई थी 2024 में, डायरेक्ट किया है इसे किरण राव ने। फिल्म की ओरिजिनल कहानी विप्लव गोस्वामी ने लिखी है लेकिन जो स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स हैं उन्हें लिखा है स्नेहा देसाई ने। और अगर आप इस फिल्म को सरफेस लेवल पे देखोगे तो आपको दो दुल्हनों की हिलेरियस स्टोरी दिखाई देगी जो ट्रेन में लिटरली एक्सचेंज हो जाती है, लेकिन अंदर से ये फिल्म एक बहुत सिंपल सवाल पूछती है कि अगर एक महिला को कभी खुद से डिसाइड करने का मौका मिले तो वो एक्चुअली चाहती क्या है। फिल्म में दो प्रोटैगनिस्ट्स हैं, फूल और जया। दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आती हैं लेकिन दोनों को अपनी आइडेंटिटी के साथ निगोशिएट करना पड़ता है। फिल्म की डायरेक्टर किरण राव ने फिल्म को प्रीची बनाए बिना ये दिखाया है कि एजुकेशन सिर्फ स्कूल जाना नहीं होता, अपनी आवाज पहचानना भी एजुकेशन है। जहां फूल का इनोसेंस और जया की एम्बिशन दोनों मिलकर एक ब्यूटीफुल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करते हैं। यस, लापता लेडीज इज फनी, वार्म एंड डिसेप्टिवली सिंपल, बट अंडरनीथ इट्स अबाउट वुमेन डिस्कवरिंग दैट उनकी जिंदगी उनके हाथों में है। And now, last but definitely not the least, number 5 पे let's talk about Mrs. ये फिल्म आई थी 2025 में, डायरेक्ट किया है इसे आरती काड़व ने, लिखा है हरमन बावेजा के साथ साथ आरती काड़व एंड अनु सिंह चौधरी ने। और फिल्म मिसेस की रिचा प्लेड बाय सान्या मल्होत्रा एक न्यूली मैरिड वुमन है। शादी से पहले उसके ड्रीम्स होते हैं, डांस है, अपनी आइडेंटिटी है, बट शादी के बाद सडनली उसकी दुनिया किचन, एक्सपेक्टेशंस और घर कैसे चलाना है में ही सिमट जाती है। और इस फिल्म की सबसे अनकंफर्टेबल चीज ये है कि यहाँ कोई एक विलन नहीं है, ये पूरा का पूरा सिस्टम ही ऐसा है। डायरेक्टर आरती ने रिचा को एक एंग्री फेमिनिस्ट स्टीरियोटाइप नहीं बनाया। शी इज इनिशियली एक्साइटेड अबाउट मैरिज, शी वांट्स टू फिट इन, शी वांट्स टू बी लाइक्ड, बट धीरे धीरे उसको भी रियलाइज होता है कि भाई मैं वाइफ बनी हूँ या सिर्फ एक फंक्शन बन के रह गई हूँ। इन शॉर्ट मिसेस का सबसे पावरफुल क्वेश्चन है कि अगर एक महिला पूरा घर संभालेगी तो भाई उसकी अपनी लाइफ कौन संभालेगा। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। सैयारा फेम डायरेक्टर मोहित सूरी और रामगोपाल वर्मा कोलैब करने वाले हैं, एंड दिस इज हैपनिंग फॉर अ गैंगस्टर फिल्म जिसको YRF प्रोड्यूस करेगा। सो मोहित सूरी जो है वो इस फिल्म की कहानी लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे रामगोपाल वर्मा, एंड लाइक आई सेड बैकिंग होगी YRF की। बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। आलिया भट्ट और सिस्टर शाहीन भट्ट की अपकमिंग प्रोडक्शन डोंट बी शाई का ट्रेलर नहीं देखा तो देख लीजिए, बिकॉज दिस मूवी इज प्रॉमिसिंग लव, हार्ट ब्रेक एंड बैड डिसीजंस। एंड ऑनेस्टली ये सारी चीजें हमने अपनी जिंदगी में भर भर के की है यार, सो रिलेटेबिलिटी फैक्टर काफी अमेजिंग है। बाकी द मूवी इज सेट टू स्ट्रीम ऑन प्राइम फ्रॉम द 25th of September, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। डायरेक्टर रिभु दास गुप्ता की अपकमिंग थ्रिलर में लीड रोल निभाने वाले हैं जॉन एब्राहम, जिसकी शूटिंग इस महीने से लंदन में शुरू हो जाएगी। बाकी की डेट्स इस फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, इनफैक्ट अभी तक इसका टाइटल भी डिसाइडेड नहीं है, बट जैसे ही कुछ और पता चलेगा आपको जरूर बताऊंगी। अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: है।
1: अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत। थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
4: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरी बीपी कभी मुझे सीरियसली लेती ही नहीं, क्या करूं?
1: तो प्रभु क्या है ना कि आप तुरंत ही हॉस्पिटल की ओर प्रस्थान करें, सीरियस लोगों को ना वहीं ले जाया जाता है।
2: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं 3।
3: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल।

0: रिकॉर्डिंग बूथ के बाहर रिकॉर्ड किया था अमिताभ बच्चन ने ये गाना। मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूं आप, मैं हूं आपके साथ श्रुति। और साल 2002 में अदनान सामी का ये वाला गाना आया था, याद है?
1: बोला कभी मुझे छोड़ना, कभी नहीं भूला तेरा ये एहसान, मैं कभी नहीं।
0: जिसमें सामी साहब के साथ साथ ऑफकोर्स अमिताभ बच्चन द लेजेंडरी बिग बी की भी आवाज है। तो पहले उन्होंने ये गाना गाने से एकदम से मना कर दिया था, बट फिर अदनान सामी ने उनको बोला कि यार सर, आपने मिस्टर नटवरलाल और सिलसिला में भी अपनी आवाज दी है, तो इस गाने में क्यों नहीं। तो फिर अमिताभ बच्चन वाज लाइक, अच्छा ठीक है, ये गाना मेरे पास छोड़ दो, फिर दो चार दिन के बाद देखते हैं। फिर अदनान सामी ने जब उनसे पूछा कि सर क्या ओके है, तो उन्होंने बोला हाँ ओके तो है, बट मैं ना नीचे के सुर में गाऊंगा इस गाने को। फिर जब वो स्टूडियो पहुंचे और रिकॉर्डिंग की शुरुआत हुई, तो वो अपने बैरिटोन वॉइस में ही गा रहे थे, नीचे के सुर में बेसिकली, बट द सॉन्ग वॉज नॉट कमिंग आउट वेल। तब अदनान सामी ने उनको बोला कि सर प्लीज प्लीज थोड़े ऊपर वाले सुर लगाएंगे तो सच्ची बता रहा हूँ सब मस्त हो जाएगा। और जब बिग बी ने ऐसा किया, देन द सॉन्ग एक्चुअली साउंडेड रियली गुड। टू विच अमिताभ बच्चन का कहना था कि हाँ हाँ, ये रिकॉर्डिंग बूथ के बाहर मैं गा रहा हूँ इसलिए अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े बड़े स्पीकर्स लग गए हैं एंड व्हाट नॉट। लेकिन जैसे ही मैं बूथ में जाके हेडफोन लगाता हूँ तो सारा जोश निकल जाता है। एंड दैट इज व्हेन अदनान सामी डिसाइडेड कि भाई, बिग बी को अगर बूथ के बाहर कंफर्टेबल लग रहा है तो गाना तो यहीं रिकॉर्ड होगा। एंड दैट्स व्हाई आई सेड, ये जो आइकॉनिक नंबर हम आज भी सुनते हैं, उसे अमिताभ बच्चन ने रिकॉर्डिंग बूथ के बाहर रिकॉर्ड किया था। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: हेलो किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहा हूँ
2: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा है आपको।
1: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
2: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
1: 23।
2: एक सेकंड सर। सर अपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
1: हाँ जी, हाँ जी।
2: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
1: बिल आया था 2200 रूपए का।
2: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
1: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
2: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
1: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
2: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
1: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
2: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
1: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
2: हूँ? मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
1: चिल्लाने का क्या मतलब है?
2: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ, आपको मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
3: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
1: हेलो
2: सर, से जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
1: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
2: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
1: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
2: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है, मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे। और
1: कुकड़ों को
2: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। Attention shoppers, the news you've been waiting for is finally here.
5: Yes, it's time for Lulu Mega Deals.
4: Everyday essentials se lekar latest electronics, stylish fashion, fresh food and home favorites.
5: Sab kuch under one roof with incredible value. Spend less, save way more.
4: Exactly. To kal ka wait bilkul mat karo. Shop today, save today.
5: Rush to your nearest Lulu hypermarket right now before these deals are

0: देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
1: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoonu. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah live in

वाले लोगों के मद्देनजर, वो पावर वाले चश्मा हो या सनग्लासेस हो, व्हाट सो एवर इट इज. सो फर्स्ट आर द पीपल जो अपने चश्मे को बड़ा साफ सुथरा रखते हैं, मतलब भाई आंखों के ऊपर लगा रहे हैं चश्मा तो उसको पहले क्लीन करना होगा ना, दैट इज द बेसिक्स राइट. लेकिन जो दूसरी कैटेगरी है, हो भगवान ने बड़े फुर्सत में बनाया है इनको, और इनको 0.1% की फुर्सत नहीं होती है कि भाई ये अपने चश्मे को थोड़ा तो साफ कर लें, क्योंकि आपको ना दूर से इनके चश्मे के ऊपर, मतलब आप जिस तरफ से इनको देख रहे हैं उधर से दिख जाएगा कि आए हाय कितना गलीज, कितना गंदा कर रखा है अपने चश्मे के शीशे को. और मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि भाई पावर वाले चश्मे है ना तुम्हारे, एक तो ऐसे ही तुमको नहीं दिखता, ऊपर से चश्मा लगा रहे हो वो भी ऐसे धुंधला धुंधला सा, क्या खाक दिख रहा होगा तुमको. तभी मैंने कहा इस दूसरी कैटेगरी वाले को देख के मुझे कुछ कुछ होने लगता है. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल.

0: एकदम से हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया यार।
1: OTT एंड चिल।
0: मिर्ची बेटी उन्नु, आप मैं हूँ आपके साथ श्रुति, और बिग बॉस 20 की बात कर रही हूँ, जहाँ हमारे बिग बॉस ने तो एकदम से नॉमिनेशंस के हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया यार। मतलब बताओ, लोग थोड़ी बहुत प्लानिंग करके भी गए थे नॉमिनेशन की प्रक्रिया में, लेकिन बिग बॉस ने इसके बारे में पता नहीं लगने दिया। उन्होंने सबके नाम निकलवाए कि हाँ बेटा बताओ कौन किसको नॉमिनेट करना चाहता है, और अंत में बोल दिया मैं कर रहा हूँ इस नॉमिनेशन प्रक्रिया को खारिज। क्यों? क्योंकि आसिफ खान, रोहित और स्काउट ओपी ने एक पॉइंट पे इन द हाउस ये वाली डिस्कशन कर ली थी। मतलब बताओ, बिग बॉस के

का एक सबसे बड़ा रूल है ना कि आपको नॉमिनेशंस डिस्कस नहीं करनी, आपको प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं करनी कि भाई इसको निकालना है उसको नहीं निकालना. बट दीज थ्री मस्केटियर्स वर एक्टिंग ओवर स्मार्ट, और उनकी ओवर स्मार्टनेस निकालते हुए बिग बॉस ने इन तीनों को ही नॉमिनेट कर दिया भाई. और उसके बाद वाले एपिसोड में जिस तरीके से नए कैप्टेंसी को लेके टास्क मिला, ओ हो, मोहे रंग दो लाल, ये वाला गाना याद आ रहा है. ऑल दो बैकग्राउंड में रॉक म्यूजिक लगा के आप इस टास्क वाले सीक्वेंस को देख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के पीछे जो हाथ धो के, ओ सॉरी, लाल रंग धो के पड़े हुए हैं ना लोग. बाकी ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, एक इंसान जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है इन द शो इज आसिफ खान, एंड आई हैव माई रीजंस फॉर इट. कभी आराम से बताऊंगी आपको. फिलहाल तो आप मुझे बताओ कि इन घर वालों में से आपका फेवरेट कौन है. मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: darling. Every breath you take, every move you make, I will be there with you. What would I do without you? I want to love you forever and ever.
1: यार उस चीज की एक्साइटमेंट अलग ही मजा देती थी।
2: 90 ml with Shruti।
1: यार 90s में गाने सुनना सिर्फ गाने सुनना नहीं होता था, उसके लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती थी। याद है आपको, अपने पसंद के गाने एक साथ चाहिए होते थे तो बनाई अपनी मिक्स टेप, रेडियो के पास बैठकर अपनी फेवरेट गाने का इंतजार करना और जैसे ही गाना आए फट से रिकॉर्ड दबा देना, और अगर आरजे ने बीच में बोल दिया तो बस पूरा गाना खराब। फिर आती थी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, गानों का सही क्रम बनाना। भाई साहब, कौन सा गाना पहले, कौन सा उसके बाद, और कैसेट्स के कवर पर पूरे गाने की लिस्ट अपनी हैंडराइटिंग में लिखना। और अगर वो कैसेट किसी खास इंसान के लिए बनाई हो तब तो वो सिर्फ गाने नहीं होते थे, वो आपकी फीलिंग्स का एक छोटा सा तोहफा होता था। और आज देखो, हम एक क्लिक में हजारों गाने जमा कर लेते हैं, बट वो जो 90s में 10-12 पसंदीदा गानों का एक कैसेट होता था ना, वो आपकी पूरी दुनिया होती थी। तो बताओ आपके ऐसे कैसेट में कौन से वो फेवरेट गाने थे जो आपने चुन चुन के डाले थे। मिर्ची श्रुति के नाम से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके हम वो सारी बातें वहां कर सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
3: I like that song.

0: आई फॉरगॉट द फिल्म्स नेम.
1: फिल्म का नाम था थक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
3: The show was absolutely amazing.
4: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मेरा हस्बैंड मेरी बात ही नहीं सुनता, क्या करूं?
1: अरे तो टेंशन काहे को ले रही है, उसको ना साइन लैंग्वेज में समझाना, नहीं तो लिख के दे दे।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: और कतर में आ गए हैं इवेंट की पूरी भरमार। मस्त मौला गौरव, मस्त मौला गौरव, आगे सब होगा मजेदार। फिलहाल मिर्ची घड़ी का टाइम 4:04 मेरे
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: सबसे पहले एक खास बात, स्पीड के शौकीनों यानी कि रफ्तार के शौकीनों, आपके लिए अच्छे अनाउंसमेंट हो गए। लुसेल इंटरनेशनल सर्किट पर एक बार फिर से 2027 की फॉर्मूला 1 की ऑफिशियली डेट कंफर्म हो गई है। तो मतलब इस साल तो आप लेंगे ही मजा, लेकिन अगले साल के लिए भी तैयार हो जाइए। इन सब के बीच हमारे कतर में और भी कुछ खास होने जा रहा है, लेकिन कतर एयरवेज ने दिखाया है इनोवेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन का ट्रेवल एक्सपीरियंस कैसे होने वाला है, ये उनको सबको पता लगने वाला है। क्योंकि अरेबियन ट्रेवल मार्ट जो कि इस वक्त दुबई यूएई में हो रहा है, वहां पर कतर ने सब कुछ दिखाया और पूरी दुनिया कह रही है भाई ये तो अलग लेवल होने जा रहा है। तो हो गई सर, हमारा कतर जो करता है वो अलग लेवल ही करता है। इन सब के बीच बहुत सारी चीजों की बात की जाए तो सबसे पहले कतर सेंट्रल बैंक ने हिमयान एंड मादा कार्ड्स को कतर और सऊदी अरेबिया में एक तरह से एक्सेप्टेंस दे दिया है। बस इसके बारे में बात करेंगे, तो मतलब आपको मेरे साथ रहना है और सारी इंफॉर्मेशन आपको पता लगती रहेगी और साथ मिलेगा विद्या बालन जी की आवाज में एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। तो ट्यून कर लो मिर्ची और वॉल्यूम बढ़ा लो भैया, 89.6 मिर्ची 1 हावी भी करक का टाइम हो गया, एक करक गर्मा गर्म मिर्ची थॉट।

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: Is that Mr. Vipul?
1: Yes.
2: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
1: हाँ हाँ बोलिए।
2: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट? तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
1: बट इसमें करना क्या होगा?
2: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
1: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
1: फाइन।
2: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
1: मिलता है,
2: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
1: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
2: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
1: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
1: Have you gone mad?
2: आपने पॉटी लगाई है बच्चे की कभी?
1: Talking about?
2: और इसमें
1: क्या बकवास कर रहे हैं?
2: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं, तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं, इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
1: हेलो
2: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
1: हाँ, हु आर यू?
2: सर मनीष।
1: हु आर यू?
2: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
1: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
2: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची में, मैंने मुर्गा बनाया, आपका पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: The show was absolutely amazing. Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
5: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट STT Snoo Noo। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

खरा खरा सौदा उसको भी कहते हैं जहां पर दोनों लोग दोनों पार्टी का फायदा हो। अब एक ऐसे ही खरा सौदा हो गया है हमारे कतर एंड सऊदी अरेबिया के बीच। अब आप कतर और सऊदी अरेबिया अगर आते जाते रहते हैं तो याद रखिए इंटरेस्टिंग हो गया मामला। अब पेमेंट सिस्टम दोनों जगह एक्सेप्ट होगा। #974974 यस, यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि सऊदी का जो नेशनल पेमेंट कार्ड है जिसको मादा बोलते हैं वो लोग, वो कतर में, और कतर का जो हिमियन कार्ड है वो सऊदी अरेबिया में अब एक्सेप्ट होगा। यस, मतलब अब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को एकदम आसान बना दिया गया है, स्मूथ और कन्वीनियंट तरीके से। आप मान लीजिए कतर से जा रहे हैं, अपना आपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड रखा है हिमियान वाला, तो वो भी आपका सऊदी में एक्सेप्ट होगा। यानी कि अब आपको सऊदी के अलग से रियाल रखने नहीं पड़ेंगे, बल्कि आपके उसी कार्ड से आप आराम से पेमेंट कर पाओगे। एंड सोचिए आप वहां गए हैं, वहां शॉपिंग वॉपिंग कर रहे हैं, या सऊदी वाला कोई आगे हमारे कतर में शॉपिंग कर रहा है, तो अब उसको करेंसी के लिए दिमाग नहीं लगाना है, आराम से अपना कार्ड निकालो भैया, स्वाइप करो, दोनों जगह एक्सेप्टेंस हो गई है। और दोनों ही कंट्रीज के पेमेंट सिस्टम को एक दूसरे से कनेक्ट करके अब इस डायरेक्शन में ये एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। एंड ये बता रहा है कि आने वाले टाइम में किस तरह से पूरा जीसीसी जब एक होगा तो चीजें काम करेंगी, उसका एक छोटी सी वानगी यहां नजर आ रही है। तो अब पेमेंट सिस्टम दोनों के एक जैसे हो गए, हिमियान वहां और वहां का मादा यहां, सब चलेगा भैया। तो कुल मिला के अगली बार जब सऊदी में कोई दोस्त यार आपके साथ जाए और कहे अरे यार मेरा कार्ड नीचे लग गया, तो कोई बात नहीं, हमें पता है यहां कार्ड स्वाइप कर सकते हो। 89.6 मिर्ची वाली थॉट। Thank you.

0: विशाल ललानी जब कोई गाना इतनी एनर्जी के साथ गाते हैं ना, तो ऐसे ही एनर्जी हमारे अंदर भर जाती है। भाई साहब क्या आवाज है आपकी। यार फराह खान के शो में मैं विशाल ललानी का घर देख रहा था यार, मतलब यार कमाल के जबरदस्त बड़े बड़े बंगले होते हैं इनके। राहुल वैद्य का घर देखा मैंने यार, उनका फार्म हाउस शानदार। मुझे तो यही लग रहा है कि एक्टिंग छोड़ो, सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर बनो, उसी में पैसा है। फिलहाल इन सब के बीच पैसा है तो उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करने के लिए टैम गोल्ड रेट्स, यहाँ मिर्ची पर हम आपको बता रहे हैं
1: गोल्ड अपडेट।
0: यस, अल फरदान एक्सचेंज जो कि ऑफिशियल एजेंट है हमारे कतर में पैम के, जो कि सर्टिफाइड 24 कैरेट गोल्ड है, यहाँ हमारे कतर में उनके बाज मिलते हैं फ्रॉम स्विट्जरलैंड। यस, पैम 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार एट 583 कतरी रियाल, पैम 5 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 2734 कतरी रियाल, पैम 10 ग्राम 5399 कतरी रियाल, पैम 1 ounce गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 16688 कतरी रियाल एंड पैम 10 तोला गोल्ड बार 61969 कतरी रियाल। और ये कहीं ना कहीं हमारे कतर में आपको अल फरदान एक्सचेंज में मिल जाएगा, और इसको सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है विथ सर्टिफाइड 24 कैरेट गोल्ड। 89.6 मिर्ची वन पर ये थे गोल्ड रेट्स, मिर्ची इट्स ऑन।
1: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
2: and earn Qatar Airways Avios today.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
0: रेडी?
5: रेडी।
0: टू लर्न?
5: यस।
0: टू प्ले?
5: एब्सोल्युटली।
0: टू ग्रो?
5: विद मेजराती।
6: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
5: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
6: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
7: Need to send money home? Make it fast, make it safe, make it Al Fardan Exchange.
8: Your trusted choice for sending money, foreign currency exchange and gold bars and coins. Visit our nearest branch or download the Al Fardan Exchange app now. For assistance, call or WhatsApp 4453-7777.
9: Tanishq lekar aaye hain Garden of Gems, jahan color is the story behind every stone, made to be worn often. पहनिए चाहे क्लासिक डिनर ओकेजन के लिए, फैमिली फंक्शंस के लिए या अ रेगुलर ऑफिस डे। अवेलेबल अक्रॉस तनिष्क स्टोर्स इन कतार और ऑनलाइन एट tanishq.ae। विजिट अ तनिष्क स्टोर नियर यू एंड सी द कलर्स इन पर्सन। TNC अप्लाई।
10: Attention shoppers, the news you've been waiting for is finally here.
11: Yes, it's time for Lulu Mega Deals.
10: Everyday essentials se lekar latest electronics, stylish fashion, fresh food and home favorites.
11: Sab kuch under one roof with incredible value. Spend less, save way more.
10: Exactly. To kal ka wait bilkul mat karo. Shop today, save today.
11: Rush to your nearest Lulu hypermarket right now before these deals are gone.
10: Lulu Mega Deals.
11: More shopping, more savings.
10: More mega moments. Visit Lulu today. Lulu, where the world comes to shop.
12: The show was absolutely amazing.
13: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: 89.6 मिर्ची वन पर आपके बिना आपका जिया लगे ना लगे, हमारे बिना आई मीन से आपके बिना हमारा नहीं लगता। मस्त मौला गौरव। और देखिए जबान क्या है ना, ये जब निकलती है तो ये सोचती नहीं है, वही अगर धीरे धीरे बोले तो सोचती है। ऐसा हमको बहुत लोग बोलते हैं गौरव, कभी कभी तुम जब बोलते हो ना तो समझ नहीं आता है कि तुम कहीं से पढ़ के बोल रहे हो, याद करके बोल रहे हो या ऐसे ही बोल दे रहे हो। अब 19 साल से यही काम करते हैं तो निकल जाता है। फिलहाल मौसम धीरे धीरे निकल रहा है गर्मी से ठंडी की तरफ।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट,
0: बात करें तो दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंचा 42 डिग्री सेल्सियस पर और मिनिमम 30 पर। हालांकि कल ये 29 था पर आज 30 है, पर धीरे धीरे अब मौसम सुहाना होगा एंड सुहेल स्टार आने के साथ ही धीरे धीरे 13 डेज के चार फेजेस में बेहतर की तरफ बढ़ेंगी चीजें। अगले 13-14 दिनों में आपको बदलाव बहुत तेजी से दिखाई देगा। फिलहाल के लिए मैक्सिमम टेम्परेचर जहां आज पहुंचा 42, मिनिमम रहेगा 30, हवाओं की रफ्तार 12 किलोमीटर से कम लेकिन ह्यूमिडिटी 45%, जो कि आपको शाम को बहुत ज्यादा गर्मी वाली फीलिंग देती है क्योंकि पानी पानी हो गए वाली फीलिंग आती है। मिर्ची इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
2: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। I always look at monsoon के ये बस उनके आंसू हैं, तो we have to पहुंच जाए जल्दी तो क्या। बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
1: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए। मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
4: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
5: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: हेल्पलाइन
1: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: क्या बताऊँ अब, मेरे बंदे ने आज फिर से मुंह लटका रखा है।
1: अरे क्या कर रहे हो मैडम, जल्दी से उसका मुंह हुक से उतारो। मुंह को लटकाते नहीं, फ्रिज में रखते हैं। बाहर रहेगा तो डिकम्पोज हो जाएगा और पुलिस भी आसानी से ढूंढ लेगी।
2: I'm joking, Mamma Mia.

0: ये आवारापन गाना सुनाया किसने?
1: मस्त मौला, मस्त मौला गौरव, मस्त मौला गौरव।
0: 4:01 गाना सुना आपने आवारापन। मिर्ची घड़ी का टाइम 5:04, करते रहो फन।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: देवी और सजनों, टाइम आ गया कि हम आप मिलके खेले। एक आवाज जो आपके कानों में जाती है, आपको पकड़नी होती है कि हमारा गौरव ये आवाज तो फलाने स्टार की है। आवाज वाली आवाज किसकी है?
3: सिर्फ 10-12 साल काम करना चाहते हैं तो वो अलग प्रोसेस है। अगर आप 50 साल काम करना चाहते हैं या मरते दम तक काम करना चाहते हैं तो आपको ऋतिक रोशन बनना पड़ेगा।
0: बस बस बस, आपको ऋतिक रोशन बनना पड़ेगा। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए और बताइए ये किसकी आवाज है।
3: सिर्फ 10-12 साल काम करना चाहते हैं तो वो अलग प्रोसेस है। अगर आप 50 साल काम करना चाहते हैं या मरते दम तक काम करना चाहते हैं तो आपको ऋतिक रोशन बनना पड़ेगा।
0: चलिए जी, मस्त बोला गौरव आपसे कहता है। 5:00 एक नंबर है जिसपे आप कॉल कर बता सकते हैं कि ये आवाज जो मैंने आपको अभी प्ले कर सुनाई वो किस शानदार एक्टर की है। 5:00 पर मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। जितनी जल्दी हो सके अपने जवाब भेजिए क्योंकि वॉइस नोट में आज का ये सबसे अब तक का सिंपल मामला है। लेट्स सी कितने लोग इस आवाज को पकड़ पाते हैं जो यहाँ मिर्ची पर इस वक्त आपको मैं सुना रहा हूँ।
3: सिर्फ 10-12 साल काम करना चाहते हैं तो वो अलग प्रोसेस है। अगर आप 50 साल काम करना चाहते हैं या मरते दम तक काम करना चाहते हैं तो आपको ऋतिक रोशन बनना पड़ेगा।
0: 5:00 पर मस्त बोला गौरव इंतजार कर रहा है। देवी और सजनों, जल्दी जल्दी अपने जवाब भेजिए कि हाय गौरव, हम ये बोल रहे हैं और आपके इस सवाल का जवाब फलाना है। हेलो, एक भाई साहब का फोन आ गया। हाँ जी भाई साहब, बताएं अपना जवाब। किसकी है? ओके, आप ये मैसेज कीजिए 5:00 पर। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं बंधु, अगला गाना प्ले करते हुए 89.6 मिर्ची 1 पर।

0: Milci. Iskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La
1: fiertă la burga. Milci, burga. हेलो,
2: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
1: स्पीकिंग.
2: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ.
1: हाँ, sure.
2: अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
1: जी.
2: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
1: बोल कौन रहे हैं?
2: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं. अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज.
1: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है. जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
2: बिल्कुल
1: अलाउ नहीं करते हैं. जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे.
2: सही बात है,
1: गर्ल्स को नहीं देंगे.
2: सही बात कह रही हैं. और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई.
1: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है.
2: एक सेकंड होल्ड करिएगा. तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती, पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार. शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ. मैं हाँ,
1: किससे बात कर रहे हैं?
2: मैं, वो मेरी वाइफ है यही.
1: हेलो.
2: हाँ बोलिए.
1: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए.
2: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ.
1: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं.
2: हाँ?
1: नकली तरह से आप मेरे से
2: नहीं,
1: बातें
2: नहीं,
1: कर रहे
2: नकली तरीके से. क्या
1: नहीं, असली मुझे दिख रही है. असली औकात नहीं कर रहे हैं.
2: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार.
1: वो कोई बकौती है क्या?
2: नहीं नहीं, बात नहीं तो तमीज सीखिए. नहीं तमीज,
1: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सुननी है.
2: मेरी बात सुनिए. देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए, आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया.
1: Oh my.
2: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.
3: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ. डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस. सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं.
4: Attention shoppers, the news you've been waiting for is finally here.
5: Yes, it's time for Lulu Mega Deals.
4: Everyday essentials se lekar latest electronics, stylish fashion, fresh food and home favorites.
5: Sab kuch under one roof with incredible value. Spend less, save way more.
4: Exactly. To kal ka wait bilkul mat karo. Shop today, save today.
5: Rush to your nearest Lulu hypermarket right now before these deals are gone.
4: Lulu Mega Deals.
5: More shopping, more savings.
4: More mega moments. Visit Lulu today. Lulu, where the world comes to shop.
6: The show was absolutely amazing.
7: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल. बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह

0: 9.6 मिर्ची 1 पर आप मुझसे इश्क करते हैं, मेरे शो से तो बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है। इसीलिए मस्त मौला गौरव आपके साथ खेलता है इस घंटे। और आज जो मैं सुना रहा हूँ, बताइए किसकी आवाज है।
1: सिर्फ 10-12 साल काम करना चाहते हैं तो वो अलग प्रोसेस है। अगर आप 50 साल काम करना चाहते हैं या मरते दम तक काम करना चाहते हैं तो आपको ऋतिक रोशन बनना पड़ेगा।
0: तो आपको ऋतिक रोशन बनना पड़ेगा, ये बात किसने कही है, यही पूछ रहे
2: हैं। Hi, Gaurav, this is Abhilash. I think the voice note that you played is of Akshay Khannas.
3: Hello, Gaurav, this is Vasant. I think ये आवाज जो है वो पीयूष मिश्रा की है।
4: ये अक्षय खन्ना का आवाज है मुझे जो लग रहा है ना। मैं दिस बिजॉय हियर और मुझे लग रहा है कि अक्षय खन्ना का आवाज है।
5: या फिर कामेश्वरन, நான் கத்தார்லேருந்து பேசுறேன். அதுக்கு ஆன்சர் வந்து அனில் கபூர். இன்னைக்கு வந்து ராமுக்கு பட்டாபிராமனுக்கு வந்து பர்த்டே, அவங்க கூட வேலை பார்க்க எல்லாரும் தண்டபாணி, தினேஷ், காமேஸ்வரன், நாங்கள் வந்து விஷ் பண்ணிக்கிறோம்.
0: ஓகே காமேஸ்வரன் பாய், சரி ஜித்னா பதா தான் உசனா, தேங்க்யூ ஆப்கோ. அண்ட் ஐம் ஷுர் ஆப் தெலுங்கு போல் ரே தே, லேக்கின் யார் யஹி ஹே ஹமாரி கத்தர் கா பியார். தேகே மல்டி கல்ச்சரல் ஹே அண்ட் பாரத் கே அலக் அலக் லோக் பீ சுன்தே ரஹதே ஹே. ஐசே மே பஹுத் சாரே லோக் கே ரஹே ஹே அக்ஷய் கன்னா கி ஆவாஸ் ஹே. குச் லோக் கே ரஹே ஹே யே பியூஷ் மிஸ்ரா ஹே, கோய் கே ரஹா ஹே பங்கஜ் கபூர் ஹே, கோய் கே ரஹா ஹே கி அனில் கபூர் ஹே. தியான் சே சுனியே.
1: 10-12 साल काम करना चाहते हैं तो वो अलग प्रोसेस है। अगर आप 50 साल काम करना चाहते हैं या मरते दम तक काम करना चाहते हैं तो आपको ऋतिक रोशन बनना पड़ेगा।
0: 5000 1896 पर एक आखिरी बार मौका दे रहे हैं, अगली बार हम जवाब के साथ आएंगे और बताएंगे कि ये किसकी आवाज है। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज।
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: डांस का भूत चढ़ गया और गाना इतना जबरदस्त हिट हो गया। सोचिए अरिजीत सिंह किस तरह के गाने गा लेते हैं यार, मतलब कुछ भी दो भाई उसको बेहतरीन बना ही देगा। मतलब अरिजीत सिंह क्लास के वो टॉपर होते हैं जो कि बैठे होते हैं और टीचर कहते हैं अचानक से टेस्ट लेंगे, लेकिन वो 10 में 10 ले आते हैं और हम 2 out of 10। फिलहाल के लिए मस्तमौला गौरव आपके साथ खेलते हैं इस घंटे हम, जिसे कहते हैं और आज की आवाज कुछ यूं है।
1: सिर्फ 10-12 साल काम करना चाहते हैं तो वो अलग प्रोसेस है। अगर आप 50 साल काम करना चाहते हैं या मरते दम तक काम करना चाहते हैं तो आपको ऋतिक रोशन बनना पड़ेगा।
0: एंड जवाब आ गया है।
2: हेलो, हाय, दिस इज आयमन एंड आई फील ही इज अनिल कपूर।
3: हाय गौरव भाई, ये आवाज जो है अनिल कपूर की भाई। मेरा नाम आसिफ है भाई, हम अपने दोस्तों के साथ आपका रेडियो में एंजॉय कर रहे हैं और गाड़ी में बैठ के चाय पी रहे हैं, कड़क पी रहे हैं। ओके भाई, अब अनिल कपूर का तो मेरे को 100% श्योर है और बाकी आगे क्या होगा पता नहीं।
4: हाय गौरव, गुड इवनिंग, मेरा नाम सुधीर है, अनिल कपूर। थैंक यू, गुड इवनिंग टू ऑल द लिसनर्स। रेडियो मिर्ची,
5: इट्स हॉट, दिस इज अनिल कपूर, निशा हियर।
6: हाय गौरव, गुड इवनिंग।
0: हाँ जी,
6: ये आवाज है अनिल कपूर का। माय नेम इज मोहम्मद मजहरुल्लाह। थैंक यू।
7: जकास
8: भाई, गुड इवनिंग। आवाज जो आपने सुनाई ये एकदम जकास वाला अनिल कपूर की है।
9: गौरव भाई, मेरा नाम आसिफ है और मेरा दोस्त भी मेरे साथ में है। आसिफ और तौफीक और चांद, ये भी प्ले कर दिएगा भाई। ठीक है, ये हमारे दोस्त लोग 3 दिन पहले जो है हमने क्वेश्चन का आंसर दिया था, वो लोग बहुत खुश हो गए थे, बोले थे आसिफ भाई आपका नाम आ गया रेडियो पे। तो हमारे दोस्त है।
10: गुड इवनिंग गौरव, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाउ आर यू? दिस इज यूसुफ। ये आवाज अनिल कपूर की। ओके, थैंक यू, बाय बाय।
11: हेलो गौरव।
0: हाय जी,
11: दिस वॉइस बिलोंग्स टू द एवरग्रीन मिस्टर अनिल कपूर।
0: बिल्कुल सही,
11: दिस इज बिंदु हियर।
0: ओके बिंदु जी, बिल्कुल सही जवाब, अनिल कपूर इज द राइट आंसर। एंड भाई जो भी करते हैं बस इतना ही कहना चाहते हैं, झकास 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना, आपने पहले मम्मी कहा ना पापा। आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है, बट रियली टेल अस हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू मेड दिस सॉन्ग?
3: व्हाट, आई वाज 25 और समथिंग। इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, वाटरफॉल से पानी गिर रहा था, सारे बादल नीचे आ चुके हैं, एंड उस बीच में देन आई सॉ द लिटिल ट्रेन कमिंग आउट। देखो बारिश हो रही है, देखो ना देखो, इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग।
2: अब ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और बाबा ब्लैक शीप के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स आउट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
5: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: The Mentalist Suhani Shah live

पार्टी ऑन माय माइंड, यस के हनी सिंह, शेफाली अल्वारेज। अगर पार्टी आपके भी माइंड में है तो 25 सितंबर को हो रही है, जहां पर सुहानी शाह के साथ साथ चरण एंड आसी भी आ रहे हैं। यस 89.6 मेरे जीवन पर मैं आपके साथ हूं। तो फिलहाल जेब की तरफ बढ़ते हैं सर, एंड आपकी जेब में जो पैसे हैं उनका क्या रुतबा है, आइए जाने। एक कसरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीज 26.28 INR, 26 रुपए 28 पैसे भारतीय मुद्रा के आपके अंडी में आएंगे। 1 कसरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीज 90.98, एंड इसके बाद पाकिस्तानी रुपीज की बात करें जनाब, वाहिद कसरी रियाल के बदले 76.08 पाकिस्तानी रुपीज का रेट है। वही तपाई को नेपाल रुपीज का रेट दाजो, 1 कतरी रियाल के बदले बाहिनी 41.98 को भाल छा, हाँ जी 41.98 का रेट छा बाहिनी। घर भेजे लाई सही टाइम छो, घर भेजे गए दाई तो एकदम सही है हजूर। अगर इसके बाद बांधू बांग्लादेशी टाका का बात करेगा दादा, एक्टा कतरे रियाल के बदले 33.75, तो 33.75 घर भेजने के लिए अच्छा रेट है। एंड कोशिश करो जल्दी जल्दी घर भेज के सब लोग पैसा बनाओ, क्योंकि सबसे जरूरी इस दुनिया में मनी है, एंड पैसा बनाने के लिए तो हम लोग इधर आया है। 89.6 मिर्ची वानी थॉट, एंड आईपी के साथ एक फायदा और हो जाता है सर, हाँ जी घर बैठे बैठे पैसे भी भेज लेते हो, साथ ही साथ और भी बहुत सारे काम कर लेते हो, एंड वोडाफोन माई बुक का सब्सक्रिप्शन पा जाते हो। कहाँ मिलेगा इतना सब कुछ एक साथ, सिर्फ और सिर्फ आईपी पे। इट्स हॉट।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: मैं मेरी एक्स को भुला नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ?
1: अरे ब्रो, ये तो अच्छी बात है ना, अपनी एक्स का नाम अपना पासवर्ड बना ले, कभी भूलेगा ही नहीं ना।
2: उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा।

0: नैना दा केना क्रू फिल्म का ये गाना सुनाया किसने?
1: मस्त मौला गौरव, मस्त मौला गौरव।
0: और दोस्तों जब मैं आपके साथ हूँ तो फिकर नॉट, बातें तो और भी होंगी, लेकिन इन सब के बीच पहले टाइम तो देख लें, 6:07 हो गए हैं। अरे हमारा नाम बार बार मत लो यार, आगे बढ़ाओ, स्पॉन्सरशिप है यार।
2: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: यस, मस्त मौला गौरव आपको यहाँ बताना चाहेगा कि लुसेल इंटरनेशनल सर्किट पे लौटने वाली है गाड़ियों की रफ्तार 2027 में भी।
3: #974974 the most trending local news of the day।
0: 2027 के भी फॉर्मूला 1 कैलेंडर में फाइनली कतर की डेट आ गई है। फॉर्मूला 1 कतर एयरवेज कतर ग्रैंड प्री टू लुसेल इंटरनेशनल सर्किट दिसंबर 3rd to 5th आएगा, एंड 2027 की ये तारीख अभी से नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि भाई ये 24 रेस का कैलेंडर होता है पूरे साल का, और फॉर्मूला 1 के राउंड्स ऑफ में ये जो 24 रेस होती है उसमें अब कतर ने अपनी हमेशा की एक जगह बना ली है। टर्किश एंड पोर्चुगीज ग्रैंड प्री के बाद अब हमारे पास मौका है जहां पर हम हर साल पे हर साल ये लेकर आ रहे हैं। वेल, कह सकते हैं कतर ने डेब्यू मारा 2021 में, और तब से लेकर अब तक कभी रुके नहीं, कभी हम कमजोर नहीं पड़े, और बल्कि हम खुद अब कतर एवे कतर ग्रैंड प्री लेकर आते हैं। पूरी दुनिया हमें इस फॉर्मूला 1 के नाम पे ही, पूरी की दुनिया को समझ में आ गया कि कतर एवेज ही कराता है। कुल मिलाकर 5.38 किलोमीटर का सर्किट है, 16 टर्न्स है, एंड बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से बैठकर आप ये सबसे फास्ट रेस को देख पाते हो, जहां पर दुनिया के सबसे फास्टेस्ट ड्राइवर को आप गाड़ी चलाते देखते हो। कई लोग तो कहते हैं गौरव भाई हम तो इतने ही कहेंगे गाड़ी इतनी तेज निकल जाती है, समझ में नहीं आता क्या हुआ। मैं कहता हूँ यही तो एक्सपीरियंस है दोस्त, जो हम अपने देश में शायद कभी ना ले पाए, लेकिन हमने कतर में आकर ये एक्सपीरियंस लिया, एंड वो भी कम से कम प्राइस मनी में। थैंक यू कतर, एंड एक और मौका 2027 के लिए भी हमारे पास आ गया। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट,
1: तो फिर
0: फॉर्मूला 1 देख ले।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: हाँ जी कौन?
2: हेलो किससे बात करनी है?
3: किससे बात करनी है?
2: भैया किससे बात करनी है?
3: किससे बात करनी है?
2: भैया नंबर चेक करके
3: दोबारा मिला?
2: पागल
3: पता नहीं
2: कौन बोल रहा
3: है? पता नहीं कौन बोल रहा था?
4: इको आ रहा है इको.
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो
3: हेलो जेल साले भैया को मारूंगा तुझे, मैं बता रहा हूँ. नंबर चेक कर मिला?
2: हेलो
3: हेलो
2: भैया क्यों परेशान कर रहा?
3: क्यों परेशान कर रहा है किसी को? पागल हो गया क्या यार? पता नहीं कौन है यहाँ पे फोन करे जा रहा है, फोन करे जा रहा है. अबे पागल हो गया क्या यार? महंगा पड़ जाएगा. नंबर आ गया मेरे पास.
2: पागल
3: कहीं का.
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया. क्या नाम है सर आपका? आप बुरा मत मानिएगा प्लीज.
2: रवि है.
4: रवि मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ. आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे उसमें एको नहीं आएगी.
2: कुकड़ू को
4: भाई कुकड़ू बहुत परेशान कर दिया आपने
2: भाई.
4: आप खत्म कर दो यार.
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची.
6: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ. डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस. सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं.
7: Attention shoppers, the news you've been waiting for is finally here.
8: Yes, it's time for Lulu Mega Deals.
7: Everyday essentials se lekar latest electronics, stylish fashion, fresh food and home favorites.
8: Sab kuch under one roof with incredible value. Spend less, save way more.
7: Exactly. To kal ka wait bilkul mat karo. Shop today, save today.
8: Rush to your nearest Lulu hypermarket right now before these deals are gone.
7: Lulu Mega Deals.
8: More shopping, more savings.
7: More mega moments. Visit Lulu today. Lulu, where the world comes to shop.
9: The show was absolutely amazing.
10: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
11: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल. बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

0: 89.651 पर मैं पॉल गौरव आपके साथ है। एंड इस गाने के बाद जब मैं आता हूं तो यही कहना चाहता हूं कि पंजाबी इज गोइंग ग्लोबल, इसमें कोई डाउट नहीं है। दिलजीत दोसांझ के आप शोज देखिए, पूरी दुनिया में छाया हुआ है बंदा अपना। ऐसे में हमारे मिर्ची में भी आपको बहुत सारे गाने सुनने को मिलते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग होने जा रहा है। यस, आपने बहुत सारे कॉन्सर्ट्स देखे हैं, डांस डांस शोज देखे, लेकिन ये एक अलग एक्सपीरियंस है। दी मेंटली सुरानी शाह लाइव इन कतर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम। दिस इज ब्रॉट टू यू बाय कतर कैलेंडर प्रेजेंटेड बाय आईपे। एक ऐसी शाम जहां पर आपके दिमाग को सुहानी रीड कर लेगी और रीड करने के बाद आपके दिमाग को ऐसा घुमाएगी कि आप कहोगे भाई ये कर कैसे रही है। और बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं, लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस जो शायद आपने आज तक नहीं लिया है, उससे लेने का एक मौका आया है। इसे जाने ना दो, जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट्स बुक कर लो। एट अर्ली बर्ड प्राइस स्टिल कंटिन्यूइंग, जहां पर आपको जाना है प्लैटिनम लिस्ट पे, आपको जाना है क्यू टिकट्स पे, आप एस सिटी स्नूनू पे भी कर सकते हो, जहां पर 30 कतरी रियाल का कैशबैक भी मिल रहा है। मतलब एक तो आप टिकट खरीद रहे हो वो भी कम प्राइसेस पे, उसके ऊपर भी 30 कतरी रियाल का कैशबैक। दोस्तों ये तो वाली बात हो गई कि आपको एक तो हम पहले कुछ अच्छा दे रहे हैं, ऊपर से आपके फायदे की बात भी कर रहे हैं। तो जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट्स बुक कर लो। और यहां भी अपने म्यूजिक का, अपने डांस का तड़का लगाना है आसी एंड चरण, जहां पर चरण ने अभी लेटेस्ट में बादशाह के साथ एक ऐसा गाना गाया है कि पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। जहां जाइए लोग बोल रहे हैं भाई ये गाने की ट्यून ही अलग है, और इतनी रील्स इतनी चीजें वायरल हुई है ना कि आप सोच नहीं सकते। दोस्तों ये मौका है, ऐसी शाम को जीना चाहते हो तो 25 सितंबर QNCC के लिए अपनी टिकट अभी से बुक कर लो, क्योंकि एक बार ये मौका निकला दोस्तों फिर आप कहोगे यार गौरव इतना याद दिला रहा था, हम भूल गए। हम भूलने नहीं देते दोस्त, इसीलिए तो बार बार याद दिलाते हैं। और अगला गाना उसी चरण का जो हमारे साथ होंगे उस शाम को, ओनली ऑन मिर्च। इट्स हॉट।
1: वो एक शख्स थी और हम दो बर्बादियां।

That's the vibe of Punjabi music, जहां पर अमर जलाल के साथ इतने सारे लोग जब एक साथ आए तो एक गाना ऐसा बना दिया कि भाई सब कोई गाता है ये गाना।

89.6 मिर्ची वन पर ये था मस्त कलंदर गाना और सुनाया किसने? मस्त कलंदर से हम उस सिकंदर की तरफ आते हैं जो हजारों लाखों फैमिलीज की हेल्थ केयर का ध्यान रखते हैं, वो जिनके यहाँ बहुत सारे लोग इस उम्मीद से जाते हैं कि जब हम जा रहे हैं तो हम लौट कर एकदम सेफ आएंगे एंड हम अपनी हेल्थ इश्यूज को दूर कर आएंगे। और लीडर जब ऐसा हो जहां पर हेल्थ केयर और लाखों फैमिलीज का ध्यान रखा जाता हो एंड सबका भरोसा हो कि जो होगा अच्छा ही होगा, तो वो लीडर जब फोर्ब्स मिडिल ईस्ट मैगजीन पे फीचर होता है तो हमारा उनका मेंशन तो बनता है। यस, और यहां पर मैं नाम लेना चाहूंगा, ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू मोहम्मद मियादाद वीपी, यस चेयरमैन एंड एमडी नसीम हेल्थ केयर, जिनको मिडिल ईस्ट की टॉप हेल्थ केयर फाउंडर्स ऑफ मिडिल ईस्ट की लिस्ट में फोर्ब्स में जगह मिली है। एंड आई एम श्योर ऐसे विजनरी लीडर एंड जिस तरह से वो पूरी फैमिली को एक साथ लेकर चलते हैं और कतर में हेल्थ केयर का एक बड़ा नाम बने हुए हैं, वो यहाँ पर जब फीचर होते हैं तो हमें भी लगता है कि बीइंग एन एसोसिएट विद देम एंड ऑफिशियल रेडियो पार्टनर इन मेनी इवेंट्स, हमें भी ये फील होता है कि यार सच में हम एक ऐसी टीम के साथ है, एक ऐसे पूरी नसीम फैमिली के साथ है जो कहीं ना कहीं हमें अच्छा और सेफ फील कराते हैं। एंड जब उनके एमडी उनके चेयरमैन को यहां पर फोर्ब्स मिडिल ईस्ट जैसी मैगजीन में जगह मिलती है तो हम सबके लिए भी एक प्राउड मोमेंट होता है। सो कांग्रेचुलेशंस टू वीपी मियादाद सर। यस, एंड उम्मीद है सर आपकी तरफ से तो हम पार्टी लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी तरफ से आपके लिए पार्टी सॉन्ग मिर्ची पर इट्स हॉट। फॉर ऑल दी नसीम स्टाफ, दिस इज फॉर यू नसीम हेल्थ केयर ग्रुप, प्राउड मोमेंट फॉर ईच एंड एवरीवन।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

इसको कहते हैं वन साइड अफेयर वाला, प्यार वाला लड़का। अरे जब वो तुमको नहीं अपना रही तो तुम आगे बढ़ो, नहीं फिर भी तुम्ही को चाहूंगा मैं, बदलूंगा नहीं, बदलूंगा नहीं, फिलहाल तो मस्त मौला गौरव आपके साथ। और बदला है कुछ इंडिया में जिसको लेकर खूब हो रही है बात। अरे भाई, हम चाहे घर से कितना भी दूर रहे, घर में कुछ होता है तो जरूर आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में अब तक जो यूपीआई का आप कार्ड स्वाइप करते थे, मतलब यूपीआई से जो भी पैसे भेजते थे, बेसिकली मैं इतना ही कहूंगा, उससे कभी भी कोई चार्ज नहीं लगता था। हालांकि अब कहा जा रहा है 0.3% तक का टैक्स देना पड़ सकता है, 0.4%। ये दुकानदारों पे लगेगा। इस बात को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी भी है लोगों की। लोग कह रहे हैं ये क्यों लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है। हालांकि भाई गवर्नमेंट कह रही है कि नहीं, हमारे वहां पैसे जो है पहले हम लोग भी उसको सरचार्ज उठाते, लेकिन अब 0.4 दुकानदार देगा, सब ठीक हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं भाई, बस लेकिन इतना ही कहेंगे यूपीआई बड़ा जोर शोर से लोग यूज कर रहे थे, ऐसा ना हो किसके आने के बाद कुछ मामला बदल जाए। इन सब के बीच बदल तो रहा है टीम इंडिया का कलेवर। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे टीम में रोहित एंड कोहली आर बैक। यस, विराट कोहली एंड हमारे रोहित शर्मा वापस आ गए हैं। साथ ही साथ 8 महीनों बाद जडेजा की भी वनडे में वापसी हुई है। हालांकि ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या को इस जगह नहीं मिली है, और T20 में सूर्यवंशी वैभव जो है उनको जगह मिली हुई है। कुल मिलाकर इतना ही कहना चाहता हूं, वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे के बाद टीम इंडिया को यह भी ध्यान रखना है कि अगले साल जो वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है, जो 23 में नहीं हो पाया वो 27 में हो, उसके लिए भी तैयारी करो भैया। कोई रिस्क मत लो और उसी टीम को खिलाओ, चाहे वनडे की बात अगर करें, जिसको आप साउथ अफ्रीका में खिलाने की सोच रहे हो। 89.6 मिर्ची वाली थॉट।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: सर ऑफिस में किसी को मेरी वैल्यू पता नहीं है, क्या करूं?
1: ब्रो यार, इट्स सो सिंपल। कल ऑफिस में सबको अपनी सैलरी बता दे, एवरीवन विल नो योर वैल्यू।

0: महमूद राघव चैतन्य और रुआ के की आवाज में माशू का गाना खत्म हुआ। आपका आशिक आपके साथ है। देवी और सुजन, इतना ही कहना चाहता हूँ कि मिर्ची घड़ी का टाइम स्टूडियो क्लॉक पर 7:04
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: और क्या आप वो हैं जो कतर से सऊदी, सऊदी से कतर बहुत ज्यादा आते जाते हैं? तो आपके लिए ये काम की खबर हम लाए हैं।
2: #974974
0: बोले तो कतर सेंट्रल बैंक इन कोऑपरेशन विद सऊदी सेंट्रल बैंक सामा, दोनों ने मिलकर अनाउंस कर दिया है कि अब एक्सेप्टेंस हो गया है नेशनल पेमेंट कार्ड हिमियन का और मादा का। यस, यानी कि वो हिमियन कार्ड जो आपकी जेब में होता है वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में चलेगा, एंड मादा कार्ड जो सऊदी वालों की जेब में होता है वो स्टेट ऑफ कतर में चलेगा। यस, नेशनल पेमेंट सिस्टम में दोनों ही देशों के एडवांसिंग कोऑपरेशन के साथ इसे इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, और आने वाले टाइम में हम सऊदी जाएं तो अपने यहां के हिमियन कार्ड से भी पेमेंट कर पाएंगे। अनाउंसमेंट एक सेरेमनी में की गई है जहां पर प्रेजेंस खुद थे हिज एक्सेलेंसी शेख बंदर बिन मोहम्मद बिन सऊद अल थानी, गवर्नर ऑफ कतर सेंट्रल बैंक, एंड हिज एक्सेलेंसी मिस्टर आयमान बिन मोहम्मद बिन सऊद अल सयारी, ये गवर्नर है सऊदी सेंट्रल बैंक के। दोनों ने कहा है कि ये एक तैयारी है जिसकी शुरुआत हो गई है, मिडिल ईस्ट 2026 कॉन्फ्रेंस में इस पर चर्चा हुई थी, एंड मुझे लगता है अब दोनों ही देशों में एक्सेप्टेंस ऑफ कार्ड हमारे और आपके ट्रेवल को तो ईजी बनाएगा, उन लोगों को भी थोड़ा सा ईजी बना देगा जो अब तक बहाना मारते थे यार कैसे पार्टी दें, हम तो यार कार्ड ही जो है हम अपना कतर में भूल गए, अब सऊदी में भी चलेगा भैया सब कुछ। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: Energy.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na viva la burga. Energy, burga.
2: Hello.
3: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहा हूँ
3: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ। आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग पे बिल जा रहा है, आप ये पे नहीं कर रहे हैं। आपको
2: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
3: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
2: 23।
3: एक सेकंड सर, आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
2: बिल आया था 2200 रूपए का?
3: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
2: जो मैंने बिल आया

0: the show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को.

रूबेन नौटियाल की आवाज में ये गाना सुनाया किसने? बर्बाद कर देते थे टीचर्स मेरी मेहनत को। मैं एक रात पहले पूरे 12 चैप्टर्स पढ़ता था, उसमें से वो सिर्फ और सिर्फ 3-4 हार्ड सवाल पूछते थे और मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती थी। मुझे लगता था जो पढ़ा वो नहीं आया, जो नहीं पढ़ा वही आ रहा है। 12-12 चैप्टर पढ़ने के बाद भी नंबर कम आया। पर दोस्तों जिंदगी में इसीलिए कहते हैं रोज पढ़ाई करो। एवरी डे व्हेन यू कम बैक फ्रॉम योर स्कूल, 2 घंटा जो भी वहां पढ़ाया गया उसको पढ़ो। ये जब मम्मी मुझसे कहती थी 2 घंटा, मुझे लगता था बाप रे, ऐसा मानो सांप सामने खड़ा हो गया, मुझे कह रहा है डसो डसो। मैं नहीं कर पाता था पढ़ाई, पर आप जरूर करना। लेकिन कोई है जो दिमाग को पढ़ने की कला लेकर आ रहा है हमारे कतर दी मेंटल सुहानी शाह लाइव इन कतर, ब्रॉट यू बाय कतर कैलेंडर प्रेजेंटेड बाय आईपे। एंड तैयार हो जाइए ऐसी शाम के लिए जो इससे पहले आपने भाई कभी नहीं देखी है। मैं कह रहा हूँ कतर में ये अपने आप में पहला एक्सपीरियंस है जहां पर मेंटलिस्ट को हम माइंड रीड करते हो पाएंगे। ऐसा इल्यूजन क्रिएट करती है वो कि सब कुछ हकीकत लगता है जबकि सब कुछ धोखा है। लेकिन यही तो कला है इस लड़की की। 7 साल की छोटी उम्र में सुहानी शाह ने अपना पहला स्टेज शो किया और कमाल कर दिया। वेल, आज तक ये हर जगह हाउसफुल शो कर रही है एंड सब कुछ ठीक रहेगा। कतर में भी यही होने वाला है। आप अपनी टिकट्स बुक करते रहो क्यू टिकट्स प्लैटिनम लिस्ट एंड एस सिटी स्नूनू पर, जहां मिल रहा है आपको 30 कतरी रियाल का कैशबैक। इस उम्मीद में कि आप आ रहे हो हमारे साथ एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि खुद यहाँ डांस सिंगर डुओ भी आ रहे हैं। यस, डांसिंग स्टार है इंडिया की आसी, जो कि हर बड़े वीडियो में आजकल फीचर हो रही है। मास गर्ल बोल रहे हैं लोग उनको, जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस देती हैं। एंड उनके साथ सिंगर चरण, जिन्होंने बादशाह के साथ सुपर डुपर हिट बन जा तू मेरी गाया 89.6 मिर्ची 1 पर। फिलहाल हम आपका समय चोरी कर आते हैं, बातें कर निकल जाते हैं। अब यो हनी सिंह आ रहे हैं दिल चोरी करने, इट्स हॉट।

कोई नादानी मत करिए, क्योंकि यहाँ पर हर नादानी के लिए हबीबी फतूरा आएगा। हाँ जी, स्पेशली हमारे कतर में फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को लेकर बहुत कड़ाई रहती है। मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी हर समय इस पर ध्यान रखती है कि कोई रेस्टोरेंट, कोई छोटा कैफेटेरिया, कोई बड़ा फाइन डाइनिंग इस तरह की गलती तो नहीं कर रहा है जहां पर कहीं भी हमारे हेल्थ के साथ किस तरह का कॉम्प्रोमाइज नजर आ रहा है। और ऐसे में लगातार कार्रवाई हो रही है। कल भी मैंने पढ़ा कहीं दो रेस्टोरेंट पे ताला लगा है टेम्परेरी क्लोजर का, और ये तब होता है जब आप हल्की सी लापरवाही करते हैं और कहते हैं क्या ही हो जाएगा, कौन ही आ जाएगा, और तभी आपको लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी से कोई आ गया, तब आप घबरा जाते हैं, आप सोचते हैं कुछ तो अच्छा करें लेकिन नहीं हो पाता। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि कतर में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड का बहुत ध्यान रखा जाता है। हमारे और आपका खाना जो हमें किसी भी छोटे से बड़े कैफेटेरिया तक मिल रहा है वो हाइजीन से भरपूर हो, वहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका ध्यान रखते हुए मैं मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी को दिल से थैंक यू कहता हूँ। एंड हमने देखा किस तरह से कतर में पिछले 6 महीनों में मोर देन 9000 सैंपलिंग हुई और 97% वाज द रिजल्ट ऑफ A1 क्वालिटी ग्रेट फूड। तो इसमें आप अपना काला धब्बा ना लगाइए, मैं तो कहता हूं 97 से हमें 100% कैसे होना है, इस तरफ बढ़ जाइए। थोड़ी सी लापरवाही कभी कभी आपको लंबा फतूरा थमा देती है। अभी भी बाद फी कुल्लू फलूस फलूस फलूस कुल्लू खसारा, नुकसान हो जाएगा। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

जमाना नहीं लगता सर, कुछ सेकंड्स लगते हैं टिकट बुक करने में। यस मस्त मौला गौरव आपको यहाँ बताना चाहता है कि वो टाइम आ गया है जब 25th ऑफ सितंबर QNCC में द मेंटिस वानी शाह लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम शो को आप देखने आए। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, टिकट्स बुक करनी है जो कि अभी भी अर्ली बर्ड प्राइजेस पे आपको मिल जाएंगी। एंड टिकट्स बुक करने के लिए प्लैटिनम लिस्ट, एस सिटी स्नूनू एंड क्यू टिकट सब जगह पे अवेलेबल है। खास बात यह है कि एस सिटी स्नूनू पर आपको 30 कतारी रेल का कैशबैक मिल रहा है, उसका फायदा उठा लीजिए एंड ये टिकट बुक कीजिए बिकॉज इट्स वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस जो इससे पहले आपने कभी नहीं लिया। अब सोचिए कि गुकेश जो कि अभी प्रेजेंट वर्ल्ड चैंपियन हैं, ग्रैंड मास्टर हमारे गुकेश, उनसे सुहानी ने एक शो पे पूछा, गुकेश आप अपने दिमाग में एक चाल चलिए, अब शतरंज का खिलाड़ी या चेस की एक मूव करिए, एंड वो क्या मूव लेके अपने दिमाग में सोच रहे थे, सुहानी ने उसको क्रैक कर दिया। एंड ट्रस्ट में गुकेश का फेस देखने लायक था। एंड ऐसे अपने हजारों वीडियोस से हम सबको बार बार सरप्राइज किया, तो जब वो खुद यहाँ कतर आ रही है तो हम उन्हें सरप्राइज देते हैं, मैडम हम भी आए हैं आपका ये देखने। 5000196 पर अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो हम बता सकते हैं, लेकिन टिकट्स आपको हर लीडिंग प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। जाइए अपनी टिकट्स बुक कीजिए एंड एक साथ कहेंगे चलते हो क्या सुहानी के शो में। फिलहाल तो हम चल रहे हैं, लौटेंगे कल शाम एक बार फिर से वीकेंड की वाइब सेट करने। तब तक के लिए हबीबी मां सलाम मिर्ची गुल्लक इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: The late Irfan Khan से एक बार पूछा गया कि कहाँ की बारिश आपको सबसे ज्यादा पसंद है? Is it Delhi? Is it Mumbai?
2: उसका मजा सिर्फ राजस्थान में है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बरसात जो है देर से होती है। वहाँ जो है सावन को सेलिब्रेट किया जाता है, सावन भादो जो कहते हैं, यू नो, फसल भी कटती है और झूले लगते हैं। राजस्थान में जो है बरसात में भीगने का और बरसात का जो मजा है वो बहुत अलग है।
1: ऐसा एक दिन नहीं जाता जब इरफान खान का ख्याल नहीं आता। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
4: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1. इट्स हॉट.
2: टाइम चेक
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

0: कितनी सारी ऐसी दास्तानें होती हैं ना जो हमारे अंदर ठहरी हुई होती हैं ऑफ आर ओल्ड मेमोरीज।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे आने पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। आई रिमेम्बर जब मेरा स्कूल खत्म हुआ था, आई वॉज इन ऑल गर्ल्स स्कूल। स्कूल के बाद सब अपने अपने कॉलेज में लग गए, बायो वाली फ्रेंड्स सब डॉक्टरी की पढ़ाई में जिंदगी बिताने लगी, किसी की शादी हो गई, कोई दूसरे शहर चला गया, कोई पढ़ने के लिए या यू नो जॉब्स के लिए दूसरे शहर में चला गया, और फिर नए दोस्त बनते चले गए। नहीं, पर एक वो होता है ना कि जो पहले वाले दोस्त आपको जानते हैं जिस तरीके से, वो नए दोस्त नहीं जान पाते हैं, एंड यू इवेंचुअली आप ग्रो करते हो मैच्योरिटी में और अलग अलग लेवल्स में। सो हुआ क्या कि मेरा बर्थडे आया, जो मेरे उस वक्त के खास दोस्त थे आसपास के, उन्होंने काफी अच्छा सा पार्टी अरेंज किया, मस्ती किया एंड ऑल दैट। मेरी ना एक पुरानी दोस्त है, उसका कॉल आया, उसने मुझे बोला कि हे क्या कर रही है, आई एम श्योर तेरे लिए कोई ना कोई चॉकलेट केक लेकर आया होगा और तुझे चॉकलेट केक नहीं पसंद ना। एंड मैंने बस ये फोन कॉल सुना और मेरी आंखों में आंसू आ गए। जस्ट दैट कि आप जितने रॉ स्कूल कॉलेज में होते हो ना दोस्तों के साथ, जिस तरीके से वो आपको जानते हैं, बाद वालों को शायद आप बताना भी नहीं चाहते, और वो बॉन्ड बन पाता है या नहीं, इट डिपेंड्स यू नो टोटली। लेकिन हाँ, ये चीज़ मुझे याद आई तो मुझे लगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि कभी कभी ना बहुत सारी भीड़ के बावजूद भी फील होता है अकेला, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो अगर आपके पास आपके दोस्त हैं पुराने वाले, प्लीज उनसे चिपक के रहो, चाहे वो इरिटेट हो जाएं आपसे, बट कल्ले रहने से तो अच्छा है ना। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची कैफे, मैं हूं आपके साथ पारुल, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
1: Mirchi, murga. Hello.
2: Is that Mr. Vipul?
1: Yes.
2: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... .com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
1: हाँ हाँ बोलिए।
2: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
1: Okay.
2: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छे सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
1: बट इसमें करना क्या होगा?
2: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
1: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
1: फाइन।
2: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
1: इन हैंड।
2: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
1: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
2: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो के मैनेजर हैं, जो के सीनियर मैनेजर हैं, जो के सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
1: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
1: Have you gone mad?
2: आपने पॉटी लगाई है बच्चे की कभी? और इसमें
1: क्या बकवास कर रहे हैं?
2: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। आप
1: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, ओके?
2: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते हैं पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
1: हेलो
2: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
1: हु आर यू?
2: सर मनीष।
1: हु आर यू?
2: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
1: .com. How dare you call me?
2: Okay, सर आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे, मैंने मुर्गा बनाया आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

जो इश्क दे फनियर है ना, ये बहुत ही फनी फनी जगह पर लग जाते हैं कुछ लोगों को, मैं बता रही हूँ आपको। मिर्ची कैफे सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। आपको पता है सुबह सुबह जिम जाओ, ठीक है, वहां भी कुछ इश्क दे फनियर चल रहे होते हैं। अगर आप ऑफिस जाओ वहां भी चल रहे होते हैं। अगर आप यू नो सोसाइटी में नीचे घूमने निकल जाओ अपने घर के नीचे, तो वहां भी कुछ चल रहे होते हैं। स्कूल कॉलेज एवरीवेयर आई टेल यू। तो इन सब लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी जिनको जहां देखो वहां इश्क मिल जा रहा है, कि भाई गूगल मैप्स भी अभी ये बताने में तुम्हें असमर्थ है कि प्यार तुम्हें किस मोड़ पे ले आया। अपना नहीं है मेरा, कहीं पढ़ा था, अच्छा लगा तो सोचा आपको भी बताऊं। वेल, ये ना जेनरेशंस वाइज प्यार और इश्क डिफर कर रहा है अभी। तो अब यार हम जो मिलेनियल्स है ना, हमें ये ब्रेड क्रमिंग और ये सब समझ में नहीं आ रही है। हम इस वाली जेनरेशन के हैं। जो अगला गाना आ रहा है सोनू निगम और अलका याग्निक की प्यारी आवाजों में, सुनो इस गाने को। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: में स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तुझे पता है, एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
3: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
2: क्या?
3: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अपनी टाइम मशीन से 2004 से आपके लिए गाना लेकर आई मैं. एंड यू नो वीर ज़ारा का जो पूरा एल्बम है, इट्स अ होलसम एल्बम. नहीं,
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ. ये देखो जी, लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौड़ की आवाज में मैंने आपको ये सुनाया. अच्छा, बाय द वे आपको पता है वीर ज़ारा में रानी मुखर्जी का जो किरदार है वो एक्चुअली ऐश्वर्या राय के लिए लिखा गया था, बट देन फॉर सम रीजंस वो नहीं प्ले कर पाई ये पार्ट और ये रानी मुखर्जी ने प्ले किया एंड इट बिकेम अ क्लासिक. ऐसे ही ना जिंदगी में बहुत सारे आपने देखी होंगी चीजें जो आपके लिए नहीं होती, आप चाहते हो बहुत सारा, बट कहते हैं ना कि गॉड्स प्लान्स आर बिगर देन योर प्लान्स. तो ये शब्द जो हैं तेरे लिए, ये नोट करके रख लो, क्योंकि जो तेरे लिए है ना दोस्त वो तुझे मिल जाएगा. हो सकता है थोड़ी देर लगे, तुझे समझ ना आए, पर जो तेरे लिए है वो तेरे लिए है. अगला गाना फिर से तेरे लिए, फ्रॉम द फिल्म फितूर. ये आप सुनोगे सुनिधि चौहान और जुबिन नौटियाल की आवाज में. आई थिंक ये गाना आपने नहीं सुना होगा, बट जस्ट गिव इट अ हियर. यू नो कुछ गाने होते हैं ना जो फिल्म में ऐसे दूसरे तीसरे चौथे नंबर वाले गाने होते हैं जिनको हम शायद सुनते हैं और भूल जाते हैं. दिस इज वन ऑफ देम, बट दिस इज अ ब्यूटीफुल ट्रैक. सुनो इसको, मिलते हुए छोटे से ब्रेक के बाद. स्टे ट्यून्ड.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: शिल्पा राव, आपका तो हर गाना हमारा फेवरेट है, लेकिन इस बारिश में आपका फेवरेट गाना कौन सा है?
2: आई लाइक दैट सॉन्ग।

0: फॉरगॉट द फिल्म्स नेम.
1: फिल्म का नाम था तक्षक और इस गायक का नाम शिल्पा राव. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट.
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: ऐसे ही मैं भी ले आती हूँ आपके लिए ऐसे ऐसे गाने जो शायद आपने नहीं सुने हो या फिर आप भूल चुके हो।
1: मिर्ची कैफे,
0: मिर्ची कैफे इज द शो। मेरा नाम है पारुल। आपको पता है ये फिल्म सत्य प्रेम की कथा से ये गाना है अरिजीत सिंह की आवाज में एंड कियारा आडवाणी एंड कार्तिक आर्यन। आपने वो फिल्म पक्का देखी होगी, बट आपको ये गाना याद था? नहीं होगा। सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक ना। ऐसे बहुत सारे गाने हम भूल जाते हैं, ऐसे भूले बिसर जाते हैं हमारे लिए। वेल, आपको पता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्लोबल रिसर्च में ये पता चला है कि आफ्टर 33 ईयर्स, मतलब जब आप 33 साल के हो जाते हो 33 ईयर्स के, उसके बाद आप नया गाना उस तरीके से कंज्यूम करना बंद कर देते हो। देन यू ओनली लिसन टू द सॉन्ग्स विच यू रियली लाइक ऑलरेडी लाइक। नए गानों में उतनी शिद्दत नहीं लगाते आप। सीरियसली, क्या आप भी ऐसा करते हो? ये ग्लोबल रिसर्च है। आई वांट टू नो अबाउट यू। क्या आपको नए गाने सुनना पसंद है? ऑफ कोर्स, तभी आप मेरा शो सुनते हो। नहीं, मिर्ची कैफे इज द शो। parulz.world के नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिलूंगी। प्लीज मुझे बताओ कि कैसे गाने आपको सुनना पसंद है और आप कैसे गाने मेरे शो पे सुनना चाहते हो। ऑल्सो आप ये बताओ कि कौन सा गाना आज के पूरे 2 घंटे के इस प्रोग्राम में आपको सबसे अच्छा लगा। ओके, प्लीज यू राइट टू मी। नंबर भी है मेरा एक व्हाट्सएप का, 7045983983। यू कैन से हाई पारुल, मिर्ची कैफे, जो भी लिखकर आप उसके बारे में लिख सकते हो। ओके, बट प्लीज ये याद रखो हमेशा कि गाने ही एक ऐसी चीज है जो हमें पता नहीं कौन सी दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। हमें भी नहीं पता कि कौन सा गाना सुन के कौन सा इमोशन स्ट्राइक होगा हमारे अंदर से, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल फीलिंग, ट्रस्ट मी। तो गाने सुनना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कोई सी भी एज हो जाए आपकी। तो वेल, अब मेरे जाने का वक्त यहाँ से हो चुका है। अब आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। इंस्टाग्राम पे आप मुलाकात कर सकते हैं, एंड अभी के लिए बाय टाटा। अपना ख्याल रखो और अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखो, क्योंकि जिंदगी कितने पल की है सुनो केके की आवाज में। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी फरमाइए, बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन से बात कर रहे हैं।
0: मेरी बीपी कभी मुझे सीरियसली लेती ही नहीं, क्या करूं?
1: तो प्रभु क्या है ना कि आप तुरंत ही हॉस्पिटल की ओर प्रस्थान करें, सीरियस लोगों को ना वहीं ले जाया जाता है।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

आज मेरा पता नहीं क्यों मन कर रहा है कि मैं आपको थोड़ा सा डरा दूं। पुरानी जीन्स पे हेलो वेलकम, दिस इज मी श्रेया। डराने से मेरा मतलब है कि हॉरर फिल्म की बात करूं। वेल, ये वो टाइम था जब हॉरर फिल्में बहुत ज़्यादा बनती नहीं थी, और जब बनती भी थी तो वो हॉरर का मिस्टरी ज़्यादा हो जाती थी। दिस वाज वन ऑफ दोज फिल्म्स जो इनिशियल ईयर्स में आई और जिसने राम से ब्रदर्स का करियर एस्टेब्लिश किया। राम से ब्रदर्स हु वर लेटर नोन टू मेक हॉरर फिल्म्स ओनली। वेल, उन्होंने बनाई 1984 की ये फिल्म जिसका नाम था पुराना मंदिर। इसमें बहुत सारे लोग थे, इसमें मुनीश बहल थे, पुनीत सर थे, आरती गुप्ता थी, एक्ट्रेस थी। वेल, इस फिल्म में ना कुछ अजीबोगरीब घटनाएं भी हुई, सब बताऊंगे ना जल्दी किस बात की। अभी अभी तो आई हूँ, अभी आगे आगे सुनो होता है क्या। उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। तो मिर्ची पे जल्दी से गाने सुन करके वापस आओ, आज का सिलसिला शुरू करते हैं।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: The show was absolutely amazing.
2: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
3: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

श्याम और तुलसी राम से की ये पहली हॉरर फिल्म थी और उसके बाद इस फिल्म के हिट होने के बाद रादर उनकी हॉरर फिल्मों की लाइनें लग गई। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ 1984 की फिल्म आई पुराना मंदिर, जिसने बॉक्स ऑफिस पे लोगों को इतना डराया कि लोग ना बार बार डरने पहुंच रहे थे। मेरा मतलब है कि द मूवी वॉज सुपर डुपर हिट एंड जब उन्होंने ये फिल्म शूट की ना तो इसमें आप देखोगे एक हॉन्टेड हवेली है। ये हॉन्टेड हवेली जो दिखाई जाती है वो एक नवाब पैलेस है जो कि मुरूद जंजीरा विच इज इन अ स्मॉल विलेज इन महाराष्ट्र वहाँ पे सिचुएटेड है एंड यहाँ पे रामसे ब्रदर्स ने अपनी ये पहली हॉरर फिल्म शूट की थी। उसके बाद जो इतनी सारी उन्होंने हॉरर फिल्में बनाई ना सब में उन्होंने इसी पैलेस को लिया था। वेल, उनको लगता था ये उनका लकी चार्म भी है और उनको लगता था कि हॉरर दिखाने के लिए ये पैलेस एकदम एप्ट है। पुरानी जीन्स पे ना इसी फिल्म की ढेर सारी बातें, हॉरर बातें पता करके आई हूँ। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
4: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
3: क्या?
4: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो, एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

एक बहुत ही अजीबोगरीब हादसा हुआ जब ये फिल्म को शूट किया जा रहा था। वेल, इस हादसे के बाद सेट पे काफी लोग डर गए थे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और जैसा कि मैंने कहा, आज मुझे आपको थोड़ा डराने का मन कर रहा है। मेरा मतलब है आज हॉरर फिल्म की बात करने का मन कर रहा है। सो पुराना मंदिर की बात हो रही है जिसमें थे मुनीश बहल, आरती गुप्ता, पुनीति सर, और इसमें थे भाई एक और एक्टर जिनका नाम था अजय अग्रवाल। अब मैं बताती हूँ हुआ क्या। तो एक सीन होता है जिसमें अजय अग्रवाल एक कॉफिन में बंद है, और फिर जब वो कॉफिन वापस निकाला जाता है, उसको खोला जाता है, तो वो ऐसे उठते हैं कि उनको ना सबको डराना है सडनली। हाँ, कॉफिन खुलते ही बस उठ जाना और डराना है। अब हुआ ये कि ये कॉफिन एक्चुअली में बहुत देर तक खुला ही नहीं, एंड इट जस्ट हैपेंड। किसी को नहीं पता आज तक कि ऐसा क्यों हुआ। अजय अग्रवाल, जिनको कॉफिन से निकलना था और डराना था, वो ये सीन कर ही नहीं पा रहे थे। बार बार टेक 1 2 3 राम से ब्रदर्स कर रहे थे, बट ही डिड नॉट गेट आउट ऑफ द कॉफिन। जब देखा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो पता चला कॉफिन लॉक हो गया है, और उसके बाद 1 घंटा लगा क्रू को कॉफिन तोड़ के उनको बाहर निकालने में। अब इस सीन के बाद जो हड़कंप मचा ऑन द सेट, क्या ये सीन फिर से कंप्लीट हुआ? ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग है, बताऊंगी। वापस आओ कुछ गानों के उस पार। दिस इज श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: करण जोहर, ऑनेस्टली बताइए, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द मॉनसून?
4: बारिश का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ मैं, हमेशा कहता हूँ कि आसमान के आंसू अभी गिरने लगे हैं। ऑलवेज लुक एट मॉनसून के ये बस उनके आंसू हैं, तो वी हैव टू पहुंच जाए जल्दी तो क्या। बट आई नो के रेन और बारिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो तीन महीने में हमेशा ये मेरे फेवरेट महीने नहीं है साल के।
3: ये थे करण जोहर, हु स्पोक लाइक अ ट्रू ब्लू मुंबईकर। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by iPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कास्ट एंड क्रू इतना डर गई थी इस सीन के बाद कि आधे लोग एक्चुअली लेफ्ट पुरानी जींस पे आप और श्रेया के साथ. एंड आज मैं बात कर रही हूँ हॉरर फिल्म 1984 की पुराना मंदिर, जो रामसे ब्रदर्स की पहली हॉरर फिल्म थी. इसमें थे मोनीश बहल, आरती गुप्ता, पुनीति सर. और ना ये फिल्म में एक ऐसा सीन हुआ, एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद हर कोई एक्चुअली में डर गया था. आधा कास्ट लेफ्ट एंड वेंट बैक. क्या हुआ था बताती हूँ. ये कहानी अभी थोड़ी देर पहले मैं आधी छोड़ के गई थी. सो अजय अग्रवाल एक एक्टर, उनको क्या करना था कि उन्हें एक कॉफिन में बंद करना था. बंद करने के बाद सीन ऐसा होना था कि कॉफिन बाहर निकलेगा और वो एकदम से निकलेंगे और लोगों को डरा देंगे. अब भाई रामसे ब्रदर्स ने 2-3 टेक्स दिए, लेकिन अजय अग्रवाल कॉफिन से बाहर ही नहीं निकल रहे थे. सडनली सबने रियलाइज किया कि क्या हो गया, व्हाट्स द प्रॉब्लम. तो देखा गया कि कॉफिन अपने आप बंद हो गया है. और फिर करीब 1 घंटा लगा वो कॉफिन तोड़ करके अजय अग्रवाल को बाहर निकालने में. ये चीज देख करके ना कास्ट एंड क्रू में एकदम जिसे कहते हैं डर का माहौल हो गया था. हाफ ऑफ देम एक्चुअली लेफ्ट एंड वेंट. एंड अजय अग्रवाल वापस कॉफिन में जा करके ये सीन शूट करने से बिल्कुल मना करने लगे. वो तो रामसे ब्रदर्स ने किसी तरह उनको समझाया कि इसमें बस कैमरा लगा है, ये सिर्फ एक सीन है एंड ऑल ऑफ दैट. वो गलती से बंद हो गया होगा, वो कुछ प्रेशर से बंद हो गया होगा, ये सब समझाया गया. तो किसी तरह ये सीन तो शूट हुआ, लेकिन आधे ही क्रू के साथ शूट हुआ था. पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया. इसी फिल्म की बातें और भी जारी रहेगी. कहीं भी मत जाना, गाने सुन करके वापस आऊँ.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मेरा हस्बैंड मेरी बात ही नहीं सुनता, क्या करूं?
2: अरे तो टेंशन काहे को ले रही है, उसको ना साइन लैंग्वेज में समझाना, नहीं तो लिख के दे दे।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

थिएटर में मूवी एकदम अमिताभ बच्चन जी की मूवी के बगल में लगी थी, और तब किसी ने नहीं सोचा था कि बच्चन साहब की मूवी में कम लोग जाएंगे और इस हॉरर फिल्म में पहली बार इतने लोग आएंगे। पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया, और आज एक हॉरर फिल्म की बात हो रही है, 1984 की पुराना मंदिर, विच वॉज अ सुपर डुपर हिट फिल्म। वेल, ये फिल्म जब रिलीज हुई ना तो बच्चन साहब की लावारिस भी रिलीज हुई, और दिल्ली का एक थिएटर था जिसमें दो हॉल्स थे एट दैट टाइम, तो ये उस थिएटर में साइमल्टेनियसली रिलीज हुई थी। मतलब एक हॉल में लगी हुई थी बच्चन साहब की लावारिस और दूसरे हॉल में लगी हुई थी पुराना मंदिर। एंड कैन यू बिलीव कि उस टाइम पे लोग लावारिस से ज्यादा पुराना मंदिर में देखे गए थे? यस, दैट एक्चुअली हैपेंड। वेल, रामसे ब्रदर्स की ये पहली हॉरर फिल्म थी। आज इसी की बातें चल रही हैं, श्रेया के साथ कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची।
2: हेलो
3: हाँ जी कौन
2: हेलो किससे बात करनी है
3: भैया किससे बात करनी है
2: नंबर चेक करके दोबारा मिला
3: पागल
2: अरे पता नहीं कौन बोल रहा था
4: इको आ रहा है इको
3: हेलो
2: जेल साले भैया को मारूंगा तुझे मैं बता रहा हूँ नंबर चेक के मिला
3: हेलो भैया
2: क्यों परेशान कर रहा है किसी को पागल हो गया क्या यार पता नहीं कौन है यहाँ पे फोन करे जा रहा है
3: भैया क्या
2: अबे पागल हो गया क्या यार महंगा पड़ जाएगा नंबर आ गया मेरे पास
3: पागल
2: कहीं का
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ मैंने ऐसे ही आपका नंबर मिला दिया क्या नाम है सर आपका आप बुरा मत मानिएगा प्लीज
3: रवि
4: मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ आप एक चीज सिर्फ आप बोलेंगे उसमें इको नहीं आएगी बहुत परेशान कर दिया आपने
3: भाई
4: आप खत्म कर दो यार
0: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग
6: हेलो कतार आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो एक ऐसा शो जहां पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में सी यू एट द शो
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
0: Aap sun rahe hain Purani Jeans. श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

ये ना एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म थी इन द हॉरर जॉनर ऑफ इंडिया। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और जिस फिल्म की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है पुराना मंदिर। इट वॉज अ ह्यूज हिट, मतलब इतनी बड़ी हिट थी कि उसी टाइम पे बच्चन साहब की लावारिस रिलीज हुई थी। और दिल्ली का एक हॉल था जहाँ पे ना दो हॉल्स एक साथ थे, एक थिएटर था जिसमें दो हॉल्स एक साथ थे, एक में लावारिस लगी हुई थी और एक में पुराना मंदिर। एंड कैन यू बिलीव कि लावारिस से कहीं ज्यादा टिकट्स भाई पुराना मंदिर के सेल हुए थे। वेल, इस फिल्म ने ना बहुत एनकरेज किया रामसे ब्रदर्स को टू मेक मोर हॉरर फिल्म्स। इसके बाद से तो उन्होंने हॉरर फिल्मों की एकदम लड़ी झड़ी लगा दी, डाक बंगला बनाया, वीराना बनाया और तहखाना बनाया, एंड सो मैनी ऑफ देम। वेल, इस फिल्म में ना एक और बड़ी खास बात थी। क्या थी वो, अभी बताऊंगी आपको। ये बीच में आपके और मेरे ना गाने आते हैं जिसको सुनने के लिए आप और मैं यहाँ रोज आते हैं, तो इनको सुन करके वापस आओ। आई विल लेट यू नो, दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
4: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
3: क्या?
4: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा उस टाइम पे हीरो फेमस होता था, साथ साथ विलेन भी उतना ही पॉपुलर हो जाता था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, जैसे कि गब्बर, मतलब ये गब्बर नाम इतना पॉपुलर हुआ कि भाई सिप्पी साहब को ना एक और छोटी सी फिल्म बनानी पड़ी, नेम्ड ओनली गब्बर। एंड ऐसा ही कुछ हुआ रामसेव ब्रदर्स के साथ, जब उन्होंने आज जिस फिल्म की मैं बात कर रही हूँ, उनकी पहली हॉरर फिल्म पुराना मंदिर 1984 में बनाई। तो इस फिल्म में जो डीमन था, जो भूत था, उसका नाम था सामरी। एंड ये सामरी घर घर में फेमस हो गया था, लोग डराने के लिए एक दूसरे को सामरी का नाम लेते थे। एंड इमेजिन द नेम गॉट सो पॉपुलर कि राइट आफ्टर दिस फिल्म व्हेन इट गॉट हिट 1984 में

0: 85 में रामसे ब्रदर्स ने एक और फिल्म बनाई, उसका नाम रखा सामरी 3D, जो भी काफी हिट हुई थी। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ आज इसी फिल्म की बातें हो रही है, सो कम राइट बैक।
1: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच-सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
2: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: अभिजीत सावंत, जब भी आपके बारे में सोचते मोहब्बतें लुटाऊंगा यही याद आता है। बारिशों के लिए एक अलग

अच्छा वो झड़ी है क्या? मैं हमेशा लगी आज सावन की फिर वो छड़ी है गाती थी अभिजीत सावंत. थैंक यू फॉर एजुकेटिंग अस. आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट. बॉलीवुड बोल डाल. बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल. ओनली ऑन

ये फिल्म तो हिट हो गई, लेकिन फिल्म के हीरो इससे काफी अपसेट हुए। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट रामसे ब्रदर्स की फर्स्ट सुपर हिट हॉरर फिल्म। वेल, पुराना मंदिर 1984 की ये फिल्म थी जिसमें मुनीश बहल थे, और मुनीश बहल की जब ये फिल्म रिलीज हुई उन्होंने फिल्म मेकर्स के बारे में बहुत कुछ कहा, रामसे ब्रदर्स के लिए बहुत कुछ कहा। ही सेड कि मुझे लगा था कि ये फिल्म जो है हॉरर होने के बावजूद बी ग्रेट फिल्म नहीं बनेगी, लेकिन फिल्म के रिलीज होने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि इट वॉज ऑल अबाउट हॉरर, इट वॉज ऑल अबाउट यू नो द डीमन, इट वॉज ऑल अबाउट द स्टोरी जिसमें हीरो का कोई खास लेना देना हुआ नहीं। उनकी मम्मी नूतन ने भी यही बात कही और फिल्म मैगजीन्स ने इंटरव्यू बहुत छापा, क्योंकि इस फिल्म के हिट होने के बाद मुनीश बहल को जनरली सब बी ग्रेड फिल्म्स आने लगी थी, और उस टाइम पे हॉरर फिल्मों को बी ग्रेड की श्रेणी में रखा जाता था। वेल, मुझे थोड़ा अजीब लगा जब मैं ये पढ़ रही थी, क्योंकि जब आप फिल्म करने लगते हो तो ऑफकोर्स आपको पता चल जाता है कि ये जो फिल्म है ये कौन से जॉनर की है, ये जो फिल्म है इसमें मेरा कैरेक्टर कितना स्ट्रांग दिखेगा, कितना वीक दिखेगा। एंड अगर फिल्म हिट होने के बावजूद आप ये बोलें कि मुझे पता नहीं चला कि ये फिल्म कैसे पोर्ट्रे होगी, ऑल ऑफ दैट, तो फिर यार मतलब नहीं, ये बेईमानी है, क्या कहते हो आप? वेल, डू लेट मी नो फेसबुक और इंस्टा पे, माई हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA विद लव, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

श्याम राम से और तुलसी राम से के जितनी हॉरर फिल्म्स थी उनमें ना बैकग्राउंड म्यूजिक सेम होता था। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, एंड आई वाज थिंकिंग कि क्या स्ट्रैटेजी यूज की थी। आई मीन हम लोग कहते हैं ना कि कोई चीज बार बार करो तो उसका रिकॉल बढ़ता है, टॉप ऑफ द माइंड प्रायोरिटी सेट होती है, ऑल ऑफ दैट। एंड इमेजिन इन्होंने तो सिर्फ म्यूजिक से उस चीज को एस्टैब्लिश कर दिया था। मतलब रामसे ब्रदर्स की म्यूजिक जैसे ही लोग सुनते थे ना उनकी फिल्मों की, तो उन्हें लग जाता था ओ हो हॉरर फिल्म। एंड इट बिकेम सो पॉपुलर कि आपको याद है जी पे आया करता था द जी हॉरर शो, उसमें भी रामसे ब्रदर्स की ये हॉरर म्यूजिक जो थी ना उसको यूज किया जाता था बैकग्राउंड स्कोर की तरह। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ आज उनकी पहली हिट हॉरर फिल्म, वेल 1984 में आई पुराना मंदिर, इसकी बातें चल रही हैं। और भी बातें हैं बताऊंगी आपको, बीच में आपके में और मेरे गाने आ रहे हैं तो उनको सुन करके यहीं वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना
3: क्या बाना
2: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: हेलो किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
4: बोल रहा हूँ
5: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ। आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग पे बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा है आपको।
4: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
5: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
4: 23
5: एक सेकंड सर, अपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
4: हाँ जी, हाँ जी।
5: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
4: बिल आया था 2200 रूपए का?
5: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
4: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
5: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
4: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
5: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
4: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
5: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
4: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
5: हूँ मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
4: चिल्लाने का क्या मतलब है?
5: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
6: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
4: हेलो
5: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
4: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
5: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
4: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
5: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है सर। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे। और
4: कुकड़ों को
5: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट
7: 89.6
0: मिर्ची। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अनिरुद्ध अग्रवाल जो कि सामिरी के नाम से फेमस हो गए थे इंडिया के घर घर में, यानी उस कैरेक्टर नेम से जिसमें भूत दिखाया गया था। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट वेल रामसे ब्रदर्स की पहली हॉरर फिल्म 1984 में आई, इसका नाम था पुराना मंदिर। वेल इसमें सामिरी के कैरेक्टर से अनिरुद्ध अग्रवाल वाज वेरी वेरी पॉपुलर और कहते हैं कि मूवी पूरी कंप्लीट हो गई थी, सिर्फ जो डीमन के सीन्स थे यानी भूत के जो सीन्स थे ना उनको छोड़ा गया था क्योंकि एक एप्ट कैरेक्टर मिली नहीं रहा था रामसे ब्रदर्स को। फिर एक दिन उनके एक दोस्त ने अनिरुद्ध अग्रवाल को स्पॉट किया और उनको ना रामसे ब्रदर्स के ऑफिस का एड्रेस दिया। वो जैसे ही वहाँ पहुँचे कहते हैं कि श्याम रामसे तो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए कि हाँ मुझे सामरी मिल गया, मुझे सामरी मिल गया। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तुझे पता है एक लड़के ने एक लड़की को एक एग्जाम में चीटिंग करवाई, उसके बाद दोनों को प्यार हो गया और प्यार होने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन जब रिजल्ट आया तो दोनों फेल हो गए।
4: यार ये पहली लव स्टोरी होगी जो चीटिंग के बाद शुरू हुई होगी, और ऊपर से अगर इनके ऊपर कोई फिल्म बनेगी तो पता है क्या बनेगी?
3: क्या?
4: एग्जाम, एक प्रेम कथा।
0: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

अगर फिल्म में सिर्फ टाइट सीन्स होते ऑफ हॉरर एंड भूत एंड ऑल ऑफ दैट, तो शायद फिल्म में कहीं कॉमेडी रह जाती, और ये बात ना रामसे ब्रदर्स ने अच्छे से समझ ली थी। इसीलिए फिल्म में लाइटर मोमेंट्स देने के लिए राजेंद्र नाथ, ललिता पवार और जगदीप जी को लाया गया था। उनमें ना उनकी कॉमेडी में एकदम शोले, 1975 में शोले आई थी, मतलब 10 साल हो चुके थे शोले को आए हुए, उसके कुछ कुछ एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। मतलब वही कॉमिक टाइमिंग, वही कॉमिक सीन्स, थोड़े बहुत वही डायलॉग्स, वही ट्रीटमेंट ऑफ कॉमेडी। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, और आज जिस फिल्म की बात हो रही थी वो रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्म की, स्ट्रिंग ऑफ हॉरर फिल्म्स की पहली हिट हॉरर फिल्म थी। इट वॉज पुराना मंदिर 1984 में। ये फिल्म हिट होने के बाद रामसे ब्रदर्स ने इतनी सारी हिट फिल्में बनाई विच वर यू नो ऑफ द सेम हॉरर जॉनरा, जैसे कि तहखाना बनाई, डाक बंगला बनाई, वीराना बनाई, लेकिन हाँ सबसे ज्यादा अगर कोई हिट हुई वो थी पुराना मंदिर। आज इसी फिल्म की बातें चल रही है श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: अनु मलिक, आपको देख के लगता है कि जब आप पैदा हुए ना, आपने पहले मम्मी कहा ना पापा, आपने कहा होगा देखो बारिश हो रही है। But really, tell us, how old were you when you made this song?
4: What, I was 25 or something. It was raining cats and dogs. Waterfall से पानी गिर रहा था. सारे बादल नीचे आ चुके. And उस बीच में then I saw the little train coming out. देखो बारिश हो रही है. देखो ना देखो, it's raining, it's raining, it's raining.
3: अब Twinkle Twinkle Little Star और बाबा ब्लैक शीप के साथ में ये वाला गाना तो ऐड कर ही लेना चाहिए स्कूल्स में, है ना अनु मलिक? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स आउट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

पुरानी जीन्स पे अब श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी आपको तो पता ही क्या करना होगा, जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोलना होगा और मेरे साथ हाईवे तक चलना होगा। Well, आज का मेरा हाईवे हिट मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ मेरे जैसे उन सारे लोगों को जो जब स्कूल में थे और मम्मी पापा के प्रोटेक्शन में थे, टीचर्स के प्रोटेक्शन में थे, तब हमको लगता था हम कब बड़े होंगे, हम कब अपनी ज़िंदगी खुद जिएंगे, हम कब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद लेंगे, हम कब अपने फ्रीडम को यूज़ कर पाएंगे। आज जब सब कुछ है तो सच में ये गाना याद आता है। लता जी ने गाना गाया एंड ये गाना ना उन सभी लोगों के लिए मेरी तरह जो ऐसे लम्हे आजकल ढूंढते हैं, है ना। और कोई काम नहीं होता था, सिर्फ पढ़ो लिखो, थोड़ा बहुत टीवी देखो, खाओ पियो सो जाओ फुर्सत के रात दिन। On that note, this is Shreya signing off. अगर आपको मुझसे कुछ कहना है, one to one बात करनी है, तो Facebook और Insta पे my handle is RJ Shreya with love. That's RJ SHREY Shreya with love. On that note, good night.